मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। सुबह के 5:55 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

इस सुबह की सुनहरी रोशनी में ठंडी ठंडी हवाओं, महकते फूलों की खुशबू और पंछियों के मधुर संगीत भरे गुंजन के साथ एक नई आशा, नई उम्मीद और आसमान को छूने की कोशिश में कामयाबी की चाहत लिए नई सोच के साथ लेकर नमस्ते लखनऊ का एक और सफर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं, समय है देश दुनिया की ताजा खबरों को जानने का। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी लखनऊ है, धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के आज के अंक की शुरुआत।

0: कार्यक्रम कृषि चर्चा के साथ। कार्यक्रम में आज का विषय कृषि विविधीकरण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
1: शुभ प्रभात। कम लाभप्रद फसलों के स्थान पर अधिक लाभप्रद फसलों को अपनाना, फसल प्रजातियों के साथ साथ क्रॉपिंग सिस्टम यानी फसल चक्र में बदलाव व आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात एवं प्रतियोगिताओं को देखते हुए बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा वनों के लिए उपयुक्त दशा तैयार करने की रणनीति को फसल विविधीकरण कहते हैं या हम सभी जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि, कृषि उद्यान पशुपालन, कृषि उद्यान पशुपालन मत्स्य, इस तरह के कई फार्मिंग सिस्टम पहले से हैं। इनके अन्य सम्मिलन विभिन्न स्थितियों में अपनाकर तरह तरह से चीजें पैदा की जाती हैं। इन पद्धतियों में वस्तुओं की उत्पादकता एवं उत्पादन हमेशा लाभप्रद नहीं हो सकता, विशेषकर कृषि उत्पादन तंत्र में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से अपनाया जाता है, जिसका लागत लाभ अनुपात कम होता है। कम लाभ की दशा में फार्मिंग के यानी खेती के ऐसे संयोजनों को अपनाने की आवश्यकता होती है जो अधिकतम उत्पादकता के साथ साथ लाभ प्रदान कर सकें। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के दो रास्ते हो सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाकर या फिर उत्पादकता बढ़ाकर। कृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाना या सीमांत भूमियों को कृषि के अंतर्गत लाना, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बेतहाशा तरीके से हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। भूमि उतनी ही है, सीमित है, लेकिन जनसंख्या दबाव के कारण इस पर बहुत बोझ पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादकता बढ़ाना ही संभव उपाय प्रतीत होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपज या उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो श्रमिक वर्ग इसमें लगा हुआ है और साथ ही साथ पूंजी के औसत निवेश को बढ़ाना, फसल उत्पादन तंत्र में प्राय चार स्थितियां बनती हैं, जिसे हम सभी समझते हैं, जानते हैं या फिर उसे जानने की कोशिश करते हैं। जहां उत्पादकता एवं फसल क्षेत्र विस्तार दोनों ही कम है, वहां फसलें अवांछित हैं और विविधीकरण की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति जहां उत्पादकता कम है लेकिन फसल क्षेत्र विस्तार अधिक है, ऐसी स्थिति में फसल स्थापन की जा सकती है या फिर निवेश व तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। तीसरी स्थिति यह भी होती है जहां अधिक क्षेत्र विस्तार के साथ उत्पादकता भी उच्च हो, वहां प्रसंस्करण, विपणन, मूल्य संवर्धन के द्वारा टिकाऊपन लाना चाहिए। चौथी स्थिति यह बनती है जहां उच्च उत्पादकता एवं कम फसल विस्तार हो, वहां क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। फसल विविधीकरण विभिन्न स्थितियों में दो तरह से संभव हम सभी कर सकते हैं, जो हमारे लिए लाभप्रद हो सकती है। एक तो क्षैतिज विविधीकरण, वर्तमान में जो फसल पद्धति है यानी क्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें अधिक फसलों का समावेश किया जाए। इसके लिए तकनीकों एवं कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। पहले हमने देखा है कि मिलवा खेती होती थी, साथ ही साथ जायद में खेती बहुत कम होती थी, लेकिन सिंचाई की सुविधा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए जो कुछ कार्य इस दिशा में किया गया है, चाहे वह बीज के लिए हो या फर्टिलाइजर के लिए या जीवांश वहां उत्पन्न करने के लिए, इन सभी को समावेशित करके सिंचाई की सुविधा के साथ इसे संपन्न बनाया गया और आज जायद की फसल अच्छे ढंग से हमारे यहाँ हो पाती है। ऊर्ध्व विविधीकरण भी है, यह फसल के औद्योगिकरण की मात्रा एवं स्थिति को बताती है, जैसे कि सब्जी, फल और इसी तरह के अन्य जो कुछ उत्पाद हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे कि मशरूम है उसे भी ले सकते हैं, बेबी कॉर्न है वो भी है। इस तरह से हम इसे अलग अलग स्थितियों को देखते हुए, बाजार की व्यवस्था को देखते हुए, सुचारू संचालन करते हुए खेती की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उसके आधार पर उत्पादन सुनिश्चित कर पाते हैं।
0: कृषि विविधीकरण, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। ये है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:10 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में पूरे दिन की धड़कन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आइए जानते हैं आज का

0: सुविचार, विषय है सहज जीवन, स्वर डॉक्टर विजय नारायण गुप्ता का।
1: परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि सहज, सरल और सुंदर है। मनुष्य इसी सृष्टि का श्रेष्ठतम अंश है। स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन भी सहज और सरल है। प्रयास ये होने चाहिए कि हमारी स्वाभाविकता बनी रहे। अंतः सलिला की भांति जीवन प्रवाह सहज रूप में चलता रहे, इस हेतु सत्य मार्ग के अनुसरण की अपेक्षा रहती है। निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहने के लिए सरल सच्चे जीवन की अपेक्षा है। राग द्वेष और स्वार्थ की भावना हमें कुटिल बनाती है। हम कुपंथ पर चलने को उद्यत होते हैं, किंतु इसका परिणाम सुखद नहीं होता। प्रगामी जीवन के लिए तो हमें सहज रूप में कर्मनिष्ठ जीवन अपनाना होता है। अतः कुमार्ग और कुरीतियों को त्याग कर शिव संकल्प के साथ आगे बढ़ना होता है। प्रकृति के साथ जीना ही जीवन है, इसी भांति सबको साथ लेकर जीना ही जीवन है। सह अस्तित्व और समन्वय हमारे उत्कर्ष का हेतु है। व्यक्ति का व्यक्ति से अंतर संबंध ही सुखद समाज का हेतु है। इसलिए हमें परिवेश के साथ जीना सीखना चाहिए। यही कारण है कि चिंतनशील लोग लोकोपयोगी जीवन व्यतीत करते रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना विश्लेषण निष्पक्ष भाव से करना सीखना चाहिए। इस आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में अवगुण स्वतः दूर होने लगते हैं। उन्नति तथा उल्लास की स्वानुभूति हमें प्रेरित करती है। जीवन में शुभ संकल्प का होना हमारे कल्याण का हेतु है। कुटिलता कदापि ग्राह्य नहीं है, अपितु सहजता और सरलता नैसर्गिक गुण है। जीवन शाश्वत है और खुशियों से भरपूर है। सकारात्मक विचार हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। विवेक का जागरण हमें तनाव मुक्त करता है। स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत जो उन्माद रहता है, आत्मीयता का भाव उसे समन्वय और स्वीकृति में बदलता है। सद्भाव हमें स्नेह और भाईचारा बढ़ाता है। निरासक्त भाव सेवा भावना लाता है। मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण में विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। नकारात्मक विचारों से दूर रहने का अभ्यास आवश्यक है। इसके लिए जीवन पर विश्वास करना होता है, स्वयं की स्वीकृति करनी होती है, परिवर्तन के लिए इच्छा शक्ति को जगाना पड़ता है। हमारी सुरक्षा वह परम शक्ति है। उसने हमें आवश्यकता अनुसार सब कुछ उपलब्ध कराया है। हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। अतः सभी को सुख देने का प्रयास करना चाहिए। संतवाणी है, हो सके तो सुख दो, किसी को भी दुख न दो। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार सोचते हैं, यानी उत्कृष्टता कार्य नहीं आदत है। अपने लक्ष्य की ओर हमेशा उन्मुख रहना चाहिए। इसका फल निश्चित मिलता है। और प्रयत्न करने पर भी यदि दैववशात सफलता न मिले तो इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता। अवरोध को स्वीकार कर उसका समाधान खोजना चाहिए। सोच बदल कर हम सचेत रहें तो तनाव नहीं होगा। जीवन की मौलिकता को पहचाने और स्वाश्रित बने।
0: सहज जीवन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार, स्वर डॉक्टर विजय नारायण गुप्ता का था। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम।

सुबह के 6:15 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में अब समय है ईश्वर की भक्ति का। कार्यक्रम है आराधना।

विद्यावारिधि मंगलदायक गणपति पुत्र उमेश, सुख के दाता बुद्धि विधाता गणनायक श्री गणेश। आइए करते हैं आराधना कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश की वंदना के साथ।

अनंत अखंड अमर अविनाशी कष्ट हरण है शंभु कैलाशी, शिव भक्तन का पकड़े हाथ शिव संतन के सदा ही साथ। शिव ने है ब्रह्मांड रचाया, तीनों लोक है शिव की माया।

ये भक्त की भक्ति ही है कि वो ईश्वर की कृपा को जान पाते हैं, और ये रघुनंदनी हैं जो चंदन बनकर भक्तों के हृदय को शीतल कर देते हैं।

वो प्रेम में बाधाएं गिनती ही नहीं, गिरधर आराध्य हैं, वो कृष्ण के सिवा किसी को चुनती ही नहीं। कहती है, तेरे दर के सिवा मेरे गिरधर कहीं और जाया नहीं जाता, यूं तो राहें और भी बहुत हैं, मगर ये दिल हर किसी पर लुटाया नहीं जाता।

ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। प्रभु की अनुकंपा, दया, प्रेम और उनकी करुणा हम सब पर यूं ही बनी रहे, इसे शुभकामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना। आज आराधना कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे बेला सुखाले, सुलाखे, हरिहरन, तुलसी कुमार, अशोक खोसला और पीयूषा कैलाश अनुज।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और जारी है नमस्ते लखनऊ का सफर। ईश्वर के सुमिरन में एक और मोती, श्री रामचरितमानस गान लीजिए, सुनिए आज के कलाकार रविंद्र साठे, संगीत सतीश भाटिया का।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्री राम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था, गायक कलाकार रविंद्र साठे। मीडियमवेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र धड़कन देश की। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः नार्वेदेशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिस्सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक सन्ध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोप्तः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्नसदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370+ किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रेस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में स्वागत है आपका फिर एक बार। आगे बढ़ते हुए आइए अब करते हैं सेहत की बात। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय मॉलसिरी के औषधीय गुण। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं आज हम एक ऐसे वृक्ष की चर्चा करेंगे जो जितना सुंदर है उतना ही गुणकारी भी। इसके फूलों की खुशबू से वातावरण महक उठता है और इसके पत्तों, छाल और फलों में छिपे हैं अनेक औषधीय गुण। हम बात कर रहे हैं मौलसिरी की, जिसे कहीं कहीं बकुल या स्पेनिश चेरी भी कहा जाता है। ये पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत समय से जाना जाता है और आयुर्वेद में इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मौलसिरी का वृक्ष आमतौर पर छायादार होता है। इसके चमकीले हरे पत्ते और छोटे सफेद अत्यंत सुगंधित फूल होते हैं जो शाम के समय अधिक महकते हैं। इसकी ये विशेषता है कि इसे मंदिरों के आसपास या उद्यानों में लगाया जाता है, जहाँ ये न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। लेकिन इसकी सुंदरता और सुगंध के अलावा इसके औषधीय गुणों की चर्चा करना कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि ये वृक्ष केवल आँखों और नाक को सुख नहीं देता है बल्कि शरीर और मन को भी लाभ देता है। आयुर्वेद में मौलसिरी को विशेष रूप से दांतों और मुंह की स्वच्छता के लिए उपयोगी माना गया है। इसकी छाल को सुखाकर बनाया गया चूर्ण मुंह के छालों, मसूड़ों की सूजन और दुर्गंध में बहुत लाभदायक होता है। प्राचीन काल में लोग मौलसिरी की टहनी को दातुन की तरह उपयोग करते थे, जिससे दांत मजबूत रहते थे और मुंह की स्वच्छता बनी रहती थी। इसकी छाल में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और कसैले गुण होते हैं जो मसूड़ों को कसते हैं और रक्त स्राव को रोकते हैं। मौलसिरी का प्रयोग केवल मुंह तक सीमित नहीं है। इसके पत्तों और छाल से बना काढ़ा श्वसन संबंधी समस्याओं में भी उपयोगी माना जाता है। यदि किसी को खांसी, जुकाम, गले में खराश या टॉन्सिल की समस्या हो तो मौलसिरी के काढ़े से गरारा करने से राहत मिलती है। इसके फूलों का रस हल्का शीतल और सौम्य होता है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है। श्रोताओं मौलसिरी का एक और बड़ा गुण ये है कि इसका मानसिक प्रभाव, इसकी सुगंध का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तनाव को कम करती है, मन को शांति देती है और नींद को बेहतर बनाती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग मौलसिरी के फूलों को तकियों में रखते थे या फिर कमरे में सजाते थे, ताकि वातावरण में एक सौम्यता बनी रहे। जब मन शांत होता है तो शरीर भी बेहतर कार्य करता है और यही समग्र स्वास्थ्य का मूल आधार भी है। मौलसिरी के फल भी छोटे होते हैं लेकिन औषधीय दृष्टि से उपयोगी माने जाते हैं। इन्हें पाचन के लिए लाभकारी माना गया है। अगर किसी को भूख न लग रही हो या फिर बार बार पेट फूलने की शिकायत हो तो मौलसिरी के फल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ये पाचन अग्नि को बढ़ाता है और आंतों को साफ करता है। इसके अलावा इसकी जड़ और छाल का उपयोग पुराने बुखार और थकावट में भी किया जाता है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से स्फूर्ति प्रदान करता है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि मौलसिरी का पौधा पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। ये वायु को शुद्ध करता है, धूल और धुएं को सोखने की क्षमता रखता है और घर के आसपास लगाने से गर्मी में छाया और ठंडक भी देता है। इसकी यही विशेषताएं इसे औषधीय पर्यावरणीय संतुलन का एक आदर्श उदाहरण बनाती हैं। हमारे देश में मौलसिरी को धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना गया है। इसके फूल पूजा में उपयोग किए जाते हैं और कई स्थानों पर तो इसे वैवाहिक सौभाग्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी हमें ये सिखाता है कि जो चीजें हमें सुगंधित करती हैं वही हमारे शरीर और मन को भी बेहतर बना सकती हैं। आज जब हम रोजमर्रा की दौड़ में प्राकृतिक चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं तो ऐसे में मौलसिरी का वृक्ष हमें एक बार फिर ये याद दिलाता है कि हमारे आसपास ही वो सारी चीजें मौजूद हैं जो हमें शांति, सुंदरता और स्वास्थ्य प्रदान कर सकती हैं। हमें बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है और थोड़ी सी जिज्ञासा की भी, ताकि हम इन वृक्षों से जुड़ सकें और अपने जीवन में उन्हें शामिल कर सकें। श्रोताओं अगली बार जब आप किसी बाग या मंदिर के पास से गुजरें और मौलसिरी के फूलों की मध्यम सुगंध महसूस करें तो बस कुछ पल रुकिए, उस सुगंध को महसूस कीजिए और इस वृक्ष की शक्ति को जानिए। ये केवल सजावट नहीं बल्कि सेहत का एक सजीव रूप है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: मौलसिरी के औषधीय गुण, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर।

पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम संप्रसारित किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे उस्ताद नसीर खान, जिनका सारंगी वादन आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 8:10 पर, जिसमें आप सुनेंगे संयुक्ता बैनर्जी के स्वर में गीत। जन्म जयंती पर विशेष हिंदी कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 8:00 से। आज इस कार्यक्रम में सुनिए प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के उपासक सुमित्रा नंदन पंत, आलेख वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का और प्रस्तुति डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की होगा। शाम 7:45 पर होगा कार्यक्रम कानून की बात। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे भेंट वार्ता।

जिले की हलचल कार्यक्रम का प्रसारण होगा हर रोज की तरह सुबह 9:15 पर। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे आकाशवाणी प्रयागराज की पेशकश। लोकगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार होंगी मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश। इनके स्वर में अवधि युगल लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर कार्यक्रम लोकरंग में और दोपहर 2:45 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में। विज्ञान और किसान इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर। आज सुनिए भेंट वार्ता सतावर की उन्नत खेती, इस विषय पर स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मातृ शिशु स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम आंगनवाड़ी लेकर आएंगे दोपहर 1:15 पर, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक विषयों पर चर्चा के साथ सुनेंगे भेंट वार्ता। जच्चा बच्चा योजना, इस विषय पर नर्सिंग ऑफिसर नीमा पंत SGPGI लखनऊ से भेंट करता होंगी नीना सोनकर। हमारी सायंकालीन सभा के आरंभ में लेकर आएंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:45 का समय कार्यक्रम नई उड़ान का होगा, जिसमें सामयिक चर्चा विकास समाचार के अलावा सुनेंगे कपिल के साथ ओबी प्रगति के पथ पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो किसान, किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि आधारभूत फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नाबार्ड से देय सुविधाएं। इस विषय पर आपके सवालों के जवाब में होंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड लखनऊ के उप महाप्रबंधक रोहित श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय की होगी। इन सभी कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी लखनऊ से आपके मनोरंजन के लिए आपके पसंदीदा फिल्मी गानों का कार्यक्रम भी समय समय पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये थी आज आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 7:10 हुए हैं, सुनिए कार्यक्रम।

विविधा कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार दोस्तों, हमारा जीवन और इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीखना या सबक लेना एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, और इस प्रक्रिया में किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो वो है हमारी प्रकृति। वो कहते हैं ना, हमारे जीवन में कोई सबसे बड़ी और श्रेष्ठ शिक्षक है तो वो है ये प्रकृति, जिसमें निहित हर सजीव निर्जीव चीजें, यहाँ तक कि नदियाँ, पहाड़, हवा और जलवायु, और सबसे प्रमुख रूप से पेड़ पौधे और जीव जंतु, हमारे जीवन के हर दिन, हर कदम और हर मोड़ को प्रभावित करती हैं। प्रकृति की एक ऐसी ही कृति के बारे में आज हम बातें करेंगे आज की विविधा कार्यक्रम में, और प्रकृति की वो रचना है मधुमक्खी। जी हाँ श्रोताओं, आपने सही सुना, मधुमक्खी, जिसे केंद्र में रखकर आज के दिन यानी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है ना अनोखी बात। लेकिन ये मधुमक्खी भी ना अपने आप में प्रकृति की एक अनोखी संरचना है। मधुमक्खी एक उड़ने वाला सामाजिक कीट यानी कीड़ा, जो अपने छत्ते में शहद और मोम बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, मधुमक्खी जिसके नाम में ही मिठास और काम में मीठे से भरा है और अंधेरे में रोशनी भी खेलता है, इस कीड़े का दूसरा रूप बड़ा ही खतरनाक है, जो है मधुमक्खी का डंक। ये मधुमक्खी जब काटती है ना तो मानो जान निकल जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो कौन सी विशेषता है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस को मनाया जाता है? तो दोस्तों, मधुमक्खी जो अपने छत्ते में शहद और मोम बनाने के लिए जानी जाती है, ये फूलों से पराग और मकरंद इकट्ठा करती है, और परागण यानी कि पॉलिनेशन क्रिया द्वारा फसलों और फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना विशेष।

दोस्तों, मधुमक्खी की यही वो विशेषता है जिसे कि उद्देश्य बनाकर आज विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों का महत्व है और ये दिन आज उसे रेखांकित करता है, उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाता है। दोस्तों, हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाकर हम मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की महत्व भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, जो लोगों और पृथ्वी को स्वस्थ रखने में अपनी भागीदारी निभाती है, और उन चुनौतियों के बारे में भी हम बातें करते हैं जो सामने आती है। दोस्तों, बात करें इस दिवस को मनाने के पीछे इतिहास की, तो इस दिन को मनाने की पहल स्लोवेनिया सरकार द्वारा की गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था और इस आयोजन की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जांशा का जन्म हुआ था। जांशा स्लोवेनिया के मधुमक्खी पालकों के परिवार से थे, जहां मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है और जिसकी एक लंबी परंपरा है। दोस्तों, आज मधुमक्खियों, परागण करने वाले कीटों और अन्य कई कीटों की संख्या में गिरावट आ रही है। ये दिन हम सभी के लिए एक अवसर

0: प्रदान करता है। चाहे हम सरकारों, संगठनों या नागरिक समाज के लिए काम करते हैं या जागरूक नागरिक हैं, परागण करने वाले कीटों और उनके आवासों की रक्षा और संवर्धन करने, उनकी संख्या और विविधता में सुधार करने और मधुमक्खी पालन के सतत विकास का समर्थन करने वाले कार्यों को बढ़ावा देना ही आज के दिन का विशेष उद्देश्य है। दोस्तों, हजारों वर्षों से मधुमक्खियों और मनुष्यों के बीच एक घनिष्ठ और बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता विकसित हुआ है, जो दुनिया भर में समुदायों द्वारा भोजन और आजीविका के लिए मधुमक्खियों पर निर्भरता से आकार लेता है। मधुमक्खियां अक्सर हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बनती हैं। शहद इकट्ठा करने से लेकर मधुमक्खी पालन की विभिन्न प्रणालियां, ये जो तरीके हैं, लगातार बदलते वातावरण, प्रौद्योगिकियों और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप में ढलता रहा है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 यानी आज का दिन इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य और मधुमक्खियां किस प्रकार मिलकर लोगों और पर्यावरण का पोषण और संरक्षण करते आ रहे हैं। ये दिवस हजारों वर्षों में विविध संस्कृतियों और भूदृश्यों में मधुमक्खी पालन के विकास को उजागर करता है, साथ ही मधुमक्खी उत्पादन और स्वास्थ्य में सुधार लाने वाले और महिलाओं और युवाओं सहित मधुमक्खी पालकों की आजीविका को सहारा देने वाले नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इस दिन को मनाने के साथ साथ हम पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों द्वारा मधुमक्खी पालन में योगदान दें और अपने देश को एक नई दिशा में, अपने समाज को एक नई दिशा में ले जाए। इस उम्मीद के साथ कि आज का ये विषय आपको कहीं ना कहीं प्रकृति के इस सूक्ष्म जीव को जीने के लिए और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व मधुमक्खी दिवस की। विविधा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। मिलेंगे नए विषय के साथ फिर। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। सुबह के 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ संदेश।
1: देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और

अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला

0: परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
1: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से

0: ने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में पीएससी के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
0: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और एक गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुबह

0: चंद्र बोस।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सारंगी वादन। कलाकार हैं उस्ताद नसीर खान। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग कलिंगड़ा। विलंबित रचना झूम्र ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग कलिंगड़ा में उस्ताद नसीर खान द्वारा सारंगी वादन। श्रोताओं, हम आपको बता दें, उस्ताद नसीर खान द्वारा सारंगी वादन आप रात्रि 10:30 पर प्रसारित होने वाले शास्त्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव के मीटर पर हम हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 8 बजे हैं, सुनिए हिंदी समाचार पत्रिका समाचार प्रभात, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा बस कुछ ही पलों में।

0: अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा

0: चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
4: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
5: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित

0: की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi

0: Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night. Chasing a target of 221 runs set by Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurel scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. And now for a look at today's newspapers is over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Abhishek. In a joint article penned by PM Narendra Modi and Italy's PM Giorgia Meloni in The Pioneer, headlines Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean. The article says Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. US clears Apache how its support services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the Statesman. Top court nod for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says the real question, OpenAI's win Musk's ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। डीजीसीए ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तिजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नईदी होटल पहुंचे, जहां

0: पार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज में सख्त मजम्मत की। वजीर आजम ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाक़िद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद ख्वातीन को उनकी समाजी व इक्तसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपये की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम ख्वातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हो या उन्हें रियासत या मरकजी कानूनी पंचायती बल्दियाती मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मनसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाय की है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एम के दास, डीजीपी डॉक्टर के एल एन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मरतबा दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने डीजीसीए के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारी के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VTNX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा।

0: तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा नॉर्वे दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के वसी इम्कानात और हमारे मुल्क में ग़िज़ाई सिक्योरिटी माही परवरी जैसे शोबों में पार्टनरशिप के मौके मौजूद हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, भारत और वियतनाम के रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेहकाम सलामती और समंदरी रास्तों की आज़ादी बरकरार रखने के अजम का इरादा किया। इसी अखबार ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, भारत और नॉर्डिक ममालिक ने दहशतगर्दी पर नो कॉम्प्रोमाइज नो डील स्टैंडर्ड का पैगाम दिया।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में तआवुन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 8:45 हुए हैं, थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा, लेकर आ गई हूं आपके मेल और आपके पसंदीदा फेवरेट फिल्मी गाने।

पसंदीदा गीत के साथ, जिसमें बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत रवि का, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म है उम्मीद। और इस गाने के लिए हमने जिन श्रोता के पत्रों को शामिल कर लिया है, ईमेल को शामिल कर लिया है, ये हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार। तो आइए सुनते हैं आप सब की पसंद पर इस गाने को, जिससे आवाज़ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने और पहुंच रहा है अब आपके रेडियो सेट पर।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ये कार्यक्रम है आपके मेल आपके गीत। और श्रोताओं, आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत और जुड़ रहे हैं हमारे साथ पहली बार, तो इस एड्रेस को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और सेव कर लीजिए, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। और इस मेल आईडी पर आपको भेजना है अपने नाम और पते के साथ में अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश। और इस कार्यक्रम में हम आपके रेडियो सेट

तक के पहुंचाएंगे आपके इस गीत को। और कार्यक्रम में शामिल कर लिया है अब हमने अगले ढेर सारे मेल को, जिसमें शामिल हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, राम शंकर पत्रकार भाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर शाहू, रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति। इसके साथ ही साथ किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, ऋचा शिखा गुड़िया, सुरभि राजेश कुमार और विजय पांडे जी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार, और ये है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गांवकड़ राही, श्रीमती सरिता गांवकड़, प्रिंस एकांश गांवकड़, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गांवकड़, सिद्धांत गांवकड़, लाडला टुकटुक गांवकड़, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गांवकड़, सुमित गांवकड़, कुमारी ध्वनि गांवकड़ यानी परी। और बस पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर यह खूबसूरत सा ट्रैक जिसे हमने लिया है फिल्म नदिया के पार से। इसमें आवाज है जसपाल सिंह की, बोल और संगीत रविंद्र जैन के हैं, और ये गाना आपको ले जाएगा बहुत ही खूबसूरत से मंजर में। तो इस मंजर को एंजॉय करते हुए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ में, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत।

बहार तो आ गई है ढेर सारी आपके ईमेल के साथ, क्योंकि ये कार्यक्रम है आपके मेल आपके गीत, और आपके मेल के साथ में आपके ही पसंदीदा गीतों के साथ में इस कार्यक्रम को लेकर के मैं हूँ आपके साथ कीर्ति। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और शामिल कर लिया है हमने अगला मेल ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेन खंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना बंदना प्रियल और दिव्यांश विश्वकर्मा। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, उर्फी खान बुलंदशहर से हैं। ग्राम कुरियापुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं मुदित राजपूत, विजेंद्र पाल राजपूत, अनवी राजपूत, सुनीता राजपूत, शोभा राजपूत, दीपा राजपूत, राम फेरे राजपूत, कपिल राजपूत, प्रांजल राजपूत और रमा राजपूत। साथ ही साथ हैं भेड़ाघाट रोड जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, रितु सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोंड और मोहम्मद शादाब खत्री। और आप सबके लिए पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर ये खूबसूरत सा ट्रैक जिसे हमने लिया है फिल्म कामचोर से, और इस ट्रैक में जो आवाज़ है वो है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल इंदीवर के हैं, संगीत राजेश रोशन का है, और ये गाना बिल्कुल से पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर। सुनिए और इन्जॉय कीजिए।

और श्रोताओं, ये आपकी प्रीत और प्रेम और मोहब्बत है कि आपके इतने ढेर सारे मेल हम तक पहुंच रहे हैं और शामिल कर लिया है हमने ढेर सारे मेल को एक बार फिर हमारे अगले गाने के लिए इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आपके मेल आपके गीत। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूर, कमरून निशा, शाबिस्ता पलक लुगना और यश मंसूरी, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डाकबाबू बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कोआथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर और इसके साथ ही साथ बलिया उत्तर प्रदेश से फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, डब्बू वली बेलदार, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मणिराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव और राम प्रसाद। और आपके लिए पहुँच रहा है आपके रेडियो सेट पर आनंद आश्रम फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसे लिखा है इंदीवर ने, श्यामल मित्रा ने इसे संगीत दिया है और आवाज़ है आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: सुर में गाना सीखिए।
1: और आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम में पहुंच रहा है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म असली नकली से। हसरत जयपुरी के हैं बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है आवाज़। और इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर हमारे इन श्रोताओं के मेल के साथ, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, नागचुन रोड संजय कानूनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, शिमला हिमाचल प्रदेश से वली उल्लाह, डब्लू उल्लाह, रेशमा नाज और बेबी अंसारी डोम, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित, पटना बिहार से याकूब असमा कुरैशी, यूसुफ असमा कुरैशी, सरफुद्दीन असमा कुरैशी और वसीम असमा कुरैशी। सुनिए और इंजॉय करिए इस गाने को।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। मिलेंगे फिर एक बार इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का।
1: महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने अस्पतालों में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन कर सांसद का पुतला फूंका था और जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर के बाद यह कार्रवाई हुई। सपा सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एआई तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। महोबा जनपद के प्रसिद्ध देसावरी पान को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने राठ रोड स्थित एपीओ जैविक बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष रूप से देसावरी पान से जुड़े नवाचारों को सराहा और पान उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया। डीएम ने मयंकता चौरसिया द्वारा स्थापित अच्युतम ऑर्गेनिक एंड हर्बल्स पान प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में देसावरी पान से निर्मित मुखवाश, पान लड्डू, पान शरबत, पान चॉकलेट सहित कई आकर्षक उत्पाद

0: बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। डीएम ने नवचारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार में नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी FPO एवं स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद यहां विक्रय करेंगे तथा जिनके उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करा लें। महोबा के इस जैविक बाजार में अब तक कुल 12 FPO एवं स्वयं सहायता समूहों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। यह बाजार नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूज के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। महोबा के जैतपुर में स्थापित यह हाईटेक नर्सरी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं और किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार है। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूज की बागवानी में कम समय में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों और आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से यहाँ हाईब्रिड और रोग मुक्त पौधे तैयार किए गए थे जिससे किसानों को अब अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा
1: तरबूज की और खरबूजा की खेती लगभग 1400 हेक्टेयर की जाती है। एक हेक्टेयर में आराम से 3-4 लाख रुपए किसानों को 3-4 महीने मिल जाती है। कुछ किसान ने बताया कि 8-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महोबा जिले में कुल 4,25,310 आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 2,79,612 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने शेष पात्र लाभार्थियों से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लोग जिला अस्पताल के महिला एवं पुरुष आयुष्मान कक्ष सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर आयुष्मान मित्र की सहायता से निशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO ANM एवं आशा संगिनी द्वारा भी यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में

साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज को हनुमत धाम के प्रांगण में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और विद्युत आपूर्ति में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को 50% से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22,000 से अधिक वाद प्रकरणों को निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6,11,00,000 रुपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6,190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रुपए का राजस्व

0: समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6 करोड़ 11 लाख रुपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। विभिन्न बैंकों के द्वारा 384 बैंक ऋण मसलों का निस्तारण कराकर लगभग 5,62,00,000 रुपए का सेटलमेंट किया गया। पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 64 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुजफ्फरनगर जिले में इस समय स्व जनगणना का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2026 तक होने वाली स्व जनगणना में जनपद के सभी नागरिक स्वयं की जनगणना पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कराने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जुटी हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर संदेश दे दिया कि अब देश की आधी आबादी अपने हक के लिए जाग चुकी है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाती ये महिलाएं प्रकाश चौक पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं राष्ट्र हित में किए गए आह्वान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने निजी गाड़ी के स्थान पर मेट्रो का उपयोग किया। कपिल देव ने गोरखपुर से लौटते समय निजी वाहन का उपयोग न करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से मोदीपुरम तक मेट्रो एवं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से यात्रा कर जनमानस को ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का प्रेरणादायी संदेश दिया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज हमारे दिन भर कार्यक्रमों के श्रृंखला में आप सुनेंगे जन्म जयंती पर विशेष हिंदी कार्यक्रम, जिसे लेकर आएंगे रात्रि 8 बजे। और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रकृति

प्रीति प्रेम और सौंदर्य के उपासक सुमित्रा नंदन पंत। आलेख वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का है और प्रस्तुति डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की होगी। विज्ञान और किसान इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 2:30 पर। आज सुनिए भेंटवार्ता, सतावर की उन्नत खेती। इस विषय पर स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मातृ शिशु स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम आंगनवाड़ी लेकर आएंगे 1:15 पर, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य वर्धक विषयों पर चर्चा के साथ सुनेंगे भेंटवार्ता। जच्चा बच्चा योजना, इस विषय पर नर्सिंग ऑफिसर नीमा पंत SGPGI लखनऊ से भेंट करता होंगी नीना सोनकर।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सामईन हजरात आदाब, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जावेद अहसन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ उर्दू प्रोग्राम। हजरात, जब भी उर्दू अदब में इनकलाब, रूमानियत और इंसानी दोस्ती का जिक्र आएगा, एक नाम उफुक पर सबसे ज़्यादा रोशन नज़र आएगा और वो नाम है अली सरदार जाफरी। वो सिर्फ किताबों और मुशायरों के ही बेताज बादशाह नहीं थे, बल्कि उन्होंने फिल्मी दुनिया की चमक दमक में भी अपने कलम का तकद्दस बरकरार रखा। उन्होंने नगमों को सिर्फ तफरी का जरिया नहीं बनाया, बल्कि इनमें समाजी शुरूर और गहरे जज्बात की रूह फूंकी। आइए, आज के इस खास प्रोग्राम में हम सफर बनते हैं अली सरदार जाफरी के इस फनी सफर के, जहाँ अदब और बॉलीवुड की मौसीकी गले मिलती दिखाई देती है। आज उर्दू बज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं तकरीर। मौजू है अली सरदार जाफरी बतौर नगमा निगार। इसके अलावा डॉक्टर तालिब इकराम से समात फरमाइएगा उनका कलाम। पहले सुनते हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल से उनकी तकरीर अली सरदार जाफरी बतौर नगमा निगार।
2: उर्दू अदब में अली सरदार जाफरी का नाम मोहताज तारुफ नहीं। वो तरक्की पसंद अदबी तहरीक के न सिर्फ अहम सुतून थे, बल्कि उनका शुमार तरक्की पसंद अदबी तहरीक के नज़रिया साजों में होता है। वो बयक वक्त शायर, अदीब, मुहक्किक, नाक़िद, सहाफ़ी, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म साज और नगमा निगार थे। अली सरदार जाफरी ने जहाँ एक तरफ नज़्म व नसर और तनकीद व तहक़ीक़ की शक्ल में गेरा बहा सरमाया उर्दू अदब को अता किया है, वहीं दूसरी तरफ अपनी इल्मी व अदबी सलाहियतों से हिंदुस्तानी रेडियो, टीवी और फिल्म को भी मालामाल किया है। अली सरदार जाफरी मकनतीसी शख्सियत के मालिक थे। उनके अहबाब का दायरा बहुत वसी था। उन्होंने उस दौर की आलमी शोहरत याफ्ता बहुत सी अजीम इल्मी, अदबी और सियासी शख्सियात से मुलाकातें की थीं। 1942 ईस्वी में जब अली सरदार जाफरी मुंबई आए तो तरक्की पसंद अदीबों के हल्के अहबाब में अदबी शख्सियतों के अलावा फिल्म से मुंसलिक उस दौर की अजीम शख्सियात का भी इजाफा हुआ। एक जगह लिखते हैं,

कोट। उस अहद की अजीम फिल्मी शख्सियतें हमारे हलके अहबाब में शामिल थी, मसलन KL सहगल, पृथ्वीराज कपूर, KN सिंह वगैरह। बाद को राज कपूर, नरगिस और दूसरे फिल्मी सितारे इस दायरे में आ गए। अनकोट। अली सरदार जाफरी ने फिल्मों से वाबस्तगी को अपना मुस्तकिल पेशा कभी नहीं बनाया। यही वजह है कि फिल्मी दुनिया में बतौर नगमा निगार उनका सफर बहुत मुख्तसर रहा है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन को एक खत मुअर्रिखा 10 दिसंबर 1969 में लिखते हैं, कोट, आपने अपने खत में फिल्मों से मेरे ताल्लुक का जिक्र किया है, ये बात पुरानी हो चुकी है। 1963 ईस्वी के बाद से मैं फिल्मों से दूर होता गया और अब कतन कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा जरिया माश सिर्फ मेरा कलम है, अनकोट। इसके अलावा मोहम्मद खालिद आबिदी को एक खत में लिखते हैं, कोट, वैसे फिल्मों से मेरी जिंदगी का कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, बहुत से अहबाब वहां काम करते हैं, मैं भी कभी कभी बहक कर उधर चला जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ, अनकोट। इस लिहाज से देखा जाए तो फिल्मी दुनिया से उनका रिश्ता वक्फे वक्फे से मुख्तसर, बहुत मुख्तसर मालूम होता है, लेकिन इतना भी अरसा किसी फनकार के लिए मुतल्लिका फन से अपनी महारत का सबूत फराहम करने के लिए काफी है। लिहाजा अली सरदार जाफरी ने इस मुख्तसर अरसे में भी फिल्म के मुख्तलिफ मैदानों में अपनी इल्मी अदबी सलाहियतों का एतराफ करवाया है। यहाँ भी वो बैक वक्त हिदायतकार, मुकालमा निगार, फिल्म साज और नगमा निगार थे। उन्होंने फिर बोलो ऐसंत कबीर, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, हिंदुस्तान हमारा और जिद्दोजहद आजादी के 100 साल जैसी दस्तावेजी फिल्मों की कहानियां और मुकालमे लिखे। साथ ही मौखिर जिक्र की कहानी लिखने के साथ साथ हिदायत के भी फरायज अंजाम दिए। टीवी सीरियल कहकशां के तहत हसद मोहानी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, असरारुल हक मजाज और मखदूम मोहिउद्दीन जैसे जदीद शोरा की शख्सियत और फन पर कामयाब सीरीज का भी आगाज किया। इन सब के अलावा वो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के सदर भी रहे। हिंदुस्तानी फिल्मों में अली सरदार जाफरी की नज़्म निगारी के सफर का आगाज 1943 ईस्वी में बनी फिल्म नया तराना से हुआ। इसके मौसीकार अमीर अली और हिदायतकार नज्म नकवी थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक ही नगमा लिखा था जिसके बोल ये हैं, हम दुनिया के अन्नदाता हैं, हम धरती माता के बच्चे, सावन की घनघोर घटाएं जब खेतों पर छाती हैं, जब प्यासी धरती के मुंह में वो अमृत रस टपकाती हैं, हम तब भी मेहनत करते हैं, हम तब भी पसीना बहाते हैं, हम तब भी भूखे मरते हैं, हम दुनिया के अन्नदाता हैं। बतौर नगमा निगार उनकी दूसरी फिल्म धरती के लाल थी, जो 1943-44 ईस्वी के कहते बंगाल के मौजू पर 1946 में हिंदुस्तानी अवामी थिएटर की जानिब से बनी थी। इसकी कहानी किशनचंद्र के अफसाना अन्नदाता पर मुनहसिर थी। इसके हिदायतकार ख्वाजा अहमद अब्बास और मौसीकार पंडित रविशंकर थे। इस फिल्म में कुल 4 नगमा निगारों ने नगमे लिखे थे। अली सरदार जाफरी के अलावा दीगर नगमा निगारों में प्रेम धवन, नीमी चंद जैन और वामिक जौनपुरी थे। तलाशी बिस्यार के बाद भी ये वाजे न हो सका कि अली सरदार जाफरी ने इस फिल्म के लिए कितने नगमे लिखे थे। हाँ, ये जरूर मालूम हुआ कि उन्होंने इसके लिए मुआवजे के तौर पर ₹25 लिए थे। एक इंटरव्यू में कहते हैं, कोट, ये फिल्म अवामी थिएटर की तरफ से बनी थी और मैंने गीत का मुआवजा सिर्फ ₹25 लिया था। अहमद अब्बास डायरेक्टर थे और बलराज सानी इसमें पहली बार आए थे, और जहां तक मुझे याद है मौसीकार पंडित रविशंकर थे जो हमारे अवामी थिएटर के एक रुकन थे, अनकोट। लेकिन इस फिल्म के तकरीबन तमाम नगमों में तरक्की पसंद ख्यालात की बाजगश सुनाई देती है। इसके बाद अली सरदार जाफरी ने 1952 ईस्वी में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म अनहोनी के लिए नगमे लिखे, जिनमें से दर्ज ज़ेल नगमा बहुत मशहूर हुआ था, इस दिल की हालत क्या कहिए, जो शाद भी है नाशाद भी है, कुछ खो भी दिया कुछ पा भी लिया, एक राग खुशी ने गा भी लिया और होंठों पे फरियाद भी है, दिल शाद भी है नाशाद भी है, इस दिल की हालत क्या कहिए, जो शाद भी है नाशाद भी है। इस नगमे को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी और मौसीकार रोशन थे। इसी साल 1952 ईस्वी में अली सरदार जाफरी ने पंकज मलिक की मौसीकी में फिल्म जलजला के लिए नगमे लिखे, जिनके बोल ये थे, हम तो गलियों के लाल, मुझे देख कर जब वो मुस्कुराएंगे जीवन नैया बहती जाए। इसके बाद 1953 ईस्वी में जिया सरहदी की हिदायत में बनी फिल्म फुटपाथ के लिए अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी ने मुश्तरका तौर पर 2 नगमे लिखे, जिनके बोल ये हैं, पहला, शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, दूसरा, ठंडी पवन चले सांझ ढले। इसके अलावा 1954 ईस्वी में आई फिल्म धोबी डॉक्टर के लिए अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी ने एक नगमा लिखा था जिसका मुखड़ा था, झिलमिल झिलमिल तारे नील गगन में।

0: 1957 ईस्वी में फिल्म परदेसी के लिए उन्होंने प्रेम धवन के साथ मिलकर नगमे लिखे थे। इसमें एक नगमा इनफरादी तौर पर अली सरदार जाफरी ने लिखा था, जो बहुत मशहूर हुआ था। इसके बोल थे, जाओ सिधारो फिर मिलेंगे जाने वाले। 1963 ईस्वी में ख्वाजा अहमद अब्बास की हिदायत में बनी फिल्म शहर और सपना ने सदर जमहूरिया हिंद से गोल्ड मेडल हासिल किया। इस फिल्म में सिर्फ एक ही नगमा शामिल था जिसे अली सरदार जाफरी ने लिखा था। मौसीकार जेपी कौशिक थे और इसके गुलकार अदाकार मनमोहन कृष्ण थे। ये एक तवील नगमा था जिसके चार हिस्से थे। पहला, ये शाम भी कहाँ हुई। दूसरा, पत्थर का भगवान यहाँ है पत्थर का शैतान। तीसरा, पत्थर को आज नई तरह निभाना होगा। चौथा, हजार दर ये सब अजनबी हैं मगर। 1964 ईस्वी में मौसीकार जेपी कौशिक के लिए एक मरतबा फिर अली सरदार जाफरी ने फिल्म हमारा घर के लिए नगमे लिखे, जिसमें चले हवा पुरवाई, उषा जगमग जगमगाई बहुत मकबूल हुआ। और बाद अजां 1965 ईस्वी में आसमां महल के लिए तीन नगमे लिखे जिसके मुखड़े ये हैं। पहला, तूने समझा ही नहीं क्या है हकीकत मेरी। दूसरा, खूबसूरत है तेरी तरह शिकायत मेरी। तीसरा, लाओ पिलाओ मैं शराबी हूँ। 1980 में ख्वाजा अहमद अब्बास की हिदायत में बनी फिल्म नेक्सलाइट के लिए भी अली सरदार जाफरी ने नगमे लिखे। इसके मौसीकार प्रेम धवन थे। इसका एक नगमा उन दिनों बहुत मकबूल हुआ था, आज अपने लहू में नहाने चले, देख लो अपना वादा निभाने चले। इन नगमों के अलावा सरदार जाफरी की कई गजलें भी फिल्मों में शामिल हैं। जबानो बयान के एतबार से देखा जाए तो उनकी बेशतर नगमों पर उनकी शायरी की ही तरह इंकलाब एहतजाज का लहजा गालिब है। बेशक ये नगमे मनाजिर के मुताबिक लिखे गए हैं, लेकिन अली सरदार जाफरी ने फिल्म की सिचुएशन का ख्याल रखते हुए नाजरीन और सामईन के साथ अपने लिए भी उनके जरिए जहनी तमानियत का सामान फराहम किया है। इसके अलावा उनके नगमों में फिल्मी तकाजों के पेश नजर वो तमाम चीजें बतमामो कमाल मौजूद हैं जो एक नगमा और फिल्म की मकबूलियत का सबब बनती हैं। साथ ही उनकी अदबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनके नगमों में इंकलाब के साथ साथ रूमान नगमगी और जबान का हुस्न देखते ही बनता है। उनके नगमों के चंद टुकड़े मुलायजा हूँ। तूने समझा ही नहीं क्या है हकीकत मेरी। इतनी आशा नहीं है दोस्त मोहब्बत मेरी। जामो मीना के सिवा और भी पैमाने हैं। दर्द दिल दर्द मोहब्बत भी तो मैखाने हैं। तू न समझा है न समझेगा शिकायत मेरी। इतनी आशा नहीं है दोस्त मोहब्बत मेरी। मुझे वो देख कर जब मुस्कुराएंगे तो क्या होगा। मेरी दुनिया पे बिजली सी गिराएंगे तो क्या होगा। मैं उनके सामने आई तो हूँ जी को कड़ा करके। इशारों से जो पास अपने बुलाएंगे तो क्या होगा। मेरी नजरों से घबरा कर वो नजरें खुद झुका लेंगे। झुका कर अपनी नजरें फिर उठाएंगे तो क्या होगा। मुख्तसर ये कि हिंदुस्तानी सिनेमा को हुस्ने जबान नाजो अदा गमजो उशवा इश्क व वारफ्तगी उर्दू ही का अतिया है। हिंदुस्तानी फिल्मों का आयद जर्री उर्दू का मरहून मिन्नत है। ये एक मुसलमा हकीकत है कि उर्दू के फनकारों अदीबों और शायरों ने हिंदुस्तानी फिल्मों के फिक्रोफन की आबियारी अपने खूने जिगर से की है और इसे बुलंदियों तक पहुंचाया है। बॉलीवुड से वाबस्ता कोई भी फनकार इसकी तरक्की में उर्दू की अहमियत किरदार से रूगर्दानी नहीं कर सकता। नगमा निगारों की एक तवील फहरिस्त है जिसमें अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, मोहिन हसन जज्बी, हसद जयपुरी, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, शहरियार, खतीर शिफाई, कैफी आजमी, मजू सुल्तानपुरी, निदा फाजली, गुलजार और जावेद अख्तर वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। इन शोरा ने अपने फिक्रोफन से अदब और फिल्म दोनों को बुलंदी अता की। अली सरदार जाफरी भी इनमें से एक हैं। फिल्मों में उनके नगमों की तादाद जरूर कम है, लेकिन जितनी भी है उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।
1: अली सरदार जाफरी बतौर नगमा निगार, अभी आपने इस मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद अफजल की तकरीर सुनी और अब कलाम शायर के तहत समात फरमाइए डॉक्टर तालिब इकराम से उनका कलाम।
2: गजल के चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाजा फरमाए। सबब यही है रगे जाम इनकलाब नहीं, सबब यही है रगे जाम इनकलाब नहीं। हमारे पेश नज़र अब कोई किताब नहीं, हमारे पेश नज़र अब कोई किताब नहीं। चमन में खुशबुए तहजीब का गुलाब नहीं, चमन में खुशबुए तहजीब का गुलाब नहीं। निज़ाम नौ है तमद्दुन पे यहाँ खिताब नहीं, निज़ाम नौ है तमद्दुन पे यहाँ खिताब नहीं। और पहाड़ जुल्म के ढाए हैं एहतसाब नहीं, पहाड़ जुल्म के ढाए हैं एहतसाब नहीं। खुदी को जिंदा करो खुद का क्यों हिसाब नहीं, खुदी को जिंदा करो खुद का क्यों हिसाब नहीं। और ये शेर देखें,

कहूं ना कैसे कोई दूजा महताब नहीं, कहूं ना कैसे कोई दूजा महताब नहीं, तुम्हारे सीने में पहले सा इस्तराब नहीं, तुम्हारे सीने में पहले सा इस्तराब नहीं। और ये शेर बतौर खास मुलाजा करें कि इबादतों की हो कसरत कोई सवाब नहीं, इबादतों की हो कसरत कोई सवाब नहीं, सिवाय फितने के वाइस तेरा खिताब नहीं, सिवाय फितने के वाइस तेरा खिताब नहीं। और छुपाना खुद को है कहना कि मुस्तजाब नहीं, तज़मीन का शेर है कि छुपाना खुद को है कहना कि मुस्तजाब नहीं, निगाहे नरगिसे राना तेरा जवाब नहीं, निगाहे नरगिसे राना तेरा जवाब नहीं। और ये शेर देखें कि खुमारो खुम नहीं ज़ौको तलब शराब नहीं, खुमारो खुम नहीं ज़ौको तलब शराब नहीं, बजुस सनम मुझे हाजत नहीं जनाब नहीं, बजुस सनम मुझे हाजत नहीं जनाब नहीं। और बचश्मे यार दिलो जहाँ पे अब अजाब नहीं, बचश्मे यार दिलो जहाँ पे अब अजाब नहीं, खुदा का शुक्र है कि बरसरे एताब नहीं, खुदा का शुक्र है कि बरसरे एताब नहीं। और मकता है कि गुमा गलत है कि तालिब के दिल में ख्वाब नहीं, गुमा गलत है कि तालिब के दिल में ख्वाब नहीं, इल्ला तुम्हारे कोई शमे आफ्ताब नहीं, इल्ला तुम्हारे कोई शमे आफ्ताब नहीं, सबब यही है रगे जामे इनकलाब नहीं, हमारे पेशे नज़र अब कोई किताब नहीं। चंद शेर और मुलाजा करें उर्दू के हवाले से कि तहजीब की पहचान है इंसान की ज़बाँ है, तहजीब की पहचान है इंसान की ज़बाँ है, उर्दू ना मुसलमान का ना हिंदू का निशान है, तहजीब की पहचान है इंसान की ज़बाँ है, उर्दू ना मुसलमान का ना हिंदू का निशान है, नफ़रत के अंधेरों में ये उम्मीद सहर है, नफ़रत के अंधेरों में ये उम्मीद सहर है, उर्दू की फ़ज़ा महरो अख़ुवत का समा है, उर्दू की फ़ज़ा महरो अख़ुवत का समा है। और शेर देखें कि गंगा की रवानी है हिमालय की बुलंदी, गंगा की रवानी है हिमालय की बुलंदी, ये रूह वतन शान दिले अहले जहाँ है, ये रूह वतन शान दिले अहले जहाँ है। और ये शेर देखें कि उर्दू को मिटाना कहाँ मुमकिन है जहाँ से, उर्दू को मिटाना कहाँ मुमकिन है जहाँ से, इस कौम के सीने में अभी शोला जवां है, इस कौम के सीने में अभी शोला जवां है। और मकता है कि तालिब भी है जिस नगमे बेदार पे नाजा, तालिब भी है जिस नगमे बेदार पे नाजा, वो नगमे उर्दू दिले इंसान की अजा है, वो नगमे उर्दू दिले इंसान की अजा है। एक गजल और आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाजा करें कि ताबे गम ने बहार बख्शी है, ताबे गम ने बहार बख्शी है, खाक को भी वक़ार बख्शी है, खाक को भी वक़ार बख्शी है, और फिक्र रोशन ने कौम की शब को, फिक्र रोशन ने कौम की शब को सुबह उम्मीदवार बख्शी है, सुबह उम्मीदवार बख्शी है। और ये शेर देखें कि जख्म खाकर भी मुस्कुराने ने, जख्म खाकर भी मुस्कुराने ने हिम्मतों को निखार बख्शी है, हिम्मतों को निखार बख्शी है, और जिसने परवाज का हुनर सीखा उसको शाही शियार बख्शी है, जिसने परवाज का हुनर सीखा उसको शाही शियार बख्शी है। तेरे अपने यकीन मुहकम ने, तेरे अपने यकीन मुहकम ने रूह को इक्तदार बख्शी है, तेरे अपने यकीन मुहकम ने रूह को इक्तदार बख्शी है। और शेर देखें कि इश्क की आग ने मेरे दिल को, इश्क की आग ने मेरे दिल को रोशनी बेशुमार बख्शी है, इश्क की आग ने मेरे दिल को रोशनी बेशुमार बख्शी है, और तेरी आमद ने इस खराबे को, तेरी आमद ने इस खराबे को रौनक़े रोज़गार बख्शी है, रौनक़े रोज़गार बख्शी है, और सब्र की चाशनी ने इंसान को, सब्र की चाशनी ने इंसान को हौसले का हिसार बख्शी है, हौसले का हिसार बख्शी है। और ये शेर देखें कि याद हमदम ने दिल के सहरा को, याद हमदम ने दिल के सहरा को अब्र की आबशार बख्शी है, याद हमदम ने दिल के सहरा को अब्र की आबशार बख्शी है। और तेरी उल्फत ने ऐ सनम हमको, तेरी उल्फत ने, तेरी उल्फत ने ऐ सनम हमको रूह को इफ्तिखार बख्शी है, रूह को इफ्तिखार बख्शी है, और हक है उसकी सुखन नवाजी ने, हक है उसकी सुखन नवाजी ने शायरी

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज की कलाकार मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश, इनके स्वर में आप सुनेंगे अवधी युगल लोक गीत। आपके साथ नाल पर संगत करता है अवध बिहारी वर्मा, ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी, हारमोनियम पर ललित चंद्र भट्ट, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम पर गौरव गुप्त। आइए सबसे पहले सुनते हैं लोक रंग कार्यक्रम में मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश की आवाज में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश के स्वर में आइए अब सुनते हैं बारामासा।

इस लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश के स्वर में अवधि युगल लोकगीत आप दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माद्री में भी सुन सकते हैं। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: आकाशवाणी लखनऊ, आपने ट्यून किया है अपने रेडियो सेट पर, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में खामोशी फिल्म के इस गीत के साथ बोल गुलजार के हैं और संगीत हेमंत कुमार का।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर को और साथ ही में मन्ना डे को, फिल्म रात और दिन में। बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में रात और दिन फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 10:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक को लेकर बेहद उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रि भोज पर मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर इस दौरान अपने विचार साझा किए। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कल शाम रोम में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय का धन्यवाद किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के

0: तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहन स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री रूबियो कोलकाता, नई दिल्ली, आगरा और जयपुर जाएंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया है कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमरीका के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड समूह में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर कल रात पेइचिंग पहुंचे। इस दौरान श्री पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वार्ता करेंगे। श्री पुतिन की ये यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा संपन्न होने के 1 सप्ताह से भी कम समय में हो रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री पुतिन की ये यात्रा वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नाइजीरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान में इस्लामिक स्टेट के 175 आतंकवादी मारे गए हैं। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता समाइल उबा ने कल कहा कि अभियान के दौरान संयुक्त हमलों में चौकियों, हथियार डिपो, रसद केंद्रों, सैन्य उपकरणों और आतंकी गतिविधियों को मदद देने वाले वित्तीय नेटवर्क के मुख्यालयों को नष्ट किया गया। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री रोजर काम्बा ने ये जानकारी दी। कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में 543 संदिग्ध मामले और 32 पुष्ट संक्रमण दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में 2 मामलों की जानकारी मिली है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग के एक सहायक सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी कल सुबह खुलशी इलाके में दूतावास परिसर में मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 35 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है। वे हरियाणा के रहने वाले थे और चट्टोग्राम स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत थे। दूतावास कर्मियों ने नरेंद्र के कमरे से कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चट्टोग्राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूडान के मध्य क्षेत्र में एक व्यस्त बाजार पर ड्रोन हमले में 28 लोगों की मौत

0: गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। पश्चिम कोदोफान प्रांत के घुबैश शहर के बाजार को उस समय निशाना बनाया गया जब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। समूह ने हमले के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि सूडानी सेना ने इन आरोपों से इनकार किया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है। इनमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल एआई एजेंट भी शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की।

0: सुबह के 10:20 हुए हैं, चित्रपट से कार्यक्रम हम लेकर आएंगे बस कुछ ही पलों में।
1: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है नए फिल्मी तराने से सजा कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला नजराना आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है फिल्म दो पत्ती से। आवाज सचेत टंडन की है, बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचेत परंपरा का।

यासर देसाई और जीत गांगुली को अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण में। बोल रश्मि विराग के हैं और संगीत जीत गांगुली का।

आकाशवाणी लखनऊ से ये कार्यक्रम है नए तराने से सजा चित्रपट से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: चित्रपट से कार्यक्रम में ये है गाना फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो 2 से, जिसमें है आवाज सचेत टंडन और आकाशा की, बोल मयूरपुरी के और संगीत प्रीतम का।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और ये कार्यक्रम है चित्रपट से। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सिरिशा भगवतुला की आवाज में कला फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसमें बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से और बारी है एक और छोटे से अंतराल की।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
6: 8700001

0: 1-4-2-4-2।
1: आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम चित्रपट से, और अगला गाना आप से पहुंच रहा है सचेत टंडन की आवाज में फिल्म जर्सी से। बोल शीली के हैं और संगीत सचेत परंपरा का।

विद्या गोपाल, याशिका सिक्का, दर्शना मेनन, रीना गिलबर्ट और ऐश्वर्या कुमार की मिलीजुली आवाज़ों में आप तक पहुंचा रहे हैं हम अगला गाना फिल्म एनिमे से। बोल स्नेहलता चारी और रेव शेरगिल के हैं और इस गाने को कंपोज किया है थमन एस ने।

चित्रपट से कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोनाली ठाकुर को फिल्म महाराज में। बोल कौसर मुनीर के हैं और संगीत सोहेल सेन का।

चित्रपट से कार्यक्रम में ये है अगला गाना, फिल्म आप जैसा कोई से। मोहित चौहान की आवाज़, गुरप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा है और रोचक कोहली का है संगीत।

महे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होय के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से। और आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा फिल्म वजीर से, आवाज सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, बोल विधु विनोद चोपड़ा के और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

0: मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर था, 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ से इस विशेष फोन इन कार्यक्रम तुम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र विभा श्रीवास्तव। श्रोताओं, ये एक ऐसा मंच है जहां आवाज़ बनेगी हमारी पहचान, आपके विचार, आपकी बातें और आपके अनुभव होंगे इस महफिल की असली रौनक। तो उठाइए फ़ोन और जुड़ जाइए हमसे और कहिए अपने मन की बात, क्योंकि ये कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो सबसे पहले हम आपको फ़ोन नंबर बता दें जिसमें आप हमें करिए फ़ोन और सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गीत। नंबर है 0522, ये लखनऊ का कोड है, 2238825, 0522 2238825। तो शुरू करते हैं सुरों की शानदार महफिल और जुड़ते हैं कार्यक्रम के पहले श्रोता से और सुनते हैं कि इनकी फरमाइश क्या है। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्ते मैम,
1: और पहले तो अपना परिचय दीजिए।
2: किशोर कुमार बोल रहा हूँ, टेढ़वा चिलौरा लखीमपुर और जिला सीतापुर से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा, आपने अपना नाम, पहले शोर कम करिए,
2: आवाज नहीं आ रही है।
1: आप इतना शोर पीछे से आपके आ रहा है तो आवाज कैसे आएगी बताइए। हाँ, अब बताइए। हाँ, आपने अपना नाम क्या बताया?
2: किशोर कुमार
1: जी, लखीमपुर रोड सीतापुर। अच्छा अच्छा, किशोर कुमार जी, आज बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप? कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बताइए
2: जी। जैसे कि दोपहर में गर्मी लगे और रानी गर्मी लगे।
1: अच्छा चलिए ठीक है, फिर आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है।
2: हमारे दो आदमी मित्र बैठे हैं दुकान पे हैं, प्रधान जी बैठे हैं और मोनू भैया बैठे, रामस्वरूप चाचा, सियाराम दादा बैठे, बबलू भैया बैठा है, सब यहाँ बैठे हुए।
1: चलिए सबकी, आप सभी के लिए ये गाना आप
2: जी। नमस्ते
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार। और पहले तो अपना नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए, आपका नाम क्या है?
1: जी, तो मैं आपको अपना नाम बताऊँ थोड़े अंदाज से। और इस वक्त मैं ठंडी ठंडी हवा क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ,
0: अच्छा, कहाँ से?
1: शिमला से राकेश बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, शिमला। तब तो भाई आप बहुत अच्छी जगह से बात कर रहे हैं। आज यहाँ तो
1: जी,
0: बहुत
1: इस वक्त
0: गर्मी है।
1: है 25-30 तक तापमान हमारा है,
0: हाँ
1: शायद आपके यहाँ 40-45 डिग्री तक तापमान होगा।
0: हाँ
1: पर
0: हमारे यहाँ
1: हमारे यहाँ ठंडी
0: पैंतालीस
1: ठंडी हवा चल रही है। जी
0: पैंतालीस 46 डिग्री है हमारे यहाँ।
1: जी जी जी
0: और बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहा है आपने?
1: दिल मांगे मोर मूवी का गाना सुनवा दीजिएगा। जी
0: दिल मांगे मोर का। चलिए भाई,
1: जी
0: आपकी
1: जी
0: पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं। आप ठंडी ठंडी हवा के साथ इस गाने का आनंद लीजिए।
1: जी बिल्कुल
0: ठीक
1: बिल्कुल, सुना
0: ठीक
1: दीजिएगा।
0: हाँ,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की से कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, जिसमें आप हमें करते हैं फ़ोन और सुनते हैं अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे। तो आज फिर से हम एक बार आपको नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 0522-223-8825, जिसपे हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ सकें और अपनी पसंद के गीत सुन सकें। तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं। हेलो,
1: शिवा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप? अपना पूरा परिचय दीजिए।
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, प्रेम सिंह, नियमित श्रोता हैं आप हमारे प्रेम सिंह जी। तो
1: जी
0: आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
1: जी फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और गाने के बोले किसी डिस्को में जाए।
0: चलिए भाई, आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।
1: जी बिल्कुल। रिभा जी एक बात है, जैसे मैं आकाशवाणी लखनऊ में कॉल लगाता हूँ,
0: हाँ,
1: तो मेरी ऐसी दीवानगी है क्योंकि यहाँ पे कॉल एक बार कनेक्ट होने के बाद में रिसीव किया जाता है और श्रोता से जो भी पसंद का गाना मांगा जाता है वो सुनाया जाता है।
0: हाँ,
1: इस वजह से आकाशवाणी लखनऊ का ये कार्यक्रम कुछ कहो कुछ हम कहे बहुत ही फेमस होता है।
0: हाँ,
1: और जितने भी श्रोता कॉल लगाते हैं ना, बड़े स्वादिष्ट होता है, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं सभी।
0: बिल्कुल सही बात का, तो यही तो कहते हैं कि ये मंच आप लोग के लिए तो बना है, इसलिए हम आपसे बात करते हैं और आपकी बात सुनते हैं।
1: तभी तो इस कार्यक्रम का नाम रखा गया कि
0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहे। बिल्कुल सही कहा आपने प्रेम सिंह जी,
1: सभी श्रोताओं को मतलब बोलने का मौका दिया जाता है।
0: बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम ही का नाम ही है ऐसा।
1: जी जैसे विभा जी एक बात है, गाने सुनने को तो कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन जब आकाशवाणी पर अपनी पसंद का गाना बजता है ना,
0: हाँ,
1: तो भी अच्छा लगता है।
0: चलिए भाई, हम लोग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को हमारे कार्यक्रम और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
1: जी
0: चलिए, तो आज कौन सा गीत चुना है आपने, बताइए।
1: जी फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और गाने के बोले किसी डिस्को में जाए।
0: तो सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: आदरणीय दीदी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है
1: दीदी
0: कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ। दीदी बहुत
0: राजू लवानिया जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। बताइए आप कैसे
1: बहुत
0: हैं।
1: धन्यवाद दीदी। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तब जाके 2 महीने बाद फोन लगता है। एक बार फोन लगा तो फिर 2 महीने से पहले लगने का तो सवाल ही नहीं होता।
0: चलिए, लेकिन जब 2 महीने बाद बात करिए तो कुछ नया सा और अच्छा सा लगता है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से श्रोता तो ऐसे हैं उनको डेली लगाना है, चाहे और किसी
0: और
1: श्रोता का नंबर लगे या ना लगे। मैं तो उन श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि वो
0: बिल्कुल कि
1: जब
0: एक बार मिलने
1: आकाशवाणी जब आकाशवाणी का ये सिद्धांत है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो आकाशवाणी के श्रोताओं का भी वही सिद्धांत होना चाहिए।
0: सिद्धांत होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: खैर अपनी
0: सबको
1: अपनी सोच है दीदी, ये रेडियो की दीवार में कुछ होती ही ऐसी है कि लोग बिना फोन लगाए मानते नहीं
0: हाँ,
1: है।
0: और उनका मिल जाता है, ये भी उनकी किस्मत होती है।
1: ये उनका लक है, ये उनका
0: वही
1: लक
0: तो
1: है
0: कह रहे हैं। तो और बताइए, आगरा में तो और भी गर्मी पड़ रही होगी, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है।
1: जी दीदी, आगरा में इतनी गर्मी है पिछले 3 दिन से कि 10 बजे के बाद बाहर निकलना दूभर हो गया है। और इतनी गर्म हवाएं हैं, इतनी तेज धूप है कि हम जाकर भी बाहर निकले तो भी नहीं निकल सकते।
0: यहाँ भी धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन अब वही है कि जिसको काम पे जाना है तो जाना ही रहता है।
1: जी दीदी ये प्रकृति है, लेकिन जो प्रकृति का संतुलन इस वर्ष आपने देखा होगा काफी बिगड़ा हुआ नजर आया है।
0: सही बात कह रहे हैं।
1: बीते दिनों में काफी कैजुअलिटीज हुई हैं, काफी लॉस भी हुआ है।
0: हाँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर गर्मी को कम करना है तो हम सब एक एक पेड़ जरूर लगाएं। अभी गर्मी
1: प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है,
0: जरूरी
1: और
0: है,
1: न सिर्फ पेड़ लगाएं उनकी देखभाल रखें,
0: देखभाल
1: वो जो
0: करें।
1: जंगल बचे
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल। और
1: उन्हें
0: जिसमें
1: सुरक्षित रखें।
0: हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है उसको इतनी गर्मी ना सहन करनी पड़े।
1: बिल्कुल दीदी, आने वाले ज्यादा नहीं 10-15 सालों में आप प्रकृति का और भी ज्यादा विकराल रूप देख
0: वही,
1: पाएंगे
0: अगर
1: अगर यही
0: हमने ये
1: कंडीशन
0: काम
1: रही
0: हाँ
1: तो।
0: ये काम नहीं किया तो। तो बताइए राजू जी, आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: आज फिल्म का नाम है, एक नई फिल्म आई थी उमराव जान,
0: हाँ हाँ आई थी,
1: उसमें बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है अलका याग्निक जी की आवाज में।
0: हाँ,
1: और गाने के बोल हैं, तुम जो पास आ गए हम जो शर्मा गए,
0: तुम जो पास आ गए हम जो शर्मा गए, है
1: जी
0: ना? अच्छा, तो ये गाना हम आपको सुनवा देते हैं। तुम जो, फिर से एक बार बताइए आप, गाने के बोल हैं।
1: तुम जो पास आ गए हम जो शर्मा गए, राजे दिल पा गए, तुम भी पहले पहल हम भी पहले पहल।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लीजिए, चलिए, आपका गाना आपके लिए हाजिर है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, नमस्कार।

0: अपर्णा ये बताइए करती क्या हैं आप?
1: हेलो
2: हेलो मेरी प्यारी प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा गुड मॉर्निंग
1: गुड मॉर्निंग नमस्कार। और
2: जी, मैं आप तो से पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीश सीगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
1: पिंकी रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।

0: थैंक यू
1: लेकिन
0: मैम। और कैसी हैं मैम आप?
1: बस ठीक है, आप दोनों बहनों का नाम साथ में ले लेती हैं, पिंकी रिंकी जी ना, कि
0: जी
1: बहन
0: बिल्कुल मैम,
1: नाराज ना
0: वैसे
1: हो
0: तो मैम
1: जाए।
0: हमारी पहचान रेडियो पे रिंकी पिंकी के ही नाम से है,
1: रिंकी
0: सब लोग मुझे
1: पिंकी जी,
0: रिंकी पिंकी के नाम से ही जानते
1: अच्छा
0: हैं।
1: चलिए भाई, रिंकी पिंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये
0: जी
1: बताइए आप करती क्या है रिंकी पिंकी जी?
0: मैम घर पे रहते हैं दोनों लोग, घर के
1: चलिए
0: काम भी करते हैं, साथ में आपका कार्यक्रम कंटिन्यू सुनते रहते हैं,
1: बहुत
0: लेकिन मैम
1: अच्छी बात।
0: मुलाकात आपसे बहुत मुश्किल हो जाती हो ना।
1: मुलाकात होना मुश्किल हो जाती है बातों के जरिए ना।
0: जी बिल्कुल मैम, और हम आपका कार्यक्रम रोज सुबह सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: चलिए भाई,
0: आपके
1: बहुत
0: कार्यक्रम सुनना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि आप सबको
0: जी,
1: हमारे
0: और
1: कार्यक्रम
0: मैम
1: अच्छे
0: आप
1: लगते
0: लोगों
1: हैं।
0: की आवाजें इतनी प्यारी इतनी मीठी लगती हैं कि मैम जब तक सुनो ना तो हमारा दिन ही नहीं मतलब
1: चलिए भाई,
0: गुजरता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और ये बताइए आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने
0: जी
1: के
0: मैम,
1: लिए?
0: मूवी का नाम है स्टेंट मैन और गीत के बोल हैं आज मिले हो कल फिर मिलना। और मैम मैं ये गीत आपको अपने भाई दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही और मेरी दोस्त है पूनम दीदी और गुंजन तिवारी, समापरवीन, साईबंसा

0: कंटिन्यू सुनते रहते,
1: बहुत
0: लेकिन मैम
1: अच्छी
0: मुलाकात आपसे बहुत मुश्किल हो जाती हो ना
1: बात मुलाकात होना मुश्किल हो जाती है बातों के जरिए
0: जी
1: ना
0: बिल्कुल मैम। और हम आप बता कि हम रोज सुबह सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: चलिए भाई,
0: आपके
1: बहुत
0: कार्यक्रम सुनना
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि आप सबको
0: जी।
1: हमारे
0: और
1: कार्यक्रम
0: मैम
1: अच्छे
0: आप
1: लगते
0: लोगों
1: हैं
0: की आवाजें इतनी प्यारी इतनी मीठी लगती हैं कि मैम जब तक सुनो ना तो हमारा दिन ही नहीं मतलब
1: चलिए भाई, बहुत
0: गुजरता
1: बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और ये बताइए, आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने
0: जी
1: के
0: मैम
1: लिए?
0: मूवी का नाम है स्टेंट मैन और गीत के बोल हैं आज मिले हो कल फिर मिलना। और मैम मैं ये गीत आपको अपने भाई दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही और मेरी दोस्त है पूनम दीदी और गुंजन तिवारी, समा
1: तो
0: परवीन, साहिब अंसारी,
1: सब
0: जयपाल
1: जितने
0: यादव
1: आपके,
0: भाई हैं और
1: हाँ
0: संजू भाई
1: जितने आपके सुनने
0: और
1: वाले हैं,
0: बबली
1: जानने,
0: यादव
1: हाँ
0: भाई,
1: जितने
0: इन
1: जानने
0: सबके
1: वाले
0: साथ
1: हैं
0: सुनना
1: सभी के लिए
0: चाहेंगे मैम
1: डेडिकेट। हाँ चलिए भाई, सबकी आप सबके
0: जी।
1: लिए ये
0: और
1: गीत
0: मैम मेरी प्यारी सी क्यूट सी दीप्ति मैम को मेरा प्यार भरा नमस्ते, क्योंकि उनसे
1: बिल्कुल
0: मुलाकात ही नहीं हो पाती मेरी मैम, हम बहुत कोशिश करते लेकिन मेरी कॉल ही नहीं
1: चलिए, वो
0: लगती
1: सुन रही होंगी तो उनका, उन्होंने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया होगा। ठीक
0: जी। और
1: है
0: मैम
1: रिंकी
0: उनको भी
1: पिंकी
0: ये
1: जी,
0: गीत डेडिकेट कर रहे हैं हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद,
0: नमस्ते मैम, बाय।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग। पहले तो अपना नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए, कहाँ से बोल रहे
1: जी,
0: हैं।
1: विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर से। धन्यवाद,
0: सीतापुर से विनीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए।
1: थैंक यू। आपका
0: हाँ
1: बहुत दिन बाद, बहुत प्रयास करना पड़ता है तब आकाशवाणी लखनऊ पर बात हो पाती है।
0: चलिए भाई, वो असल में सारी लाइनें बिजी रहती है ना, तो बस
1: जी, तो
0: कोशिश है लेकिन
1: कहते
0: कामयाब हो
1: हैं जो
0: जाती
1: एक
0: हैं।
1: के चना चबाना वही हो तो मतलब।
0: तो उसका एक क्रेज रहता है ना, जब वो
1: जी
0: फोन मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताइए विनीत जी,
1: हाँ,
0: आजकल क्या कर रहे हैं आप।
1: कुछ नहीं, गन्ना की सिंचाई हो रही थी। गन्ने
0: अच्छा, गन्ने की सिंचाई हो रही है, तो ये मौसम गन्ने के लिए अच्छा है।
1: के लिए अच्छा तो है, जब सिंचाई हो रही, गर्मी बहुत हो रही
0: बहुत
1: है।
0: गर्मी हो रही है, उसी में सिंचाई आप लोग करते हैं इतनी धूप में। लेकिन वही है कि
1: अरे,
0: चलिए।
1: रात भर जागना पड़ा, बिजली इनकम बहुत, इस समय
0: हाँ
1: वोल्टेज बहुत डाउन आता है,
0: हाँ सही
1: बिजली
0: बात
1: भी
0: है।
1: बहुत कटती है, तो
0: हाँ
1: एक खेत में दो दो दिन लग जाते हैं।
0: ओ हो, चलिए मेहनत आपकी सफल हो और बहुत अच्छी गन्ने की फसल हो, इसी कामना के
1: गाने
0: साथ।
1: के बोल हैं, धूप में निकला न
0: हाँ
1: करो रूप की रानी, गिरफ्तार फिल्म का है,
0: हाँ
1: कुछ दोस्तों के नाम ले सकता हूँ क्या?
0: जल्दी जल्दी ले लीजिए दोस्तों के नाम, और दोस्तों से कहिए कि वो
1: ओमकार
0: भी।
1: अतरौली सीतापुर से हैं, सोमा परवीन अंसारी सीतापुर से हैं, संजय हरदोई से हैं,
0: हाँ
1: और सुनील कुमार गोकुलपुर से हैं,
0: चलिए आप
1: ममता हरदोई से हैं, और भगवान सिंह
0: जितने,
1: कुमार हैं,
0: हाँ जितने आपके
1: जगदम्बी से हैं, और
0: आज,
1: रैया से।
0: हाँ चलिए जितने आपके सुनने वाले दोस्त हैं सबके लिए
1: जी, सबके
0: डेडिकेटेड आपका।
1: लिए
0: हाँ
1: जिसने
0: चलिए,
1: सुना है सबके लिए।
0: नमस्कार।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। आप पहले नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए। हेलो, हाँ नाम बताइए, आपका क्या नाम है?
1: मैं दीक्षा पाली बोल रही हूँ।
0: दीपशा पाले का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
1: धन्यवाद मैम। मैं अनोखे रात मेरी है
0: हाँ,
1: और गाने को बोल रहे हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: चलिए भाई, बहुत प्यारा गीत है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपको सुनाते, ठीक है?
1: जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने फोन मेरा रिसीव किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो इसीलिए।
1: और
0: हाँ
1: इसे हम कहते हैं कि गर्मी का मौसम है, सब
0: हाँ
1: लोग ध्यान रखें, और सबसे
0: बहुत
1: पहले ध्यान सब सखियों का रखें, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: वो तो
0: सही बात है
1: पानी
0: कि
1: मूल को मिलता है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है कि ध्यान इस समय गर्मी के मौसम में बहुत
1: मैं
0: ध्यान
1: नेता
0: रखना है।
1: हूँ, परेशानी भी और
0: हाँ, और
1: खाने के ध्यान देती हूँ, और आते
0: बिल्कुल,
1: हैं हमारे घर तो
0: हाँ बिल्कुल, जरूर
1: सब्जी
0: पानी रखना चाहिए और पानी बदलते भी रहना चाहिए। जब गर्म हो जाए तो थोड़ा पानी बदल देना चाहिए उसका।
1: जी।
0: चलिए, तो आपकी पसंद का गीत सुनवा दें आपको।
1: मेरे पति हैं श्री भीमलाल पाली, और बड़े बेटे हैं उल्लास पाली, छोटे बेटे हैं उत्तर पाली, मैं
0: हाँ
1: दीक्षा पाली,
0: हाँ
1: और मैं नौ जिले से यूपी से हूँ,
0: अच्छा,
1: और एक भैया है मेरे धर्मेंद्र, भैया बीजापुर से जो नौ जिले से हैं,
0: हाँ तो
1: और एक भैया है हरदोई जिले से, राजेश कुमार
0: तो
1: विद्यार्थी
0: चलिए
1: भैया।
0: भाई,
1: बस
0: जितने लोग आपके जानने वाले हैं सबके लिए
1: और
0: डेडिकेटेड।
1: किसी का नहीं,
0: चलिए ठीक
1: और
0: है,
1: आप लोगों को, आपकी लखनऊ की पूरी टीम को
0: हाँ नमस्कार,
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: और अब जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और देखते हैं उनकी फरमाइश क्या है। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी मैम, नमस्कार।
0: हाँ, तो पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए जिसमें कि हम आपसे आराम से बात कर
1: हाँ जी,
0: सकें।
1: गुलरिया
0: हाँ
1: परिछा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बोल रहे, कुलवंत सिंह।
0: कुलवंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: हाँ
1: पिछली
0: कुलवंत
1: बार
0: सिंह
1: मैम
0: जी,
1: हमारा फोन लगा है, आज हमको 1978-80 से रेडियो में सुन रहे हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप इतने सालों से रेडियो के नियमित श्रोता हैं हम लोग
1: अलग
0: को।
1: लोग देखकर हंसते हैं कि ये लोग दुनिया कहाँ के कहाँ पहुंच गई। अब हम तो रेडियो में, हमको रेडियो ने बहुत
0: लीजिए,
1: कुछ दिया है।
0: आज भी रेडियो उतना ही पसंद किया जाता है और उसमें उतनी ही जानकारी हासिल होती है, तो दुनिया कहीं भी पहुंचेगी रेडियो वैसे ही चलता रहेगा।
1: रेडियो तो आप लखनऊ में, तो लखनऊ कहाँ पहुंचे, कहाँ हिमाचल से, त्रिपुरा से,
0: और
1: कहाँ कहाँ
0: अब
1: से
0: तो
1: फोन आते हैं इसमें।
0: बिल्कुल, और अब तो ये रेडियो हो गया है कि आप हाथ में लेके और रेडियो सुन सकते हैं मोबाइल पे आराम से। तो अब तो दुनिया जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे रेडियो का मतलब जो पसंद करना है वो लोगों का और बढ़ रहा है, क्योंकि वो
1: लगभग
0: लोग
1: 1.5 महीना हो गया, 2 महीने मैया सही जी से हमारी बात हुई हो चुकी है एक बार।
0: हाँ। चलिए भाई, अब आपका फोन मिला तो आज
1: ये
0: कौन।
1: सब आज अपने परिवार को सबको दे ये गाना,
0: हाँ
1: आज आज आज के हिसाब से आज का जो बना चल रहा है उस पर बहुत फिट बैठ रहा है ये गाना
0: तो
1: मेरे।
0: चलिए
1: फिल्म
0: बताइए कौन सा गीत है, बताइए।
1: गोपी है, रामचंद्र का, गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा।
0: चलिए भाई, आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं। ये गीत गाया है महेंद्र कपूर ने। ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। और
1: मेरा
0: पहले
1: नाम पूरन वर्मा है
0: पूरन
1: और मैं
0: वर्मा जी।
1: डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: हाँ पूरन वर्मा जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आप हमें फोन भी
1: जी
0: करते
1: मैडम,
0: हैं।
1: कैसे
0: हाँ
1: हो मैडम आप? आपके बात कम आ रही है थोड़ी मेरे पास।
0: बस अब आई।
1: हाँ भाई मैडम।
0: चलिए पूरन वर्मा जी, बताइए आप कैसे हैं? हम ठीक हैं।
1: जी मैडम, मैं भी बढ़िया हूँ। और आपका कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे,
0: चलिए
1: वो
0: बहुत
1: कार्यक्रम भी सुन
0: अच्छी।
1: रहे थे और धूप में मिलना खड़ा रह के कॉल भी मिला रहा था मैडम, कॉल भी
0: ओह
1: मिल गया।
0: कॉल भी मिल गया। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं पूरन जी, बताइए।
1: जी मैडम, मैं आज गीत सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम है अनाड़ी। वो गाने के बोल है, सुने हैं नजारे दिल तुझको पुकार, ये गाना।
0: चलिए तो फिर आपके
1: और
0: पास
1: आप इजाजत देते थे, मैं ज्यादा मित्रों को नहीं, कम दो तीन को याद कर लूं।
0: कर लीजिए, लेकिन हमको लगता है कि मित्रों से कहिए वो भी कोशिश करें, तो एक ना एक दिन फोन जरूर लगेगा, तो उनकी आवाज़ खुद ही पहुंच जाएगी उनके हम तक। चलिए
1: हाँ
0: जल्दी
1: जी
0: से
1: जी
0: नाम ले
1: मैडम,
0: लीजिए।
1: कोशिश तो वो कर रहे हैं, पर अगर लगे ना, तो अगर उसका नाम ना भी लगेगा तो वो नाम तो शामिल हो जाएगा ना
0: चलिए
1: इसमें
0: भाई नाम शामिल कर लीजिए, बताइए।
1: जी। सबसे पहले तो आप है,
0: धन्यवाद।
1: मेरा दोस्त है राकेश का भी लगातार, रमेश प्रजापति जी है, भगवान सिंह परवान जी, अविनाश जी है, टिंकू
0: ये
1: दास
0: सब
1: जी है,
0: जो
1: रघुवीर पंडा, तमाम
0: ये
1: श्रोता
0: हाँ
1: शायद
0: चलिए भाई,
1: सुनने
0: तमाम
1: वाले, अमर
0: श्रोताओं
1: साहू
0: के
1: के
0: लिए।
1: साथ
0: हाँ
1: जितने कॉलर हैं।
0: चलिए ठीक है, नमस्कार।

0: चार्जेस का इन्होंने नाम लिखा है, वो सुनना चाहती हैं। तो चलिए, जो लोग मॉर्निंग में इनकी सुनने की।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, अपना पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका?
2: मैं त्रिपुरा से आशुतोष दबना बोल रहा हूँ मैम जी।
1: आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए आशुतोष जी, कैसे हैं आप?
2: तो मैम जी, फोन जब लग जाता है खुशी से दिल भर जाता है मैम जी।
1: चलिए।

0: बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत प्रसन्न होते हैं।
1: आपकी आवाज बहुत कम आ रहा है मैम जी।
0: कह रहे हैं बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत प्रसन्न होते हैं जब आपका कॉल लग जाता है।
1: बिल्कुल
0: चलिए
1: मैम जी,
0: हम लोग को भी आप लोग से बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप बताइए।
1: मैम जी आज मुझे सुना दीजिए। 1977 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है आनंद आश्रम,
0: हाँ
1: और गाने का बोल है तेरे लिए मैंने सब को छोड़ा। मोहन सिंगर किशोर दा गाया है,
0: हाँ हाँ
1: इंडिवर
0: किशोर
1: जी ने लिखा है और श्यामल मित्र जी ने सुर से साजा इस गाने
0: बिल्कुल
1: को, है ना।
0: भाई क्या बात है, आपको तो सब पता है इस गाने के बारे में।
1: तो मैम जी आपका इजाजत हो तो मैं सिर्फ दो चार दोस्तों को याद करता हूँ।
0: चलिए जल्दी से लीजिए क्योंकि
1: पूरन वर्मा
0: देखिए।
1: जी,
0: हाँ
1: राकेश भैया,
0: चलिए
1: शारदा
0: ये
1: प्रसाद
0: इन
1: जी, प्रणय
0: सबसे हमारी बात हो
1: दास
0: चुकी।
1: जी, भगवान सिंह
0: चलिए
1: परमार,
0: अगर आपको
1: अविनाश
0: गाना अपना
1: सैनी,
0: सुनना है
1: किशोर
0: तो
1: सिंह भैया,
0: सुनिए।
1: रामबाबू शर्मा, मेरे धर्मपत्नी संगीता देवनाथ,
0: हाँ
1: और
0: चलिए
1: नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना है। आप भी सुनेंगे मैम?
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।

और इसी गीत के साथ ही फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें यही समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोता, हम आपको बता दें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से और प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर। सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक IFFCO।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट

0: फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
0: जी जी जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
1: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
2: Hello children.
3: Hello ma'am.
4: Hello ma'am.
2: Hello, hello. How are you all?
3: We are fine ma'am.
4: I am fine ma'am.
5: How are you ma'am?
2: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
3: Yes, ma'am.
4: Yes, ma'am.
2: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
3: Yes,
5: pets are so lovely.
2: Right, Soha.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
2: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
2: Wow, that's good. And what about you, Navya?
7: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
2: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
2: Oh, that's so exciting, isn't it?
3: Yes, ma'am.
2: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
3: Yes, ma'am.
2: Can you name some birds?
4: Sparrow.
2: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell?
5: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
2: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Ma'am, parrot.
2: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
9: Any guesses?
2: Okay, I'll give you a clue. It calls

0: एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
2: मगर क्या?
1: अच्छा अब इधर आओ,
2: ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ। लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा,
2: शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
3: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
3: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
3: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
3: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
3: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
3: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
3: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी, धन्यवाद मालिका का।
3: अरे बेटा
1: चलो बेटा।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती?

0: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
1: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूँ?
0: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
1: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
0: हाँ दीदी,
1: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
0: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ से मैं हूं आपकी अपनी विभा और लेकर आई हूं एक बार फिर वही महकते सुरों का गुलदस्ता यानी सदाबहार नगमे। तो चलिए पहले आज आपको नगमा सुना देते हैं, बाकी की बातचीत करते हैं बस इस नगमे के बाद।

श्रोता, हम आपको बता दें, प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफ्को। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते।
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

वो गीत जो कभी पुराने नहीं होते, वो धुनें जो वक्त के साथ और भी जवां होती जाती हैं, और वो आवाज़ें जो सीधे दिलों के तारों को छू जाती हैं। आज आधे घंटे हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे ही अमर गीत जिन्होंने दशकों से हमारी यादों को रोशन कर रखा है। तो चलिए अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

उसको छील के बकायदा पूरा स्टोर करते हैं, और यूं भी खाने में उसे बहुत मज़ा आता है। लेकिन हम आपको बताते हैं, ये जो खरबूजे के बीज होते हैं उसके जो पल्प है उसको बेकार समझ कर अगर आप फेंक दें

वाह क्या बात है। सचमुच पुराने गीतों की मिठास कुछ और ही होती है। इन गीतों में शब्द शायराना होते थे और संगीत में एक सादगी भरी गहराई। कहा जाता है कि कुछ नगमे उम्र भर गूंजते रहते हैं, वो दिल से निकले तो असर रखते हैं। अब पेश है अगला सदाबहार गीत जो मोहब्बत के एहसास को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से सदाबहार नगमे। उम्मीद है ये सुरों की महफिल आपको भी बीते सुनहरे पलों में ले जा रही होगी। पुराने दौरों के गीत एक खास बात थी, कोई शोर ना कोई जल्दबाजी, बस दिल से निकली आवाज़ और सीधे दिल तक पहुंचने वाला संगीत। अब जिक्र उस गीत का जिसे सुनते ही मन में एक सुकून सा आ जाता है।

ऐसे गीत समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी तो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है, और जब बात हो सदाबहार नगमों की तो हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ सदाबहार नगमों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है पुराने गीतों का ये सुरीला सफ़र आपको पसंद आया होगा।
1: हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पी जी आई एम एस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आज निर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम

0: 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। अमित पुत्र देवपाल, निवासी ग्राम कुतुलपुर, थाना मिर्ज़ापुर, ज़िला शाहजहांपुर से सूचित करते हैं। अनुपम 3 मई 2026 से कहीं लापता हैं। अनुपम का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 21 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फिट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। जिस समय ये घर से निकली थी, इन्होंने हल्के मैरून कलर की साड़ी, क्रीम एवं लाल कलर के बॉर्डर का काला ब्लाउज पहना हुआ था। इनके पैरों में काले रंग की चप्पल थी। अनुपम उस समय एक पीले रंग का बैग भी लिए हुए थी। आदित्य पुत्र कृष्ण मुरारी, ग्राम जारमानो, थाना पुवाया, जनपद शाहजहांपुर से सूचित करते हैं कि कृष्ण मुरारी 16 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। कृष्ण मुरारी का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फिट 6 इंच, चेहरा गोल, रंग गोरा है, इनकी आंखें काली हैं। कृष्ण मुरारी के बाल छोटे, साइड से सुनहरे हैं। जिस समय ये घर से निकले थे, इन्होंने सफ़ेद चेक की शर्ट व कार्गो की लोअर पहना हुआ था। इनके मिलने की कोई भी सूचना अगर प्राप्त हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9005421853। नंबर एक बार फिर से 9005421853। इनके मिलने की सूचना आप इस पते पर भी दे सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTU-UP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: श्रोता, हम आपको बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक IFFCO।

नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:10 होने को हैं। अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।

0: हो गए। मरने वालों में तीन अफराद मगरबी बंगाल के बाशिंदे बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स बरेली का रहने वाला था। हादसे में जख्मी दोनों अफराद को हायर सेंटर में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दरियसना एक दीगर हादसे में आज अलस सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे में एक मुसाफिर जां भाग हो गया, जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में पीछे से उससे टकरा गई। सभी जख्मियों को सैफई पीजीआई में दाखिल करा दिया गया है। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता पंचन का पंचे नीना सोनकर बहनी के नमस्कार, जय हिंद। पंचे, जब लड़का बच्चा घर परिवार में पैदा होता है तो मन ही प्रसन्न तो होता है, हैं? सोहर गाई जाती, सरिया गाई जाती, सोट गावा जाता है और तरह तरह के व्यंजन बनत हैं कि जो उन प्रसूता स्त्री है उनका खियाए के खातिर। लेकिन जैसे जैसे लड़का बच्चा बाढ़े लगत हैं तो उनका जौन मैतारी के दूध के अलावा अतिरिक्त आहार की भी जरूरत पड़े लगत थी, हैं? और वो ई लिए जरूरत पड़त थी कि जैसे ई कहा जाता कि 6 माह तक मैतारी अपन दूध जौन है स्तनपान कोई भी नवजात शिशु का कराए, और अगर वो ऐसा नहीं करत थी तो ई आप जान लेओ कि जैसे स्तनपान पे या मैतारी के दूध पे इतने सारे कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुने हुई हो कि जो उन्हें माँ के दूध होता है शुरू के चाहे हुए 3 दिन के और या फिर 6 माह तक के या फिर जब तक बच्चा मैतारी के स्तनपान करे, तो ई समझाओ कि अमृत की तरह होता है। मैतारी के दूध में कहा जाता है कि इतने अनेकानेक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बच्चे का गंभीर रोगन से बचाते हैं। एक तरह से ई कहा जाए कि जो मैतारी के दूध है वो बच्चे के लिए प्रतिरक्षा यानी एक टीका जो है जो टीकाकरण करके होते हैं ना वो की तरह काम करत है। लेकिन बहुत से अम्रपंच ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि कुछ ऊपर के दूध पिया दिन जाए, कुछ ऐसा खिया दिन जाए। तो एक बात हम आपका बताए दें कि जितने भी आप CSC पे गई हुई हो, PSC पे गई हुई हो या फिर जिला अस्पताल में या फिर जहाँ भी प्रसूता जो प्रसव हुआ हुई तो वो आपका बताइन हुई है, और नर्स हुए चाहे ANM हुए चाहे आशा हुए या वन जौने वर्कर हैं वो आपका मतलब आपके स्तन से आपके शिशु का जरूर लगाइन हुई है और कहीन हुई है कि आप क्या स्तनपान अपन कराओ। अब ये तो होएगा स्तनपान की बात कि जब तक लड़का बच्चा जौनो बिटिया या बिटेवा जौनो पैदा भा है घर परिवार माँ वो जब तक दुग्धपान कर रहा यानी मैतारी का दूध पी रहा तब तक उसका दूध का पियाए का है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा 6 माह के हुई जाते है तो का होता है कि उसकी खुराक बढ़ जाती, अभी दूध से काम ना चली, वो तो पियाई भी करियो लेकिन बच्चे का पूरक आहार दीन जात है। अब पूरक आहार का है आप सोचत हुई हो पता नहीं कौन ऐसा आहार है कि उसका पूरक आहार कहा जाता है। पूरक आहार वो आहार होता है बच्चे मैतारी के दूध तो बच्चे का पियाए का है, हैं? जो पोषण की कमी दूर करत है। अब पोषण की कमी इका ध्यान से सुनो, जब कौनो बच्चा 6 माह के हुई जाते है तब केवल मैतारी के दूध के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इस समय उका मैतारी के दूध के साथ साथ कुछ ठोसो आहार की जरूरत पड़ा थी जिका हम पूरक आहार करत हैं कहा थन। ई पूरक आहार का होता है, ई बच्चे की पोषण की जो जरूरत है उका पूरा करत है और कुपोषण से बचाए के लिए बहुत जरूरी है। पूरक आहार में का है ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होए का चाहिए जो जिनमें ऊर्जा बच्चे का मिले, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिले, आयरन मिले, कैल्शियम मिले, विटामिन

और जिंक जैसे पोषक तत्व भरपूर होगा चाहिए, जैसे दाल है, खिचड़ी है, मसला हुआ आलू या केला है, दूध में भिगोई गई खूब मसली भाई रोटी है, दलिया है। अगर घर परिवार अंडा के सेवन कर रहा, जो कहा जाते मांसाहार में आता है, तो अंडा दे सकती हूँ बहुत महीन महीन मसल के, या फिर पिसी भाई सब्जी। समझ लो जौने कोई सामान आपका खाद्य पदार्थ लड़का बच्चन का देखा है 6 माह के बाद, वो धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह पे और भी मसल के ताज़ा ताज़ा एकदम, जैसे समझो कि लपसी नहीं होती, लपसी बना थी ना, और लपसी कितना उका देर का है और धीरे धीरे खिया का है। लड़का बच्चन के साथ पंचे हम आपका बताए दें कि बहुत धैर्य की जरूरत होती, बड़े धीरज की जरूरत होती, वो नखरात हैं, तो आप उनका प्यार से लोरी सुनात भय सुआओ भी और गाना वाना गाय के खियाओ भी, है ना। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाए वाले रेडी टू ईट मिश्रण या बच्चन के विशेष आहार भी इम्मा सहायक होते हैं। जौन जाती हैं, जौन मेहरिया लोग आंगनबाड़ी केंद्र जाती हैं, वन भी रेडी टू ईट दिन जाते हैं, लेकिन ये जौन बतावा जाए रहा कि सब ताज़ा ताज़ा बनाए के, कुछ ऐसी हमारी बहनी लोग हैं वो कहती हैं कि हमका दाल के पानी हम उका दे जिम्मा उके हाजमा ना खराब हो जाए। हाजमा ऐसा नहीं खराब होता है, अब दाल वाल है ऐसी तो होए कि उका घोटा तो वो दाल लगाए, ऐसा ना लगाए कि पानी पनियल, अरे पानी देहो तो उससे अच्छा तो सादा पानी होता है, हाँ तो दाल देखा है उका घोट के देखा है, ठंडा करके फूक फूक के बच्चा का खिलाए का है और धैर्य रखे का है, धीरज के साथ उका खिलाए का है, उससे का हुई कि धीरे धीरे उसकी पाचन क्रिया जो है मतलब मतलब एक्टिव हो जाए, मतलब वो जागृत हो जाए और धीमे धीमे उके पचाए की क्षमता धीमे धीमे बढ़ी। अब जैसे उके पेट बढ़ गा भर गा है तो धीमे से उका अपन कंधे से लगाए के एक तरफ से एक हाथ से पकड़ो सर और दूसरे हाथ से उका थपकी दे दे कि उका डकार भी दिया सकती हो। अब मैतारी का चाहिए कि धीरे धीरे भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाए का है। अब विविधता कैसे बढ़ी, विविधता ऐसे बढ़ी कि बच्चे का दिन में 3 से 5 बार मतलब खियाओ थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि बहुत बहुत मार एकदम, कि जैसे कि कोई वयस्क होता है उसका जायका कहीं होता है तो जल्दी जल्दी बहुत बहुत खाना खाए लेता है। शुरू में थोड़ा थोड़ा देखो कि स्वाद और पाचन बढ़ाओ, साफ सफाई की विशेष ध्यान रखो ताकि बच्चा संक्रमण से बच सके। अगर पूरक आहार समय से वो संतुलित रूप में दीन जाए तो बच्चा न केवल कुपोषण से बची बल्कि उसके शारीरिक और मानसिक विकास भी सुचारू रूप से सही हुए। कैसे मतलब ये कहा जाता है कि अगर आप शुरू में ध्यान रखे हो बच्चा के, यानी कि शुरू के जौन दुग्धपान है या स्तनपान आप कह सकती हो कि बच्चा लड़का पैदा भा कोई केवन और तुरंत उका स्तनपान कराए का है, कहा जाता है 3 दिन के जौन कोलेस्ट्रम कहा जाता है वो दूध का। पहले के बहुत जमाने में बहुत कोई पुरखी उर्की हुए आपके गांव माँ या घर परिवार माँ 80, 85, 90, 95 साल की बरस की, तो आपको बताइए कि देखो पहले जोन है ये सब फेंक दिन जात रहा और कहा जात रहा ई ना पियाओ, ओके बाद जो साफ दूध आई ऊ पियाए का है। लेकिन देखो विज्ञान इतनी तरक्की कर ली से कि आपका हर बात की जानकारी चाहे ANM बहनी हुए, आशा बहनी हुए, अस्पताल में डॉक्टर बहनी हुए, आया हुए और जो उन नर्स हुए, सबके माध्यम से आपका पूरी तरह से मिल रही। तो ये हुई गई पूरक आहार की कहानी कि कैसे होते है पूरक आहार। और देखो घर परिवार कहा जाता है, अभी पे भी देखो चर्चा हुई रही कि संयुक्त परिवार सही है कि एकाकी परिवार। एकाकी परिवार का है बच्ची ये देखो कि मन ही जात है कहूँ बाहर बदली हुई जाती, अगर नौकरी करत है या फिर कहूँ प्राइवेट काम करत है या कुछ भी करत है, जब अपन घर घाट छोड़ के जाते हैं, गांव छोड़ के जाते हैं, तो अपन मेहरिया ले जाते हैं, लड़का बच्चा ले जाते हैं और थोड़े कोई का ले जाते हैं। अब जैसे गांव के कौनों ऐसे मैं नहीं होते हैं तो कहते हम ना जाब अपन जमीन अपन धरती छोड़ के हम ना जाब, हमारे जीना मरना यहीं है, तो वो अकेले रहते हैं मन, हर चीज़ अकेले करे का पड़ा थी। अब घर परिवार जब संयुक्त होते हैं ना, कुछ ऐसी भी देखो फिर वही 85 और 95 साल की कौनों मतलब बुजुर्ग कौन जो ने आजी होए पर आजी होए उनसे पूछो कि कैसे संयुक्त परिवार में सब एक दूसरे के लड़का बच्चा पल जाते रहें और कौन की का खियाए के सुहाए दीस नहवाए दीस कौनों को पता ही नहीं चलत रहा। तो ई संयुक्त परिवार की कहानी है और संयुक्त परिवार में सास बहुरिया की जोड़ी तो ऐसी है कि जोड़ी का कहा जाता है अल्टीमेट जोड़ी। और पंछी अल्टीमेट जोड़ी तो होती लेकिन का है, प्यार भी बहुत होता है, झगड़ा होता है, तो जहां चार

बर्तन होते 10-15 बर्तन तो वन झगड़ा तो होता है, लेकिन फिर आवाज भी अच्छी आती। आवाज आती मोहब्बत की,

0: कि हम अकेले रह के कितना अच्छा लग रहा, कितना नीक लग रहा, लेकिन धीरे धीरे समय देखो कैसे परिवर्तनशील होता है कि फिर वहीं आए गई सब बातें कि हम कल लोहा की कढ़ाइया में खाए का चाहिए, मतलब कि सब्जी उब्जी बनाए का चाहिए, उम्मा लौह तत्व मिलत हैं हमका, जौन पुरानी परंपरा है भोजन बनाए की खाए की वो अपनाए का चाहिए। मतलब धीमे धीमे देखो समय बदलत है, तो मन ही के अकल वकल भी आती थी कि हम इतने आगे कैसे निकल गए कि जब लोहा का और स्टेनलेस स्टील का लोग आज कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि यही अच्छा है, ये प्लास्टिक व्लास्टिक सब ये सब मेलमोवेयर वेयर चना तना के जो उन्हें ब्रांड व्रांड आए गए हैं, आप देखे हो ये बाजार तो ऐसा है कि भरा पड़ा है। आपो कबो को भरमाए जाते हो कि इतनी अच्छी चित्रकारी है, इतना नीक नीक लागत है, यही लेके चलो कौनों का भोजन परोस के देव तो कितना अच्छा लगी। लेकिन नहीं पंचे, देखो पुरानी परंपरा का रही, कसकुट की थरिया चलत रही, पीतर की थरिया को रगड़ रगड़ मांजा जात रहा है, और यही सब चलत रही और मनई स्वस्थ रहत रहा। अब आज का है, आज सब चीज़ें फिर वही पीछे की पीछे मनई कैसे का खात रहा। अब सबके बुजुर्गों की भी अहमियत हुई गई कि का खाए, बड़े अब्बा फलाने ढिमकाने जौन हैं बहुत बुजुर्ग महिलाएँ हो या पुरुष, उनसे पूछा जा रहा कि खाए कि इतने स्वस्थ कैसे हो। तो आज पंचे उनकी भी अहमियत है कि वो बताते हैं कि देखो हम तो सब शुद्ध खावा है और सब जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहा जा रहा वही सब खावा है, हम लोग गोबर की खाद के सब फसल वसल उगी है वही सब खाए पी के बिल्कुल 90 साल में भी कान से सुनाई दे रहा, आँखें से दिखाई दे रहा और दांत बिल्कुल ओरिजिनल है, यानी कि बिल्कुल सही वाले पक्के वाले, ये कुछ नहीं ना डुप्लीकेट। तो ये सब बातें बताती हैं कि हमका अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का, अपनी परिपाटी पे लौटे का है अगर स्वस्थ रहे का है। ये सास बहू के झगड़ा मोहब्बत के झगड़ा रहा, संजोली पांडे बहनी खूब अनेक गाइन और बड़ी दिन तक लोगन की फरमाइश भी रही कि इन्हों का सुनाओ, लेकिन कुछ ऐसी भी बात होती हैं जो सरकारी योजना होती। अब आप सोचत हुई हो कि आज कौन सी योजना का जिक्र हो जा रहा, तो आज हम बताइए जच्चा बच्चा योजना के बारे में और इसके बारे में बताइए नीमा पंत बहनी, तो ध्यानपूर्वक सुनो। आज आकाशवाणी के वीआईपी स्टूडियो में मैं हूं नीना सोनकर आपके साथ, और आज हमारे साथ हैं नीमा पंत जी जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं एसजीपीजीआई लखनऊ में हृदय रोग विभाग में, और आज जिस बारे में हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है जच्चा बच्चा योजना। वैसे तो श्रोताओं आप बहुत सारी बातें वैसे जानते ही हैं कि सरकार ने मातृ शिशु कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और उसी में से एक है जच्चा बच्चा योजना। तो ये योजना क्या है, इसमें किस तरह से लाभार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या करना होगा, ये सभी बातें आज हम नीमा पंत जी से जानेंगे। नीमा जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार नीना जी, सभी श्रोतागण को नीमा पंत का नमस्कार
0: जी। ये बताइए कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं आरंभ की हैं, तो आज जिस योजना के बारे में हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है जच्चा बच्चा योजना। ये योजना क्या है?
1: जैसे कि नाम से पता चलता है जच्चा मतलब माँ, बच्चा मतलब कि जो माँ डिलीवर करेगी वो बच्चा। तो इसमें अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी कराना, प्रसव को आप देखते हैं कि अगर सही हाथों में नहीं होता है तो काफी परेशानियां आ जाएंगी, तो मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना इस योजना का बिल्कुल मुख्य उपदेश है। आज भी काफी लोग गाँव में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है, जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल की बातें करते हैं। तो यूजुअली जब गांव में हम देखते हैं कि हमारे पास आशा वर्कर्स होती हैं या दाइयां प्रसव करती हैं, पर वो प्रसव भी सुरक्षित हो, अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड आता है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हम उसको CHC में रिफर कर सकते हैं। CHC के बाद अगर वहाँ पर भी नहीं सॉल्व होता है, हो सकता है कि माता को C-सेक्शन या सीजर की जरूरत पड़े, तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सुरक्षित डिलीवरी कराना जिससे मृत्यु दर कम हो जाए और माँ सुरक्षित रहे, और आशा कार्यकर्ता का भी इसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है
0: जी। नीमा जी आपने बताया कि जच्चा बच्चा योजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब ये बताइए कि जब हमने कार्यक्रम का आरंभ किया तो लाभार्थी शब्द का इस्तेमाल किया, तो इस योजना में कौन कौन सी महिलाएं लाभार्थी होंगी, किस तरह से आप बताएंगी?
1: गांव में आशा वर्कर्स काम करती हैं, आंगनवाड़ी का भी नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी काम करती हैं। तो पहले उस क्षेत्र में वो ये

तो देखो वही सोते सास बहू के झगड़ा की झगड़ा होत है, अलग होई की मनई मतलब इच्छा भी कर रखा था, लेकिन ये प्रेम मोहब्बत से घर की गाड़ी चलत थी तब सब अच्छा रहा है। और देखो पहले तो मेरे लोग सोचत रहे

0: पता करती हैं कि कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसा घर है जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आज भी लोग नहीं जानते हैं कि कोई बीपीएल कार्ड भी होता है या किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं। तो वहां पर उन माताओं की खोज करके, उन परिवारों की खोज करके वो उनको बताती हैं कि, बल्कि उनका बताती ही नहीं है, उनका वो कार्ड भी बनाती है, अपने संग उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी लेके जाती हैं। और अगर किसी का बीपीएल कार्ड बना होता है या फिर वो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं, तो उनको ये बताती हैं कि अगर अस्पताल में आप प्रसव कराएंगी तो आपको 1400 रुपये दिए जाएंगे।
1: जी
0: अच्छा, इसमें से जो इंटेंसिव होता थोड़ा, वो आशा कार्यकर्ताओं का भी होता है। फिर उसके बाद 9 महीने तक पूरा इनका चेकअप होता है, और बच्चा जो अगर डिलीवर हो जाता है उसके बाद बच्चों का टीकाकरण भी इसमें है। और कहीं कहीं पर तो जो मानदेय है, जो आर्थिक सहायता होती है, ये 5000 रुपये तक होती है। और इसको लेकिन पूरा एक साथ तो नहीं दिया जाता, 3 किश्तों में परिवार को दिया जाता है।
1: नीमा जी, आपने लाभार्थी की बात की कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब ये बताइए, क्या कुछ मानदेय भी दिया जाता है ऐसी महिलाओं को जिनका रजिस्ट्रेशन होता है?
0: जी हाँ, इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, पोषण भी बहुत बड़ी चीज़ है,
1: जी
0: तो इसमें वो अच्छी तरह से खाएं पिए जिससे कि उनका बच्चा भी हेल्दी हो। तो इसके लिए उनको मैंने बताया था कि आशा जो वर्कर्स होती हैं, कहीं कहीं पर 1400 रुपये मिलता है जो उनके पोषण के लिए होता है। अगर पता चलता है कि पूरे इस 9 महीने में उनके टीकाकरण का, उनको बार बार डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, और क्योंकि इसमें जो प्रेग्नेंट महिला है उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर को भी एक बार कम से कम जरूर विजिट कराया जाता है, जिसमें कि फ्री एंटीनेटल चेकअप होता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इसकी पहचान मुख्य होती है। 5000 रुपये इसलिए दिया जाता है कि इकट्ठा देंगे तो हो सकता है कि वो उनको खर्च कर दे, या 9 महीने का लंबा समय है तो 5000 रुपये पूरे ना देकर 3 बार किश्तों में इनको दिया जाता है कि 3-3 महीनों में जो भी पैसा मिलता है तो उससे अपने पोषण का वो ध्यान रख पाए।
1: जी आपने मानदेय की बात की कि महिला को जो गर्भवती स्त्री है जिसकी डिलीवरी हो जाती है यानी प्रसव हो जाता है, तो उसके बाद उसे इतना पैसा दिया जाता है कि जिससे वो पौष्टिक आहार अपने भोजन में शामिल कर सके। क्योंकि जो भी ऐसी महिला जो किसी भी शिशु को जन्म दे लेती है, उसके बाद फिर स्तनपान कराना भी बहुत जरूरी होता है। और यही कहा जाता है कि जो माँ खाती है उसका सीधा असर शिशु पर पड़ता है, क्योंकि जब शिशु स्तनपान करता है तो वही पौष्टिक तत्व दूध के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से श्रोताओं को समझाया। अब ये बताइए, सुविधाएं किस तरह की सरकार द्वारा दी जा रही हैं?
0: सरकार तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस तरह की काफी, इंद्रधनुष भी एक नाम है जिसमें बच्चों का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट किया जाता है। जब से बच्चा माँ के पेट के अंदर आता है, जिसको हम एंटीनेटल बोलते हैं, वहां से सुविधाएं शुरू हो जाती हैं।
1: जी
0: उसके बाद लगातार हर महीने आशा जो होती हैं दीदी लोग, वो माँ की पहचान करती हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाती हैं। ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा एक बार उस महिला का जो गर्भवती है उसका पूरा चेकअप हो जाए। और एंटीनेटल चेकअप होने पर अगर पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी हाई है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ये गाँव में, क्योंकि हो सकता है कि संभव ना हो,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वहाँ पर गाँव से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाने के लिए जो फ्री एम्बुलेंस होती हैं, फ्री सी सेक्शन भी अगर महिला का करना पड़ता है, यही 9 महीने में जो भी दवाइयां चलती है, टिटनेस के टीके हैं, पोषण में भी जैसे बताया कि मानदेय होता है, तो सरकार इन महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए लगातार टीके, खान पान और पूरी केयर आशा कार्यकर्ताओं की मदद से कर रही है। पर हाँ, इनकी जानकारी सबको नहीं होती है, तो इसके लिए उनको ट्रेंड भी किया जाता है, जगह जगह जाके पता किया जाता है कि कौन सी महिलाएं जिनको इन चीजों का लाभ मिल सकता है।
1: जी नीमा जी, आपके कहने का ये मतलब है कि सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और ऐसी ही एक योजना का आज आपने जिक्र किया कि जच्चा बच्चा योजना, एक ऐसी योजना जिसमें गर्भवती स्त्री को आशा या ANM के द्वारा अस्पताल ले जाया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसको फिर सारे वो लाभ प्राप्त होते हैं जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो सरकार इन महिलाओं को देना चाहती है जो गरीब हैं, कुपोषित हैं, कि इनकी डिलीवरी सही से हो, प्रसव जब सही से होगा तो उसके बारे में ANM और आशा उन्हें समझाती भी हैं। इनके लिए वैन भी लगी हुई है, इनको घर से वैन ले

0: कर अस्पताल जाती है और अस्पताल से घर वापस लाती भी है। कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप सुरक्षित प्रसव चाहते हैं तो आपको अस्पताल जाना ही होगा। सरकार प्रयासरत है इसलिए, क्योंकि जो मातृ शिशु मृत्यु दर है उसे कम करना चाहती है, और ये तभी कम होगा जब आप ऐसी योजनाओं का लाभ उठाएंगी। नीमा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी जच्चा बच्चा योजना के बारे में श्रोताओं को दी। आप आकाशवाणी आई, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो पंचे ये रही डॉक्टर नीमा जी, जो एक बड़ी नर्सिंग अफसर हैं और हृदय रोग विभाग में जो SGPGI के हैं और बहुत सारी ऐसी परोपकार के लिए संस्थान से जुड़ी भई हैं कि लोगन का हर रोग के बारे में सचेत करती हैं। और यही बात होती रोग के बारे में कि जब कौनो रोग शरीर में पनप रहा, कौनो आपका आइस लगे कि कुछ परिवर्तन हो रहा, तो सबसे पहले डॉक्टर का दिखाए का होता है। ये नहीं कि आप उका सोचा हो कि अरे ऐसा ही हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि धोखा हो जाता है, ऐसे जो उन है बहुत कुछ हो जाता है। देखो ये गौना ही सुनो, फिर और बात करब।

तो पंचे ये रहा अलग ना जाए नजरिया हमको, ऐसा गौनाई सुने हो अब तुमका कैस लगी, आप पंचे का नीक लगी कि नहीं तो बताए हो हमका। लेकिन देखाओ आपकी जौन आवा है, आपके संदेश आपके मेल जौन आवा है, उका हम जरूर पढ़ब। सबसे पहले ये हैं दुर्गेश नागनपुरे जी, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से लिखिन है। इनके साथ और भी मनाई हैं, ई PKLD में यानी जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम होते हैं उम्मा भी मेल कराते हैं, भर भर के लिखते हैं। भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, वंदना, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से लेकिन है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम बहुत नीक लागत है, नियमित श्रोता हन। 13 मई का कार्यक्रम बहुत नीक लगा, कार्यक्रम में गर्मियों में होने वाले विभिन्न रोगन पर जौन डॉक्टर संदीप सक्सेना जी जानकारी दी बहुत नीक लगी। 13 मई का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई का विश्व ऑर्थोडोंटिक स्वास्थ्य दिवस पर जौन जानकारी आप दिए बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद आपका। विजयपाल यादव जी हैं किसान रेडियो क्लब के ग्राम व पोस्ट ललुआ, जिला लखीमपुर खीरी के। इनके साथ शुभम यादव, ऋचा गुड़िया, शिखा, बबलू यादव, विजय पांडे जी, ये सब मनाई हैं। लेकिन है बहुत नीक लगा था कार्यक्रम 13 मई के कार्यक्रम की यही बात लिखी है कि संदीप सक्सेना जी डॉक्टर साहब आए रहे जौन स्टूडियो में, उनकी रिकॉर्डिंग जौन ने प्रसारित किया रहा, गर्मियों में होए वाले आंखिन के विभिन्न रोग, ये बहुत नीक लगी। उनके साथ साथ लिखी है कि कार्यक्रम प्रस्तुत करे के तरीका बहुत नीक लागत है। इंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, 13 को गर्मियों में होने वाले आंखों के विभिन्न रोग के बारे में जानकारी यहू लिखी है कि अच्छी लगी, लाभदायक लगी, गीत बेहद पसंद आया। ग्राम अमृता सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी। इनके अलावा भी कुछ पंच हैं। अब ई चांद फरीदी जी हैं, ये हमका कोई पोस्टर भेजी हैं सब स्वास्थ्य दिवस के, और दुर्गेश नागनपुरे जी हाथों जोड़े हैं। सत्येंद्र चंसौलिया पजौनिया ये लिखिन हैं जालौन से, जिला जालौन से। सुरभि सिंह हैं बहु लिखिन हैं, सचिन सोनकर हैं बहु लिखिन हैं, सब का नीक लागत है, रोचक लागत है कार्यक्रम। राजीव श्रीवास्तव जी हैं बहु लिखिन हैं कि कार्यक्रम अच्छा लागत है, नियमित श्रोता हैं। मतलब कहे कि ई है कि ई आइस कार्यक्रम है जो सबका नीक लागत है, हमाऊ का नीक लागत है। जब आप मेल भेजत हो, पाती भेजत हो, तो लगत है कि हमरे कार्यक्रम करना फलदायी भा। और नहीं तो अगर आप लोग भेजिए ना तो कैसे पता चली कि आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आंगनबाड़ी आपका कैस लग रहा। और देखो यही बात पे सुनो ये गौनाई।

दुबरायगन राजा तोरे घर। ऐसा ही होत है जब कौनो शादी ब्याह होता है और जब विदा विदा होके जात है, जब पहला फेरा होता है यानी कि पग फेरा जब होता है, कौन बिटेवा जब आवत ही ना अपन नैहर, तो लोग कहा था आय मार झाउस गई गर्मी माँ दुबराए गई। तो ये सब होता है, तो कहा जाता है कि भाई जौन दामाद है घर के वो ध्यान रखा है। तो ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक जौन है घर परिवार में बहुत एक अच्छा वातावरण बना थी, लेकिन नोक झोंक कितना अच्छी लगती, लड़ाई झगड़ा की तना नहीं। और प्रेम मोहब्बत से रहो, प्रेम बरसाओ गर्मी के मौसम में। एक से एक स्वास्थ्य चर्चा में आप लोग विषय सुन रहे हो। अपन ध्यान रखो, लू से बचाओ, बाहर निकले से पहले पानी वानी अच्छे से पी पाए के ताज़ा भोजन लेके तब निकलो, खोपड़िया का ढक के कौनों गोछा गोछा से सब चीज़ ये सब तैयारी आपकी पूरी होई हमका मालूम है। और ORS के जौन घोल है वो जरूर घर में रखे हो, ऊका कहा जाते प्राथमिक चिकित्सक। तो अब कार्यक्रम के समय समाप्त हुएगा है, पता नोट कर ले। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 2206001। देव नीना सुनकर बहनी का अनुमति, सभी का नमस्कार, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है फौजी साथियों का कार्यक्रम जवानों के लिए।

जवानों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम है हमारा मेल और पत्रों पर आधारित, तो हम आपको मेल आईडी बता दें जिसमें नए श्रोता भी हमें मेल करके अपने पसंद के गीतों को सुन सके। हमारा मेल आईडी है कार्यक्रम जवानों के लिए @gmail.com। तो देखिए, ये मेल आया है हमारे पास। इन्होंने कहा है, आदरणीय प्रसारक जी सप्रेम नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल करें। यह है पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बलहार शाह से सूरज लोंडे, प्राची लोंडे, एकलव्य लोडे का। तो आप सभी को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

और देखिए ये मेल आया है हमारे पास किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से। सभी आकाशवाणी लखनऊ को सुनने वालों को इन्होंने प्यार भरा नमस्कार बोला है और लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुनना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये हैं राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव, राम प्रसाद। आप सब सुनना चाहते हैं पत्थर के सनम का गीत। इन्होंने बोल भी लिखे हैं महबूब मेरे महबूब। तो चलिए मुकेश और लता मंगेशकर के आवाज़ में आपको सुनवाते हैं पत्थर के सनम फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

और देखिए ये मेल आया है हमारे पास सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टू बजाज का। और आप सब सुनना चाहते हैं ये दिल आशिकाना फिल्म का गीत, तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR

0: ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में

0: मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप

0: कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब सुनिए विज्ञान और किसान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव से की गई भेंटवार्ता। विषय है सतावर की उन्नत खेती। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, औषधीय फसलों में जहां सतावर उत्पादन आप करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी सीमैप लखनऊ से स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव जी। स्वागत है कार्यक्रम में। स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि

0: अपने प्रदेश में औषधि फसलों में सतावर की खेती की क्या कुछ संभावना है?
1: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। उत्तर प्रदेश की गर्म व आर्द्र जलवायु और मिट्टी सतावर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जैसा कि प्रदेश में बलुई दोमट और भुरभुरी मिट्टी की उपलब्धता इसकी खेती हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, और साथ ही साथ इस फसल में कीटों का भी बहुत कम प्रकोप और जानवरों द्वारा न खाए जाने के कारण भी इसका रखरखाव आसान हो जाता है, जिससे किसान परेशान नहीं होता इसकी खेती में।
0: तो इसके उपयोग और इसकी डिमांड के चलते इसकी खेती की अपार संभावनाएं हैं
1: जी।
0: तो कौन कौन से उपयोग में ये सतावर का उपयोग होता है?
1: सतावर की मुख्यतः उपयोग जो है इसकी सूखी जड़े में किया जाता है। सूखी जड़े जो है वो बलवर्धक, दुग्धवर्धक, मूत्रवर्धक, अतिसार रोधक, पौष्टिक एवं जननेन्द्रिय संबंधी दुर्बलता के औषधि निर्माण में इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है।
0: तो इसके लिए खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
1: इसकी खेती के लिए पूरे भारत की अगर बात की जाए तो मध्य भारत और गंगा के मैदानी भागों की गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए देखा जाए तो बलुई दोमट और भुरभुरी भूमि सर्वथा उपयुक्त होती है, जिसमें कि उचित जल निकास आवश्यक होना चाहिए।
0: तो उन्नत प्रजातियां, चूंकि आप सीमा लखनऊ से हैं, तो क्या केंद्रीय औषधि और सघन पौधा संस्थान लखनऊ ने कोई उन्नत प्रजाति विकसित की है जिसकी खेती किसान भाई बहन कर सकते हैं?
1: जी डॉक्टर साहब, हाल ही में केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान लखनऊ द्वारा सिम शक्ति नाम से एक बहुत ही उन्नत प्रजाति का विकास किया गया है। सिम शक्ति जो सतावर की उन्नत खेती के लिए बहुत अच्छी प्रजाति मानी जा रही है।
0: तो इसकी नर्सरी डाली जाती है या सीधी बुआई भी कर सकते हैं किसान भाई बहन?
1: जी, इसकी सीधी बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अंकुरण की दर बहुत कम होती है, और वास्तव में देखा जाए तो सीधी बुआई तब करते हैं जब बीज की अनुपलब्धता हो। अच्छी तरीके से बुआई हेतु इसकी नर्सरी ही डालना सर्वथा उपयुक्त होता है।
0: लेकिन जिस खेत में रोपाई करनी है सतावर की, उसकी तैयारी भी महत्वपूर्ण है?
1: जी जी अवश्य, उसके तैयारी बहुत जरूरी है, चूंकि सतावर की जड़ें भूमि में गहरी जाती हैं, और भूमि में गहरी जाने के कारण इसकी गहरी जुताई करना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान देना चाहिए हमें कि अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद,
0: यानी 80 से लेकर के 100 कुंटल तक।
1: जी जी जी जरूर, 80 से 100 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में अच्छी प्रकार मिला दें, और जैसा कि मैंने बताया कि ढाल का प्रबंधन इस प्रकार करें जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो,
0: यानी जल निकास का मुकम्मल प्रबंध हो और जमीन समतल हो तो अच्छा रहेगा।
1: जी जी जी, ये बहुत जरूरी है कि जल भराव न हो, वहाँ पे जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
0: जहाँ नर्सरी डालनी है तो नर्सरी के प्रबंधन में कौन कौन सी खास बातें हैं?
1: नर्सरी के प्रबंधन के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि नर्सरी डालने से पहले हमें बीज को थायराम 0.25% से शोधित करके ही नर्सरी हेतु उपयोग में लाया जाना
0: चाहिए। यानी 2.5 ग्राम थीरम
1: जी
0: प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन कर लें
1: जी,
0: और जरूरत हो तो भूमि शोधन भी कर लें ट्राइकोडर्मा से।
1: जी हाँ सर बिल्कुल, जरूरत हो तो हमें भूमि शोधन भी कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ सर, नर्सरी डालने हेतु लगभग 1 एकड़ की पौध प्राप्त करने हेतु हमें 100 से 150 वर्ग फीट स्थान की जरूरत होती है नर्सरी के लिए।
0: और बीज की मात्रा?
1: बीज की मात्रा की बात करें तो 1.5 से 2.25 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा इसमें आवश्यक होती है।
0: यानी जो नर्सरी पड़ेगी 1.5 से 2.25 किलो 1 एकड़ रोपाई के लिए।
1: जी हाँ।
0: और नर्सरी डालते समय कौन कौन सी खास सावधानियां?
1: नर्सरी डालते समय हमें ये सावधानी देखनी चाहिए कि सीधी धूप में हमारी नर्सरी न रहे, नर्सरी हमेशा छायेदार स्थान पर ही डालें, और वो छाया कोशिश करें कि पेड़ की छाया हो,
0: यानी बगीचे के आसपास नर्सरी डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी अवश्य, ये बहुत जरूरी है कि 50% लगभग छाया वहाँ होनी ही चाहिए।
0: और कितने दिन की नर्सरी की रोपाई करेंगे?
1: नर्सरी की रोपाई की बात करें तो लगभग 3 माह की जब नर्सरी हो जाती है तब इसकी रोपाई हम करते हैं।
0: और नर्सरी डालने का उपयुक्त समय?
1: यह समय जो वर्तमान समय चल रहा है,
0: यानी ये महीना मई का।
1: जी, मई माह इसकी नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है नर्सरी डालने के लिए।
0: और कितने दिन में पौध तैयार हो जाएगी?
1: 80 से 90 दिन, लगभग 3 माह में इसकी पौध तैयार हो जाती है, और जुलाई अगस्त में पौधों की रोपाई हम कर देते हैं।
0: जिस खेत

0: में रोपाई करनी है तो रोपाई का अंतरण क्या होगा?
1: रोपाई का अंतरण इनमें 60x60 सेंटीमीटर की आपस में दूरी रखते हैं,
0: यानी 2-2 फीट।
1: जी हाँ, और इस प्रकार से अगर देखें तो 1 एकड़ में लगभग 11,336 पौधों की जरूरत होती है हमें।
0: और वो नर्सरी जब अच्छी रहेगी तब इतने पौधों की रोपाई हो जाएगी?
1: जी जी जरूर।
0: फसल की भूख मिटाने के लिए सतावर में प्रति एकड़ खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी प्रयोग होगी, कब प्रयोग होगी और कैसे होगी?
1: जैसा कि हमने बताया डॉक्टर साहब कि भूमि की तैयारी करते समय ही हम 8-10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि तैयारी के दौरान ही डाल देते हैं। उसके बाद हम फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की क्रमशः 34 किलोग्राम नाइट्रोजन, 34 किलोग्राम फास्फोरस और 42 किलोग्राम पोटाश को खड़ी फसल में डालते हैं,
0: यानी बेसल डोज में।
1: जी हाँ सर,
0: यानी जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तभी बेसल डोज में इसका प्रयोग कर दें।
1: खेत की तैयारी करते समय सिर्फ हम 8-10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालेंगे।
0: अच्छा,
1: खड़ी फसल में हम यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश क्रमशः 34, 34 और 42 किलोग्राम के अनुपात में प्रयोग करेंगे।
0: खड़ी फसल में बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं तो उनका प्रबंधन कैसे होगा सतावर में?
1: खरपतवार नियंत्रण की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, इसके लिए रोपाई के बाद प्रत्येक माह कम से कम 3-4 निराई गुड़ाई अति आवश्यक है। चूंकि हम ताजा ताजा रोपाई करते हैं इसलिए वहां पे खरपतवार उगने की संभावना अधिक रहती है। इसके लिए हम 600 ग्राम सीमाजीन या एट्राजीन का छिड़काव फसल की बुआई के तुरंत बाद लेकिन खरपतवार के अंकुरण से पहले करते हैं,
0: यानी 48-72 घंटे के अंदर।
1: जी हाँ, इससे भूमि पर एक पतली परत जम जाती है जो खरपतवार को उगने से रोकती है।
0: उपज की बात करें कि अगर 1 एकड़ किसान भाई बहन सतावर की खेती करते हैं व्यवसायिक, तो कितनी लागत आएगी, कितना उत्पादन मिलेगा और आमदनी कितनी होगी?
1: उपज की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ सतावर के खेत से लगभग 80 कुंटल से लेकर 125 कुंटल सूखी जड़ प्राप्त हो जाती है। इसमें 1 एकड़ खेती में व्यय लगभग 91,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति 2 वर्ष में आता है।
0: अच्छा, ये फसल कितने दिन में तैयार
1: हो? ये फसल 2 वर्ष की है और 2 वर्ष में ही हम अच्छी उपज इसे प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो एक बार लगाने के बाद 2 साल बाद ही
1: जी हाँ
0: आपको उपज मिलेगी?
1: जी हाँ, एक बार लगाने के बाद इसकी जो कंद होती है 18-20 माह में परिपक्व होती है, लेकिन अच्छी उपज हमें 2 वर्ष बाद की फसल की खुदाई पर ही मिलती है।
0: स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सतावर की उन्नत खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या सीमैप लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी, किसान भाई बहन हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, 95-80-81-0-365, 9580810365, 95-80-81-0-365।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का सतावर की उन्नत खेती के बारे में?
1: किसान भाई बहन कुछ इस पे ध्यान दें कि कुछ जगहों पर सतावर की खेती जरूर करें, जैसे कि वर्षा आधारित और शुष्क भूमि क्षेत्रों में सतावर की खेती कर सकते हैं, ढलान और कटाव की संभावनाओं वाली भूमि में सतावर की खेती कर सकते हैं, जिस भूमि में आंशिक छाया है वहाँ भी सतावर की खेती की जा सकती है, और जहाँ पशुओं द्वारा बहुत चराई होती है या चोरी की संभावना वाले क्षेत्र हैं चूँकि यह कटीला पौधा है तो वहाँ भी इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है।
0: स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव, आज आप कार्यक्रम में आए और सतावर की उन्नत खेती कैसे करें किसान भाई बहन इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना सतावर की उन्नत खेती, स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव से आपसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
3: आज तो पार्टी चाहिए,
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
3: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जान

0: लगातार बनिए सतर्क रहिए।
1: और इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये सूचना राजन सिंह पुत्र दृगपाल सिंह निवासी नवादा डा बंडा शाहजहांपुर से सूचित करते हैं। लाल सिंह के पुत्र दृगपाल सिंह 9 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। दृगपाल सिंह का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 37 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, रंगे हुआ, चेहरा गोल, इनकी आंखें काली हैं और बाल काले हैं। जिस समय ये घर से निकले थे, इन्होंने सफ़ेद शर्ट और काली पैंट और पैरों में जूता पहना हुआ था। श्री शिव कुमार पुत्र इरमल निवासी ग्राम धरिया थाना मिर्ज़ापुर ज़िला शाहजहांपुर से सूचित करते हैं कि प्रियांशी 7 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। प्रियांशी का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 19 वर्ष, लंबाई लगभग 4 फीट, चेहरा गोल, रंग सांवला। जिस समय ये घर से निकली थी, इन्होंने हरे रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। इनकी आंख के पास चोट का निशान है। इनके मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9005912987। नंबर एक बार फिर से 9005912987। इनके मिलने की सूचना आप इस पते पर भी दे सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। इस कार्यक्रम में आज सुनिए मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश के गाए अवधि युगल लोक गीत। सबसे पहले मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश के स्वर में सुनते हैं ये सोहर।

जी हमरा घर घबरावे गुइयां हमरे घर काज है। अभी आपने सुना मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश के युगल स्वर में ये अवधि लोकगीत। और आइए अब मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश के ही युगल स्वर में सुनते हैं ये नकटा, बलम लखनऊआ मिले।

बलम लखनऊआ मिले मेरी गुइयाँ। अभी आपने सुना ये नक्ता मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश के युगल स्वरों में। और आइए अब मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश के ही युगल स्वर में सुनते हैं ये चकिया।

चकिया के पटवा पे पिसत व पिसनवा। अभी आपने सुना ये चकिया मधु श्रीवास्तव और सुषमा श्रीवास्तव के गाए युगल स्वरों में संगत करता थे। नाल पर अवध बिहारी वर्मा, ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी, हारमोनियम पर ललित चंद्र भट्ट, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम पर गौरव गुप्त। इसी के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोता, हम आपको बता दें 7:31 पर कानून की बात में आज आप सुनेंगे जेल में कैदियों के अधिकार विषय पर प्रत्युष गौरव एडवोकेट हाईकोर्ट से अतीश कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। मीडियम वेव 401.6 मीटर था 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। अब मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
1: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
0: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण

0: स्वतंत्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज़ ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज की सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा सुमित्रा नंदन पंत की जन्म जयंती पर विशेष कार्यक्रम प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के उपासक सुमित्रा नंदन पंत। आलेख वाचन संपादन होगा सुरेंद्र राजेश्वरी का और प्रस्तुति होगी डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की। किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें किसान भाइयों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियोज में उपस्थित रहेंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड लखनऊ के उप महाप्रबंधक रोहित श्रीवास्तव। और आज आप इनसे जानकारी ले सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि आधारभूत फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाबार्ड से दे सुविधाएं। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें आज का विषय होगा जेल में कैदियों के अधिकार। जानकारी देंगे हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रत्युष गौरव और भेंटकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर, जिसमें आज सुनिएगा उस्ताद नसीर खान का सारंगी वादन। सुगम संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजकर

10 मिनट पर इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि आज कलाकार होंगी संयुक्ता बैनर्जी। और अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर सुनेगा कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर हम लेकर हाजिर हो जाएंगे कार्यक्रम नई उड़ान। इसके अलावा फिल्म संगीत का आनंद इस सभा में आप ले सकेंगे। श्रोताओं, ये था विवरण आज की सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। कल सुबह 10:10 पर सुनेगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। इसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनिएगा डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा की वार्ता। विषय होगा बदलते परिवेश में दूरस्थ शिक्षा। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा दास्तान चार दरवेश। जिले की हलचल, इस कार्यक्रम का समय आपको बता दें सुबह 9:15। साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत आप सुनेंगे कल शाम 7:31 पर। बहनें अपना कार्यक्रम घर आंगन सुन सकेंगी कल दिन में 1:15 पर। विज्ञान और किसान, इस कार्यक्रम का समय आपको बताने होगा दिन में 2:30, जिसमें कल सफलता की कहानी शीर्षक के अंतर्गत सुनिएगा गन्ना उत्पादन विषय पर जानकारी देंगे विजयपाल सिंह और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। सुबह 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी बताएंगे फसलों में मुख्य पोषक तत्व के विषय में। सुबह 7 बजे लेकर हाजिर हो जाएंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें कल नीना सोनकर बताएंगी फूड पॉइजनिंग से बचाव के विषय में। सुबह 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें कल सुनिएगा विश्व चाय दिवस और विश्व आतंकवाद विरोध दिवस पर आधारित कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आपको बता दें जिसका समय होगा सुबह 7:31 और रात 10:30। इस कार्यक्रम में कल सुनिएगा ऋतु भार्गव का ख्याल गायन। कल शाम 5:10 पर हम लेकर हाजिर हो जाएंगे कार्यक्रम युवा तरंग। कल शाम 5:45 पर सुनेगा कार्यक्रम नई उड़ान। और कल शाम 6:30 और 6:50 पर हम लेकर हाजिर हो जाएंगे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी। इसके अलावा दिन में समय समय पर फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे। श्रोताओं, ये था विवरण आज की इस सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा धड़कनों की आवाज़, युवा तरंग, और मैं हूँ आज आपके साथ अनुष्ठा। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। कभी हम किताबों के पन्नों में जवाब ढूंढा करते थे, और आज मोबाइल की स्क्रीन पर पूरी दुनिया ही मौजूद है। पढ़ाई का तरीका बदला, सोचने का तरीका बदला, लेकिन एक चीज़ अब भी वही है, और वो है सीखना, यानी कि लर्निंग। और इसी बदलती दुनिया के बीच आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर छात्र, हर घर और शायद हर युवा से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग। क्या घर बैठे मोबाइल पर पढ़ाई ज़्यादा आसान है, या फिर क्लासरूम की वो रौनक, दोस्तों की बातें, टीचर का सामने खड़े होकर पढ़ाना आज भी सबसे ज़्यादा खास है। इसी के साथ आज हम बात करेंगे प्रकृति के उन छोटे छोटे साथियों की भी, जिनके बिना शायद हमारी धरती इतनी खूबसूरत ना दिखे, और वो हैं मधुमक्खियाँ। आज है विश्व मधुमक्खी दिवस, और इसी मौके पर जानेंगे कि आखिर ये छोटी सी मधुमक्खियाँ हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो अगले कुछ मिनटों तक जुड़े रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आज की बातें होंगी बिल्कुल आपकी, हमारी और इस बदलती दुनिया की। शुरुआत करते हैं युवा तरंग के आज के इस खास सफ़र की इस गीत के साथ में।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम युवा तरंग और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अनुष्ठा। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करियर की संभावनाएं। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर पल खबरें हमारे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाती हैं, वहां मीडिया की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। बहुत से युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं,

0: लेकिन उनके मन में कई सवाल भी होते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं और इस फील्ड में क्या ग्रोथ है, और सबसे जरूरी कि इस क्षेत्र में सफल होने के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत होती है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो इस क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ हैं। तो आइए बिना देरी किए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान का। हमारे साथ हैं अश्विनी तिवारी जी। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युवा तरंग में।
1: शुक्रिया। नमस्कार, मैं अश्विनी तिवारी हूँ और मैं करेंटली कंटेंट राइटिंग और एंकरिंग से जुड़ा हूँ। मैं मेनली हिंदी डिजिटल कंटेंट पर काम करता हूँ जिसमें न्यूज आर्टिकल्स और स्क्रिप्ट बनाता हूँ। मैं पिछले 4 सालों से इस मीडिया फील्ड में से जुड़ा हूँ। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैंने 4 सालों से काम किया। इस दौरान मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने का अनुभव है। रिपोर्टिंग, एंकरिंग, कंटेंट क्रिएशन काफी काम किया है जिसकी वजह से मुझे इस फील्ड का थोड़ा अनुभव है।
0: अगर आपसे ये पूछे कि इस फील्ड में आपकी रुचि कब हुई और कैसे हुई तो क्या बताना चाहेंगे?
1: जब मैं क्लास 11th में था तब मेरे एक कजन है, उन्होंने ये जर्नलिज्म फील्ड चूज़ किया था जिसके बारे में मुझे उनसे इंटरेस्ट हुआ, और इसके बारे में जब जाना तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए और ये काफ़ी फैसिनेटिंग है। मुझे एंकरिंग करना काफ़ी पसंद है क्योंकि उसमें आप अपने आप को पहचान पाते हैं, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि आप अपने थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देश के मुद्दे, दुनिया के मुद्दे पे आम लोगों का सवाल उठाकर आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं।
0: ये बताइए कि डिजिटल युग में जर्नलिज्म की भूमिका कैसे बदली है?
1: डिजिटल युग ने जर्नलिज्म को काफ़ी तेज और प्रभावी बना दिया है। अब खबरें मिनटों में लोगों तक पहुंच जाती हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण न्यूज की पहुंच बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।
0: इस फील्ड में और कौन कौन से करियर के ऑप्शंस हैं?
1: इस क्षेत्र में रिपोर्टर, एंकर, न्यूज एडिटर, कंटेंट राइटर, PR प्रोफेशनल, रेडियो जॉकी, वीडियो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर और डिजिटल मार्केटिंग जैसी कई विकल्प मौजूद हैं।
0: ये बताइए किस प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा स्कोप है आपके हिसाब से?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है। डिजिटल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है लेकिन TV और रेडियो की विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है, इसलिए सभी प्लेटफॉर्म में अवसर मौजूद है।
0: हाँ, मतलब आप अपने टैलेंट के दम पर आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं।
1: अभी आप देखोगे कई सालों से डिजिटल मीडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है जिसका मुख्य कारण सोशल मीडिया भी है। पॉडकास्ट जैसे जगहों पर न्यूज़ एकत्रित करते हैं, न्यूज़ के बारे में जानते हैं, काफ़ी देश विदेश के मुद्दों के बारे में चर्चाएं करते हैं, तो डिजिटल मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो यूथ अभी इसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है रेदर देन आपका TV या
0: हम सबके हाथ में अब स्मार्टफोन है
1: जी,
0: तो बहुत ही इजी हो गया है अब हमारे पास कि हम कोई भी न्यूज़ है जो आ रही है वो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं उतनी ही।
1: हाँ, डिजिटल मीडिया का एक और फायदा है, जैसे भारत के बहुत बड़ा वर्ग है जो शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनके लिए अखबार पढ़ना काफी मुश्किल है, और टीवी क्योंकि अभी अब लोगों के पास समय भी उतना नहीं है कि हम लोग टीवी देखें। फोन होने से एक ये फायदा हो गया है कि लोगों के हाथ में फोन है और अब देश दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको वीडियो के माध्यम से बहुत इजीली पता चल जा रहा है, और काफी शॉर्ट्स वीडियो भी आ रहे हैं जिसकी वजह से कम टाइम में अच्छी जानकारी और पुख्ता जानकारी उनके पास आ जा रही है।
0: जी, क्या इस फील्ड में जाने के लिए हमारे पास डिग्री होना जरूरी है?
1: डिग्री मदद करती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपके स्किल्स और अनुभव होते हैं। बिना डिग्री के भी लोग इस फील्ड में एक सफल हुए हैं क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जिनके पास शायद मास्कॉम की डिग्री नहीं है बट वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनके स्किल्स और अनुभव उन्हें आगे प्रेरित करना या उनके स्किल्स को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करता है।
0: लेकिन जैसे अगर डिग्री हमारे पास होती है तो वो दूसरे तरीके से हमें मदद करती होगी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिग्री होना ही आवश्यक है, लेकिन डिग्री अगर है हमारे पास तो हमें जैसे टेक्निकल नॉलेज भी उससे मिल गई, या कह सकते हैं कि एक जो थ्योरी वाइज हम चलते हैं, जब हम मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हैं तो आप जैसे कि जानते ही होंगे कि पहले बैचलर्स होता है, फिर मास्टर्स होता है, फिर उसमें आप चाहें तो PhD भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक नीचे स्तर से हम जब पढ़ते हैं इस मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई को तो हम नीचे स्तर से कोशिश करते हैं कि उसको कवर अप कर सकें।
1: नो डाउट, आप बहुत सही कह रहे हो क्योंकि आप अगर इस फील्ड में आप पढ़ते हो, MGMC करते हो, BGMC करते हो, तो नो डाउट आपके पास नॉलेज होगा क्योंकि आप बेसिक चीज़ें पढ़े हो बेसिक, बट इस फील्ड में आप देखोगे ना तो इस फील्ड में इंजीनियर लोग भी ज़्यादा आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस फील्ड में हर स्ट्रीम से लोग आते हैं और अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है

0: किस फील्ड में अगर आपको काम करना है तो आपको MGMC BGMC करना ही जरूरी है। आप किसी फील्ड से आके इस फील्ड में काम कर सकते हो।
1: जी, एक अच्छे एंकर या रिपोर्टर बनने के लिए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?
0: आत्मविश्वास, निष्पक्षता और हर परिस्थिति में शांत रहना बहुत जरूरी है, साथ ही लगातार सीखते रहना भी चाहिए।
1: तो आपने एक अच्छा रिपोर्टर या एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या क्या चीजें अपनाई अपने जीवन में, और आपने अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए आपने क्या कुछ कोशिशें की जो आप बताना चाहेंगे?
0: सच कहूँ तो मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं था, मगर जब इस फील्ड में आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंकरिंग करने का, कैमरे के सामने आने का, जिसके बाद मैं अपने बोलने के तरीके पे और अपने सच कहूँ तो मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं था, मैं बहुत नर्वस हो जाता था, इनफैक्ट मैं फ़ोटो भी क्लिक नहीं कराता। बट इस फील्ड में आने के बाद धीरे धीरे मुझे एंकरिंग का, वीडियो कैमरा के सामने आने का धीरे धीरे शौक हुआ और मैंने अपना हेजिटेशन दूर किया, जिसके बाद मैं अपने बोलने की स्किल पे, अपने कॉन्फिडेंस पे अभी भी लगातार काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कर सकूँ।
1: मतलब हम सब सीखते रहते हैं, हमारी एक जो प्रक्रिया होती है ना सीखने की, हम कितने भी उस फील्ड में कितने भी सालों से, लेकिन हम सब सीख रहे हैं। तो आप भी उस फील्ड में हैं और आप लगातार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और
0: इस फील्ड की सबसे दिलचस्प बात है कि आप हर एक दिन कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि आप हर एक दिन गलती करेंगे, हर एक दिन उस गलती से सीखेंगे और उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
1: जी, इस फील्ड को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कई बार लोगों में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं कि ये जो फील्ड है ये बस खाली ग्लैमर से ही भरा हुआ है और यहाँ पे बस चकाचौंध है। तो आपको क्या लगता है?
0: मतलब ये बात आपकी सही है, क्योंकि लोग ग्लैमर देख के आते हैं, और मगर मैं सच बोलूँ तो शुरुआत में इस फील्ड में कम सैलरी होती है, ज़्यादा काम, अनियमितता, समय जैसी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अनुभव के साथ स्थिति बेहतर होती जाती है। और जो रही बात ग्लैमर की, तो ग्लैमर तो है बट काम और आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप ग्लैमर के लिए इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं, इस फील्ड में आप आ रहे हैं उन आम नागरिकों के लिए जो आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, और आपके थ्रू वो दुनिया में, देश में चीजें जानने के लिए कैपेबल हैं कि आप जो आप बताएंगे वो उन्हें समझेंगे। क्योंकि नॉर्मल इंसान अगर न्यूज देखता है तो इसीलिए देखता है कि जो वो एंकर बोलता है उस बात वो विश्वास करता है। तो ग्लैमर से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके और सही बात लोगों तक पहुंचा सके।
1: मतलब बीइंग अ मीडिया प्रोफेशनल, ये हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम सही बात, ऑथेंटिक बात, क्रेडिबिलिटी के साथ अपने श्रोताओं को बताएं। भविष्य में डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित होगा, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो डिजिटली स्ट्रांग होने वाला है और टेक्नोलॉजी भी उसमें अपार होगी। तो AI और डेटा जर्नलिज्म कैसे नए क्षेत्र में उभर रहे हैं? अगर इस फील्ड के फ्यूचर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड का जो भविष्य है वो कैसा होने वाला है?
0: मुझे लगता है कि भविष्य डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित होगा, AI और डेटा जर्नलिज्म जैसे नए क्षेत्र उभर रहे हैं, और इसको ये और जर्नलिज्म को, इस फील्ड को तेजी से बढ़ाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: जी, जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो इच्छुक हैं, या हो सकता है आज आपकी और हमारी बात सुन के भी बहुत लोग इस फील्ड में आने को तैयार हो जाएं, तो उनको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए?
0: मुझे लगता है कि इस फील्ड में जो आना चाहते हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज है कि रेगुलर डेली बेस पे वो समाचार पढ़ें, और कभी जिस ऐसा लिखें जिसे लोग जनता में आक्रोश ना फैले, जिसे जनता भड़के ना। तो ये सब जिम्मेदारियां होता है कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगता है कि कंटेंट राइटिंग अगर आप करते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको गहन जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे आप उस चीज़ को आप सही दिशा में और सही चीज़ लिख सकें।
1: और फैक्ट चेकिंग?
0: फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको एक बार उस बारे में पता कर लेना चाहिए कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं।
1: जी, तो श्रोताओं, आज की इस खास बातचीत में हमने जाना कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन सिर्फ एक करियर नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जहां सही जानकारी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमारे मेहमान ने हमें बताया कि इस फील्ड में बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत, धैर्य और लगातार सीखते रहने की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा है। तो उम्मीद है कि आज की चर्चा उन सभी युवाओं के लिए मददगार साबित होगी जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इसी के साथ अश्विनी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता और उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी

आई होगी। दोस्तों, आजकल एक सवाल लगभग हर घर में सुनने को मिल जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर है या ऑफलाइन। अब देखिए, कुछ साल पहले तक पढ़ाई का मतलब था सुबह जल्दी उठना, स्कूल या कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना, क्लास में बैठना या टीचर की डांट खाना, लंच ब्रेक का इंतज़ार करना। लेकिन फिर वक्त बदल गया और मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट ने पढ़ाई का तरीका ही बदल दिया है। अब बच्चे घर बैठे ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं और अब तो हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी के पास लैपटॉप है और क्लास शुरू होते ही बच्चे लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। घर पर पढ़ाई हो जाती है, समय बचता है और अगर कोई चीज़ समझ में भी ना आए तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। कई बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि उनमें बहुत सारा आराम भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑफलाइन पढ़ाई की अगर बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब ये किस तरीके से अलग है ये हम आगे के कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले कार्यक्रम में आपको एक प्यारा सा गीत भी सुना देते हैं। तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

लेकिन दूसरी तरफ ऑफलाइन पढ़ाई की अगर बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब ये किस तरीके से अलग है ये हम आगे के कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले कार्यक्रम में आपको एक प्यारा सा गीत भी सुना देते हैं, तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी अलग होती है ऑनलाइन पढ़ाई से। क्लासरूम का माहौल अलग होता है, वहाँ पर दोस्तों के साथ बातचीत, टीचर का सामना खड़े होकर पढ़ाना, और ये सब चीज़ें सिर्फ किताबों से ही मिल पाती हैं, और ये सब चीज़ें हमें एक नया अनुभव भी देती हैं। ऑफलाइन पढ़ाई हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाती है, बल्कि लोगों से जुड़ना भी सिखाती है, आत्मविश्वास से बात करना और अनुशासन भी सिखाती है। हालांकि हर किसी की अपनी पसंद होती है, और कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ाई में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, तो कुछ लोगों को क्लासरूम का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है। और शायद सच यही है कि दोनों का अपना अपना महत्व है, और अगर टेक्नोलॉजी हमें नई सुविधाएँ दे रही है तो ऑफलाइन क्लास हमें इंसानी जुड़ाव सीखने का भी असली अनुभव देती है। तो दोस्तों, बात यह है कि सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब चाहे वो तरीका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ये तो थी ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के बारे में हमारी खास बातचीत, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि आज एक और बहुत ही खास दिन भी है। आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि वर्ल्ड बी डे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी छोटी सी मधुमक्खी के लिए एक पूरा दिन क्यों? तो ज़रा सोचिए कि अगर मधुमक्खियाँ ही ना रहें तो क्या होगा? हमारे आसपास जो रंग बिरंगे फूल हैं, खेतों में लहलहाती फसलें हैं, आम, सेब, तरबूज जैसे फल हैं, इन सब के पीछे मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद ही नहीं बनाती, बल्कि पेड़ों और पौधों के प्रजनन में भी मदद करती हैं। और आसान भाषा में अगर कहें तो ये प्रकृति की छोटी सी मेहनती कर्मचारी हैं, जो बिना रुके अपना काम करती रहती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज मधुमक्खियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बढ़ता प्रदूषण, कीटनाशकों का ज़्यादा इस्तेमाल और पेड़ों की कटाई। कभी आपने गौर किया है कि पहले घरों के आसपास बगीचों में या खेतों में मधुमक्खियां आसानी से दिख जाती थी, उनकी भिनभिनाहट भी सुनाई देती थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नज़र ही नहीं आती हैं, और शायद हम में से कई लोग मधुमक्खियों से डरते भी हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि मधुमक्खियां बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो बस अपना काम करती रहती हैं, फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते को संभालती हैं। दोस्तों, इसी विषय पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये गीत।

दोस्तों, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव का अपना महत्व होता है और मधुमक्खियाँ उस संतुलन की एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी हैं। तो इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, फूलों वाले पौधे उगाएंगे और प्रकृति को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मधुमक्खियाँ सुरक्षित रहेंगी तभी हमारी धरती भी मुस्कुराती रहेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं एक और गीत की ओर।

तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है युवा तरंग का आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा और हमारी बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची होंगी। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त रेडियो अनुष्ठा को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा श्रोताओं, न्यूज ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। आपको बता दें कि NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से, प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं IFFCO। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 5:45 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

साथियों नमस्कार, स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रीना का की ओर से आप सभी के लिए अभिवादन। अच्छा, आज एक ख़ास दिन है। ख़ास दिन कौन सा है शायद आपको पता हो। चलिए ऐसा करते हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको इंटरनेट के बारे में पता है? ओहो, आप भी कहेंगे कि ये कैसा सवाल है, इंटरनेट के बारे में आजकल कौन नहीं जानता। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं तो वो इंटरनेट कहलाता है, यानी कि एक से अनेक कंप्यूटर जब जुड़े तो इंटरनेट। और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपको प्राकृतिक इंटरनेट के बारे में पता है, यानी वो इंटरनेट जो कि प्रकृति यूज़ करती है, एक अलग तरह का वर्ल्ड वाइड वेब। मुझे लगता है आप उत्तर देंगे जी हाँ, हमें पता है कि प्रकृति का हर एलिमेंट, हर जीव, हर जंतु, हर पेड़ पौधा किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ करके ही बना देता है इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। और इसी इकोसिस्टम की छोटी सी कैरियर है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो कि फूलों के परागकणों को दूर दूर तक ले जाती है और पौधों के प्रजनन में सहायता देती है। इसी मधुमक्खी को पालने की आधुनिक तकनीक के अग्रदूत थे स्लोवेनिया के एंटोन जांचा। एंटोन जांचा जो थे वो मधुमक्खी पालकों के एक परिवार से थे और इन्होंने ही मधुमक्खी पालन की जो आधुनिक तकनीक है उसकी शुरुआत की थी। इसीलिए 2018 में स्लोवेनिया सरकार जो थी उसने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पारित किया कि हमें 20 मई का जो दिन है, यानी

0: आज का जो दिन है वो विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि स्लेवानिया सरकार ये चाहती थी कि मधुमक्खियों का हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में यानी इकोसिस्टम में जो महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को ये समझाया जाए कि भाई मधुमक्खी भी इम्पॉर्टेंट होती है। आज का दिन इसलिए चूज़ किया गया इस काम के लिए, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने के लिए आज का दिन इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि आज ही के दिन जो मधुमक्खी पालन के अग्रदूत थे एंटोन जानशा, उनका जन्म भी हुआ था। वैसे मधुमक्खी पालन जो है एक व्यवसाय के रूप में काफ़ी लोगों द्वारा इसका पालन भी किया जाता है, बहुत लोग अपनाते हैं इस व्यवसाय को। और प्रकृति वैसे भी अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम देती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और प्रकृति से हमें क्या नहीं मिलता, सब कुछ तो हम प्रकृति से ही लेते हैं। सवाल ये है कि हम प्रकृति को देते क्या हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर आ जाता है। जहाँ तक प्रकृति की बात है तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता कि है जो कि हम प्रकृति से लेते नहीं हैं। भावनाएं भी हम प्रकृति से ही लेते हैं। कवियों की बात करें तो उनका पसंदीदा विषय होता है प्रकृति और उसका सौंदर्य। प्रकृति और उसके सौंदर्य के बिना कवियों की कविताएं अधूरी लगती हैं, सही है ना? और ऐसे ही एक छायावादी कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनकी आज जयंती है। और सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती भी हम आज मना रहे हैं, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए प्रकृति जो है वो सब कुछ हमें देती है और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ही हमारे मन में कई सारी भावनाएं भी उठती हैं। कुछ लोग खुशी के गीत लिखते हैं, कुछ आपसी प्रेम के गीत लिखते हैं और क्या क्या नहीं लिखते हैं। जब हम प्रकृति के नज़दीक होते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं, हमारी सारे जो तकलीफ़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं, दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं और हमें नया उल्लास और उमंग भी मिलता है। है बात सही कि नहीं? अच्छा, जब आप नई उड़ान कार्यक्रम सुनते हैं तब भी आपको ऐसे ही कुछ फील होता है क्या कि ये प्रोग्राम जो है वो कुछ अलग है? इसको सुनकर हम उम्मीदों से भर जाते हैं, हमारे मन में उत्साह आ जाता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारी श्रृंखला प्रगति के पथ। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है कपिल तिलहरी ने, तो आइए सुनते हैं ये प्रस्तुति।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नई उड़ान और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त कपिल। हमारे सेगमेंट प्रगति पथ में आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। आखिर कैसे नई तकनीक हमारे जीवन, शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं को बदल रही है, आइए जानते हैं लोगों की राय।
2: मेरा नाम युवराज चौधरी है, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ।
1: युवराज, आप टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है दिन पर दिन, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं?
2: जी, हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे अब टेक्नोलॉजी की अन्य सेवाओं से हमारा काम बहुत ही आसान और सरल हो गया है और हमारे पास कई तरह के गैजेट्स भी उपलब्ध हो गए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है हमारे लिए, इंटरनेट की सुविधाएं हैं, काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और बैंकिंग सुविधा का समय बचाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स भी आ चुका है और शिक्षा को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं। और इसी तरह हम अगर इसका सही तरीके से उपयोग करें तो हम बहुत इसको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं और घर बैठे जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और पेमेंट में जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई हमारा व्यक्ति दूर है, हम उसे कैश ना दे पाएं तो हम उसे ऑनलाइन पेमेंट कर पूरे वक्त में उसका सहयोग भी कर सकते हैं।
3: मेरा नाम दिव्यांशी अरोड़ा है। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एक वैज्ञानिक औजार है और इनोवेशन वो सोच है जो इसे एफिशिएंटली यूज करना सिखाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज घर बैठे नेसेसिटीज़ एक्सेस करना हो या मुश्किल वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन और बिजनेस ग्रोथ, ये सब इसी का एक हिस्सा है। लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाता है। मैनकाइंड आज टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा निर्भर हो चुकी है कि अगर हमने इस

0: डिपेंडेंसी को कंट्रोल नहीं किया तो ये फायदे से ज़्यादा नुकसान देने लगेगा। मेरा मानना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए होना चाहिए, हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए नहीं। हम डिजिटली तो सबसे कनेक्ट हो गए हैं, पर शायद रियल कनेक्शन कहीं पीछे छूट रहा है। बदलाव ज़रूरी है, पर लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। इनोवेशन का मकसद हमें एम्पावर करना है, अपना गुलाम बनाना नहीं, क्योंकि हद किसी भी चीज़ की हमेशा हानिकारक ही साबित होती है।
1: मेरा नाम अक्षांश पांडे है। आज की दुनिया तेजी से आगे बदल रही है। टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने का तरीका, सीखने का तरीका और सोचने का तरीका बदल दिया है। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है। मैं खुद एक वीडियो एडिटर हूँ और मैंने बहुत करीब से महसूस किया है कि टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव फील्ड को कितना ट्रांसफॉर्म किया है। पहले एडिटिंग में घंटों और कभी कभी दिनों दिनों का समय लग जाता था, लेकिन आज एडवांस सॉफ्टवेयर, AI टूल्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी की वजह से काम ज्यादा फास्ट, स्मूथ और क्रिएटिव हो गया है। अब हम सिर्फ वीडियोज एडिट नहीं करते, बल्कि इमोशन, स्टोरीज और आइडिया को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन हर जगह है, हर फील्ड में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस और एंटरटेनमेंट, हर जगह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव साफ दिखाई देता है। भारत भी इसे डिजिटल क्रांति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन एजुकेशन और UPI जैसी सुविधाएं यह दिखाती हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा नहीं, विकास का एक माध्यम बन चुका है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स को नहीं बल्कि ड्रीम्स को भी पावर देती है।
2: तो दोस्तों, अब इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नंदिनी सिंह, जो कि एक BTech स्टूडेंट रह चुकी हैं और उसके अलावा ये एक एक्टर भी हैं। नंदिनी, आपने कंप्यूटर साइंस और थिएटर दोनों अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव इंडस्ट्री और परफॉर्मिंग आर्ट्स को किस तरह डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया है?
3: मैंने BTech किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और मैं अभी भारतेंदु नाट्य अकेडमी से मास्टर्स मेरा खत्म होने वाला है। दोनों फील्ड्स में रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। सबसे पहली बात तो दोनों चीज़ों में मुझे कुछ चीज़ें ऐसा कॉमन लगी कि हाँ, जैसे कंप्यूटर साइंस या टेक बेस्ड जो चीज़ें हैं वो थोड़ा डेटा बेस्ड है, यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम लाइव चीज़ें कर रहे हैं, बट दोनों में ही एक कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब डील करने की चीज़ होती है। पर जो टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से सबसे पहले तो जैसे हम लोगों के पास एक फिजिकल ऑडियंस, लिमिटेड ऑडियंस थी या सिर्फ स्टेज था, टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ग्लोबल रीच जो बड़ा है, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज और करने के मायने बदल गए हैं, प्लस क्रिएटिव प्रोसेस में भी कितना चेंज हुआ है। जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी हम साउंड, लाइटिंग डिज़ाइन या प्रोजेक्शन या जो भी हम वर्चुअल सेट्स बना पाते हैं, तो ये स्टोरी टेलिंग को एनहांस ही किया है टेक्नोलॉजी ने। फिल्म मेकिंग में अगर हम देखें, CGI एडिटिंग में, जो भी AI टूल्स हैं, उसने एक्सपेरिमेंटेशन को एक्सेसिबली बनाया है, उसको और एफिशिएंट बनाया है। प्लस अभी किसी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं कि वो ऑनलाइन अपना टैलेंट या अपनी जो भी उसकी कैपेबिलिटीज शोकेस कर सकता है, खुद से ही पोस्ट कर पाते हैं, उसके पोस्टर्स जो बना पाते हैं, सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही हेल्प हुई है कि हम जो भी हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्रिएटिविटी कर रहे हैं उस चीज़ को एक्सपैंड कर सकें, उसका प्रमोशन कर सकें। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हम हर फील्ड में ही देख रहे हैं, हर जगह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर इंसान इस चीज़ से अपडेटेड रहे। AI को हम देख रहे हैं कितना आजकल बढ़ गया है, तो AI के बारे में हम जितना जान सके और उसको एज अ टूल अपनी लाइफ में यूज कर सके, ताकि वो हमारी हेल्प करे एक टूल की तरह।
2: यानी तकनीक ने शिक्षा को नई दिशा दी है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे साथ हैं जसविंदर कौर जी, जो कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और ये एक मेकअप स्टूडियो चलाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जसविंदर जी हमारे कार्यक्रम में।
4: थैंक यू कपिल जी।
2: क्या आप ऑनलाइन पेमेंट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं अपने बिजनेस के लिए?
4: हाँ जी कपिल जी, मैं बहुत टेक्नोलॉजी का आभार मानती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जहाँ लोग पहले मैनुअली वर्क करते थे, वहाँ आजकल हम लोग को बहुत सुविधा हो गई है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट ले सकती हूँ क्लाइंट से, और उसके बाद सोशल मीडिया की वजह से मेरा जो काम है वो मैं लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए।

0: तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप किस तरीके से करती हैं, मतलब अपने बिजनेस को लेके?
1: बिजनेस को लेके अगर मैं कहूँ तो टेक्नोलॉजी में आजकल जैसे एआई का इस्तेमाल लोग करते हैं, तो उसी तरह से मैं भी अपने बिजनेस में जब मेरे पास कोई कस्टमर आता है मेरे काम को सोशल मीडिया पर देखने के बाद, और वो मुझसे सुझाव मांगते हैं कि वो शादी या पार्टी में किस तरह का लुक चाहेंगे, तो उसके हिसाब से मैं उनको करती हूँ कि एआई के माध्यम से मैं उनको उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट मेकअप या उनको लुक उनके दिखा सकती हूँ
0: जी
1: कि कैसा लगेगा उनके ऊपर, और उस हिसाब से उनको अपने लुक चूज करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो ऑर्डर मिलने में हमें बहुत हुई है, क्लाइंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है।
0: जी
1: जो चीज हम पहले उनको डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाते थे, वो अब कहीं भी बैठे हुए उनको सिर्फ एक क्वेरी आती है, वो एक एक क्वेश्चन हमसे करते हैं और हम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए जिनके थ्रू हम क्लाइंट तक बहुत आसानी से पहुंच पाते हैं, और इससे बिजनेस को बढ़ावा तो मिलता ही मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को बहुत आसानी हो गई कि हम लोग घर बैठे ही कुछ भी सीख सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे तक डायरेक्टली नहीं पहुँच सकती हैं, दूर होती हैं, दूसरे छोटे शहरों में रहती हैं और वो इतनी दूर नहीं आ सकती लखनऊ जैसे बड़े शहर में, तो वो मेरे से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होके, अलग अलग माध्यम है जिनके थ्रू हम उनको घर बैठे क्लासेस दे देते हैं और वो अपना घर बैठे ही जो चार्जेस होते हैं वो हमें पे करते हैं, और उसके बाद वो सक्षम हो जाती हैं, उनका भी एक स्किल डेवलप हो जाता है और वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं। और ये बहुत कहते हैं ना जैसे दुनिया मुट्ठी में हो गई है, वही वाला हिसाब अब हो गया है कि
0: जी
1: आप घर बैठे ही अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाएं और अपने बिजनेस को बढ़ावा दीजिए।
0: तकनीक छोटे व्यापारों के लिए भी अवसरों के नए दरवाजे खोल रही है। तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं डॉक्टर अनामिका गुप्ता सूरी, जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
2: थैंक यू कपिल जी।
0: तो आप थोड़ा सा बताएं कि हेल्थ सेक्टर में इसका कितना प्रभाव आया है?
2: आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो मेडिकल फील्ड में आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व बढ़ गया है, जो भी मैनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जो हम लोगों की होती हैं वो टोटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गई हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम डायग्नोस बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम ट्रीटमेंट लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। अब हमको किसी तरह की मतलब हार्ड कॉपी नहीं रखनी होती है, पेपर नहीं रखना होता है, सारे एक स्क्रीन पे हमें किसी भी पेशेंट का कहीं पर भी उसका सारा डिटेल मिल जाता है। ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, और ऐसा नहीं सिर्फ हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, ये पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है।
0: तो क्या अभी ऐसा भी हुआ है कि जो रोगी हैं या बीमार व्यक्ति है वो ऑनलाइन भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं डॉक्टर्स उनको, या इस तरीके से?
2: जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली अब हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू और एआई के थ्रू बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि जिससे कि हमारे पास ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें पहले से अवेयर कर देता है। इनफैक्ट उसकी सूचना डॉक्टर तक पहले स्वयं ही पहुंच जाती है, जिससे हमारी इमरजेंसी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो यथासंभव पहुंचाई जा सकती हैं। हाँ, और ये भी है कि बाय द वे हम जिस शहर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम वहाँ नहीं हैं, तो ये सुविधा हमारे और पेशेंट के बीच में हो गई है कि हम कहीं पे भी हों हम ऑनलाइन किसी प्रकार का भी ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मरीज की परेशानी को समझ सकते हैं और उसे एडवाइस भी कर सकते हैं कि उसे क्या करना है।
0: स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हमारे साथ अब हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर्ष श्रीवास्तव जी, करते हैं इनसे बात इस विषय पर। तो हर्ष जी, आपका क्या मानना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके?
3: आज की दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी चीज है। पहले जो काम घंटों में होते थे, आज टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ सेकंडों में ही हो जाते हैं। चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, डिजिटल पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्मार्ट हॉस्पिटल्स। इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए गैजेट बनाना नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को स्मार्ट सॉल्यूशन देना भी होता है। इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, वो इस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी का सही यूज करना उतना ही जरूरी है जितना इनोवेशन। इसके लिए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हो या फिर और भी जो सिलिकॉन वैली कंपनीज जो हमारे इंडिया में आ रही है, उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो हमारी 10 ईयर्स फर्दर इंक्रीज करेंगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाइम सेविंग, इजी कम्युनिकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट, बेटर हेल्थ केयर, जो कि आजकल के कितने भी बड़े से बड़े हार्ट के ऑपरेशन हमारी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत बड़ी

0: थे हमारी यूथ में,
1: हाँ
0: और वो बहुत ही कम मेहनत में आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। स्मार्ट वर्क हो गया, पेपरलेस सिस्टम जो कि हमारे डिफॉरेस्टेशन के लिए भी काम करती है कि कितने पेड़ काटे जाते हैं साल दर साल, और पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, पॉपुलेशन चीज़ें तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। जब भी चीज़ जो मुझे लगती है वो है ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि आप दुनिया के एक कोने से बैठ कर दूसरे कोने तक भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो नॉलेज के किसी भी क्षेत्र की बात करी जाए। पहले के समय पे जहाँ पे एक ही क्षेत्र की या एक ही एरिया की फिल्में देखी जाती थी, अब हमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स के बारे में भी पता है। तो ये सब मुमकिन हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, जो कि एक दुनिया को एक नए और बेहतर आयाम की तरफ ले जा रही है।
1: अच्छा, हर्ष आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति जो लोग अवेयर हैं वो तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो बेसिक चीज़ों को सीखना ज़रूरी है आगे जो आने वाला समय उसके हिसाब से?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी की वो शहरों से ज्यादा गांवों में के लोगों के लिए है। सबसे बड़ी चीज जो तोड़ती है टेक्नोलॉजी वो है भ्रम। हमने शहर में रहकर दुनिया देखी है, पर जो व्यक्ति गांव में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, और जिसने अपने गांव के इर्द गिर्द कुछ और देखा नहीं, उसे दुनिया के मायने नहीं पता है, वहाँ के ना सिर्फ लड़के ना कि लड़कियां, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स रहे हर चीज को लेकर, एज को लेकर, कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे गांव में 40 साल का आदमी सोचता है कि मेरी जिंदगी खत्म है, अब मुझे कुछ जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, अब मुझे 10-20 साल में खत्म, बस बेटी की शादी, बच्चे की शादी नहीं चले जाएंगे। बट अगर आप डिजिटली प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करते हैं तो आप देख पाते हैं कि दुनिया में 40 साल के लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कई ऐसे एक्टर्स है, बूमन ईरानी हो गए, जो अपनी उन्होंने लेट जर्नी शुरू की थी, एक बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं, और हैरी पॉटर के जो सेवेरस स्नेप का रोल करते थे, उन्होंने भी 40s में ही शुरू किया था, और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और कह सकते हैं कि जीने का मजा भी आता है जब आप सब कुछ देख लेते हैं, सारे ऑप्शन जो आपके सामने होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ। तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी चीज है, बशर्ते इसका गलत इस्तेमाल ना हो, जैसे फ्रॉड वगैरह, बट सही अवेयरनेस के साथ सही चीजें लोग भी जाएंगी और एक बेहतर सोसाइटी बनने के भी हेल्प करेंगी।
1: AI, ऑटोमेशन और नई तकनीकें भविष्य की दुनिया को और स्मार्ट बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। तो श्रोताओं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन केवल तकनीक का बदलाव नहीं बल्कि सोच और जीवन शैली का भी बदलाव है। आज के प्रगति पथ में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई उड़ान के किसी और सेगमेंट में।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे स्थल ध्वनिंकन पर आधारित हमारा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विषय था टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया था कपिल तिलहरी ने। और आइए अब आपको कुछ अच्छे अच्छे विकास समाचारों के बारे में बता दें। देखिए, ऐसा है कि पंचायती राज, मनरेगा और सिंचाई विभाग ने एक खाका तैयार किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 84 अमृत सरोवर और 132 तालाब ऐसे चिन्हित किए हैं जिनमें कि पानी अब नहीं है, और इन सभी को दोबारा से पानी से भर देने के लिए इनके आसपास से निकलने वाली नहरों और नदियों से इन्हें एक महीने के भीतर ही कनेक्ट करा जाएगा, जिससे कि ये तालाब और सरोवर दोबारा पानी से भर जाएं। जहां पर नदियां और नहरें नहीं हैं, वहां पर पंचायती राज विभाग और मनरेगा ढाल और नाली आदि बनवाएगा, जिससे कि इन सरोवरों और तालाबों को बारिश के पानी से भरा जा सके। एक समाचार ये भी है आपके लिए कि UPI भुगतान गेटवे का उपयोग करके EPF से अब पैसा निकालने की सुविधा देने को लेकर परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जिसके तहत EPF के एक निश्चित हिस्से पर रोक रहेगी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI का उपयोग करके उनके बैंक खातों के माध्यम से निकाला जा सकेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। अब आप पैसे निकालेंगे तो सही, लेकिन उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये आपने सोचा है कि अगर आपको कहीं पैसे खर्च करने हो तो फिर आप कैसे खर्च करेंगे?

तो दोस्तों, आप भी अगर अपने पैसों को किसी के ऊपर खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप उन पैसों को कमाएं, यानी कि खर्च करने के लिए आपको कमाना ज़रूरी है। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास हो। अब कमाने के लिए रोज़गार की ज़रूरत है और रोज़गार की जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो पेपर पेन आपके पास होगा, सबसे पहले आप लिख लीजिए वेबसाइट। एक वेबसाइट आपको बता रही हूँ, नोट करिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की ये वेबसाइट है, rrbcdg.gov।

rrbcovin. रिपीट कर रही हूँ आपके लिए दोबारा से, rrbcdg.gov.in. अब रेलवे भर्ती बोर्ड में तकनीशियन के साथ साथ लगभग 6,500 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और इसकी अंतिम तिथि आपको बता दूं 29 जुलाई 2026. आयु सीमा है कम से कम 18 और अधिक से अधिक 36 वर्ष के लोग इन पदों के लिए आवेदन पत्र अपने भेज सकते हैं. वेबसाइट जो मैंने आपको बताई rrbcdg.gov.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने आवेदन पत्र मतलब आवेदन भेज सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एक दूसरी वेबसाइट नोट कीजिए जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ये वेबसाइट है dpcc.delhi.gov.in. मैं फिर से बता दूं, ये वेबसाइट है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की, वेबसाइट है dpcc.delhi.gov.in. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के द्वारा ट्रेनी के साथ साथ अन्य पदों के लिए 150 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं. अंतिम तिथि है 6 जून 2026 और पात्रता के अंतर्गत आपके पास अगर बीई यानी कि इंजीनियरिंग की अगर आपके पास डिग्री है, बीटेक है या अन्य निर्धारित योग्यताएं इनके साथ साथ भी आपके पास होनी चाहिए. तो अगर आपने इंजीनियरिंग से डिग्री की है या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो फिर आप इस पद के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं. अब देखिए, आपको रोज़गार मिलेगा और आप पैसे कमाएंगे तो खर्च कहाँ करेंगे ये आप सोचिए. हम ये सोचते हैं कि हम अगले प्रोग्राम में आपके लिए क्या लेके आएंगे. दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त रीना को. नमस्कार, जय हिंद.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:15 हो गए हैं। श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। हरमीत सिंह पुत्र हरभजन हमें सूचित करते हैं कि जक्षनदीप कौर, जिनकी उम्र 17 वर्ष है, ये 29 अप्रैल सन 2026 से रात 12 बजे से लोहंगापुर गुरुद्वारे से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र आपको एक बार फिर से बता दें, 17 वर्ष है। इनका कद करीब 5 फीट है। इनका रंग गोरा और इनका चेहरा गोल है। इनकी आंखें सामान्य हैं और इनकी शारीरिक बनावट इकहरे किस्म की है। जब ये लापता हुई थी तब इन्होंने सलवार कुर्ता पहन रखा था। इनके विषय में यदि कोई भी सूचना हो तो कृपया इस पते पर दें। हरमीत सिंह पुत्र हरभजन, लोहंगापुर गुरुद्वारा, थाना खुहार, श्यामपुर। विलुप्त व्यक्ति के संबंध में अगर कोई सूचना हो तो आप इस संबंधित फोन नंबर पर भी दे सकते हैं। कृपया नोट कर लें। नंबर इस प्रकार है 7607637001, यानी 7607637001। खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन।

0: चिकित्सा अधीक्षक एस जे पी जी आई एम एस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक संबंधं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयं अकुर्वताम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। डीआरडीओ इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् ईडन गार्डन्स् इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं कोलकाता नाइट राइडर्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वं आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरम् उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदी

0: तर उष्ण तरङ्गस्य स्थितेः सम्भावना प्रकटिता अस्ति। आईएमडी इत्यस्यानुसारं आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रांतरे असम, मेघालय, केरलम, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडा वार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।
1: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: पंचो जय हिंद।
4: हिमांशु भैया।
3: हाँ रियाज भैया।
4: देखो हम पंच जब खेती पाती करी थे तो हम सब के ये प्रयास रहा था कि कैसे जो है 2 पैसा के अतिरिक्त आमदनी हुए, और अपन सरकार भी ये प्रयास में है कि जितने अपने किसान भाई बहन हैं उनका जो है आमदनी बढ़े। तो आमदनी बढ़ावे के लिए हम पंच का जो है खाली जो है पारंपरिक रूप से जो खेती करी थे एक नहीं करे का है, बल्कि कुछ आगे बढ़ के सोचे का है।
3: बिल्कुल भैया, अपने बैठकी में यहाँ वैज्ञानिक भैया उदिन आ रहे हैं तो बता रहे हैं समन्वित कृषि प्रणाली जो है वह बहुत बढ़िया तकनीक है। अगर इस तरीके से किसान भाई अपन खेती पाती करें तो जो है बहुत ज्यादा लाभ हो सकत है।
4: बिल्कुल भैया, बात की हो समन्वित कृषि प्रणाली के तो यही उद्देश्य है कि हम पंच जो अपने खेती पाती करी थे उसके साथ में जो है कृषि से संबंधित जो और व्यवसाय है उन्हों का जोड़ के काम करिए, तो जो अतिरिक्त आमदनी है वह जुगाड़ भी हो जाता है और साथ साथ में अपन खेती पाती भी प्रभावित नहीं होता।
3: बिल्कुल भैया, जैसे खेती के साथ में यहाँ पशुपालन है, डेयरी है, या बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, या मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, और बागवानी जैसी चीजें साथ में यहाँ कीनी जा सकती हैं।
4: बिल्कुल, साथ में कीनी जा सकता है और सब व्यवसाय जो है एक दूसरे के
3: जोड़
4: पूरक हैं।
3: हाँ, बिल्कुल,
4: और एक दूसरे के साथ में जो है सहायक हुआ था। हम पंच जैसे खेती पाती करी थे तो जो उनके अवशेष निकला थे, अगर हम पंच जो है पशुपालन करी थे तो अपने पशुअन के जो है हराहा गोरु के चारक रूप में काम में आए जाते, और जो अपने हराहा गोरु है जो उनके गोबर है वो अपने खेती में जो खाद के काम में आए जाते।
3: बिल्कुल भैया, और सबसे बढ़िया बात यह रहा थे इमा कि किसान के आमदनी पूरा साल होत रहा थे।
4: हाँ, अच्छा एक चीज और है।
3: हाँ।
4: कि कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है।
3: हाँ भैया,
4: तो अपने जो उन किसान भाई बहन है कि उनके लिए जो है कौन संगठन है, तो सरकार तमाम तरीके का ऐसी योजना चलावा करत है कि आपन जो किसान भाई बहन है वो मजबूत हुए।
3: बिल्कुल
4: तो
3: भैया,
4: यही लिए किसान उत्पादक संगठन जो है एक ऐसी योजना है कि अगर हम पंच जुड़ के जो है वो संगठन बनाए ली थे, जुड़ जाए थे, तो तमाम ऐसी जो आगे आने वाली परेशानी है उसे निजात मिल जाता है। और

0: एक दूसरे के सहायता मिल जात है, दूसरे की सहायता कर सके तो
1: बिल्कुल भैया, बहुत सारे अपन पंच भाई किसान भाई बढ़िया संगठन बनाए काम कई भी रहे हैं। अहिमा कह रहा थे कि सब लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छे स्तर पर, चाहे वही का चाहे गेहूं मान लो दलिया बनाना है, या जैसे आम का सीजन चल रहा है, आंधी तूफान है, जत्ते आम है, बिन बिन वही का काट के यहाँ अचार बना दिन,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही बात
1: अहिमा
0: करो।
1: काम बट जाते और आमदनी बढ़ जाते हैं।
0: आमदनी बढ़ जात है, और दूसरी चीज़ है कि अगर हमों का पंच का जो है को पैसा कौड़ी की जरूरत रहता है तो वह
1: हाँ
0: मिल जात है।
1: बिल्कुल भैया, सरकार उनका हर तरीके से सहयोग करते हैं और इस खाली विशेष तौर पर जो है किसान उत्पादक संगठन खातिर बहुत बढ़िया योजनाएं
0: तो
1: हैं।
0: ये तो है ही भैया। मूल देखो, आज है बुधवार और आज के दिन हेलो किसान कार्यक्रम का इंतजार हम सब पंचन कर रहा थे। कहे जे कि हम ऐसे ऐसे विशेषज्ञ आवत हैं कि जो न अपन समस्या रहते हैं वह के समाधान जो सीधे फ़ोन के माध्यम से प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: आज जो बुधवार है और आज के हेलो किसान कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ हैं वो स्टूडियो में आ चुके हैं, तो परिचय पहले डॉक्टर साहब के करा दिन जाए।
1: हाँ
0: रोहित श्रीवास्तव साहब हैं जो कि उप महाप्रबंधक हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड लखनऊ में, और कार्यक्रम के प्रस्तुति और संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। और
1: बिल्कुल
0: आज के जो विषय है वो बता दीजिए।
1: भैया, आज का विषय है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि आधारभूत फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाबार्ड से देय सुविधाएं।
0: और ये तो है ये है, और आज के जो फ़ोन नंबर है वो बता दीजिए, वही पुराना वाला है
1: हाँ
0: 0522, यानी कि 0522 2238825।
1: बिल्कुल
0: ई नंबर पे फ़ोन मिलाएं अपने किसान पंच, सीधे जो है विशेषज्ञ से बात करें। और अब देखो देर न कीजिए, चला जाए सीधे डॉक्टर साहब के पास में और कार्यक्रम के शुभारंभ कीन जाए।
1: बिल्कुल भैया,
2: धन्यवाद हिमांशु, रियाज भैया नमस्कार। किसान भाइयों बहनों, हर बुधवार की तरह एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, आज विशेषज्ञ हैं रोहित श्रीवास्तव साहब, जो नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक उत्तर प्रदेश में हैं, उसके उप महाप्रबंधक हैं। श्रीवास्तव साहब, आपका कार्यक्रम हेलो किसान में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब।
2: और अब से लेकर के 7:20 तक आप हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे कार्यक्रम हेलो किसान के सजीव प्रसारण में, और किसान भाइयों बहनों के लगातार फोन आएंगे। आज का फोन इन का नंबर बता दें, 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। और किसान भाइयों बहनों से निवेदन है कि जैसे उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कृषि रक्षा रसायन और सिंचाई के लिए आपको धन चाहिए, और वो धन जब बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिले, आसानी से कैसे मिले, इस पर हम लोग बात करेंगे। केसीसी से आगे ई केसीसी क्या है यानी ई किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में बात करेंगे। किसान उत्पादक संगठन जो आज सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, यानी उत्पादक के साथ साथ उसकी मार्केटिंग कैसे अच्छी हो और बाजार अच्छा कैसे मिले, आमदनी कैसे बढ़े, इस पर हम लोग बात करेंगे। और पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे, और नाबार्ड से कौन कौन सी सुविधाएं किसान भाइयों बहनों के लिए उपलब्ध हैं, उनके खेत तक, उनके गांव तक, उस पर बात करेंगे। श्रीवास्तव साहब, आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल पूछें उसके पहले एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्ते
3: नमस्कार,
2: भैया, अपना नाम बताएं।
3: विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से।
2: बहुत स्वागत है विनीत कुमार भैया। आज का सवाल नाबार्ड के विशेषज्ञ हैं रोहित श्रीवास्तव साहब, जो उप महाप्रबंधक हैं, उनसे
3: जी
2: सवाल कोई बैंक से जुड़ा हो तो पूछें।
3: जी, सवाल है मेरा ये कि जो फार्मर आईडी बनी है किसानों की,
2: हाँ,
3: तो उस पर क्या क्रेडिट कार्ड बन सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे क्या इसमें?
2: जिज्ञासा है, श्रीवास्तव साहब बताएं।
1: सबसे पहले धन्यवाद। और विनीत जी, आपकी जो फार्मर आईडी बनी है ये कृषि विभाग द्वारा बनाई गई है,
2: जी, किसान रजिस्ट्री के माध्यम,
1: किसान रजिस्ट्री के माध्यम से। तो आप ये बताइए कि जब आपने ये आईडी बनवाई थी तो आपके यहाँ जाके विजिट हुआ होगा, आपके डिटेल लिए गए होंगे, उसके बाद आपकी आईडी बनी होगी,
2: जी,
1: ठीक है। तो अगर आपकी आईडी सरकार द्वारा बनाई गई है और इन इन मतलब इन चीज़ों के माध्यम से बनाई गई है जो मैंने बताई, तो आप बैंक जाके अपने आईडी के माध्यम से, बिकॉज आप, क्योंकि आपका जो आईडी है वो सिर्फ आपका आईडी नहीं है, वो आपकी जमीन के लिए

0: ही आईडी है
1: जी,
0: तो आप उसका प्रयोग करके केसीसी बनवा सकते हैं।
1: यानी कितनी जमीन है सब एक जगह,
0: सारा ब्यौरा उस आईडी के माध्यम से। सरकार ने इस तरीके की योजना बना रखी है कि उस आईडी के माध्यम से आपका नाम, आपका खसरा खतौनी, आपका जो भी ब्यौरा है, तो इसलिए आप उसमें केसीसी बनवा सकते हैं।
1: यानी अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करें,
0: नजदीकी बैंक से तुरंत संपर्क करिए और जाके इसका जो है इस आईडी के माध्यम से अपना आप लोन ले सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद विनीत कुमार भैया। और दूसरे कॉलर भी टेलीफोन लाइन पर हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हेलो।
2: हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, राम शंकर यादव भैया
2: जी साहब,
1: भरावन हरदोई के एक जागरूक किसान हैं, क्या जानना चाहेंगे?
2: सर हमारा प्रश्न ये है कि सर मैं केसीसी बनवाना चाहते हैं
1: जी,
2: हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं इसलिए।
1: अच्छा, केसीसी पर बात करेंगे रोहित श्रीवास्तव साहब, लेकिन ये बताइए कि आपके गांव में किसान उत्पादक संगठन बना है कि नहीं? अभी
2: सर नहीं बना है
1: जी। श्रीवास्तव साहब,
0: हाँ रामशंकर जी, ये बताइएगा कि आपके नाम पे जमीन है?
2: जी है।
0: तो आप अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करके आप केसीसी का आवेदन उनको दे दीजिए। और अब तो ई केसीसी की सुविधा भी जो है वो नाबार्ड और सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है, तो आप केसीसी जो है अपना आप तुरंत बनवा सकते हैं, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता
1: जी।
0: तो इसलिए ये प्रश्न अब मतलब इस प्रश्न को पूछिए नहीं, आप इस पर कार्यवाही कर दीजिए, जाके आप अपना केसीसी बनवा लीजिए।
1: यानी नजदीकी
0: बैंक से संपर्क करें और अब उनका जो भी जमीन का जो इनके नाम पर है जमीन का विवरण होगा, जमीन के विवरण के आधार पर इनका केसीसी तुरंत बना दिया जाएगा। और जो किसान कृषक उत्पादक संगठन की बात की, तो हरदोई में केंद्र सरकार की योजना के तहत भी और नाबार्ड की योजना के तहत भी कृषक उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। आप वहां के संबंधित जो जिला विकास प्रबंधक है नाबार्ड के, उनसे संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं और उनका लाभ भी ले सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद रामशंकर यादव भैया। आप चूंकि जागरूक किसान हैं तो उत्पादक के साथ साथ एक अच्छी मार्केटिंग भी आपको करनी है और सभी किसानों को जोड़ करके करनी है
0: जी, बिल्कुल,
1: तब जाकर के किसान उत्पादक संगठन की ताकत दिखेगी। बहुत धन्यवाद। आप FPO भी बनाइए और KCC भी लीजिए और EKCC की भी बात कराएंगे
0: और वहां के जिला विकास प्रबंधक महोदय से आप जरूर मिलिएगा नाबार्ड के।
1: एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर और हैं। हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ नाम बताएं भैया।
3: डॉक्टर साहब
1: अच्छा, ललहुआ किसान रेडियो क्लब लखीमपुर खीरी के किसान हैं, अपना नाम बता दें।
3: विजयपाल यादव।
1: विजयपाल सिंह यादव, क्या सवाल है आपका आज?
3: डॉक्टर साहब हम PM फसल बीमा योजना के बारे में जानना चाहते हैं, यदि हम फसल बीमा योजना करवाएं
1: जी,
3: तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा और इससे क्या लाभ होगा?
1: यानी अभी तक आपने फसल बीमा का लाभ नहीं लिया, KCC है कि नहीं आपके पास?
3: नहीं लिया, हम इसी बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब।
0: यादव जी, आप फसल कौन सी, किस फसल पे आपने KCC लिया हुआ है?
3: अब वो फसल हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मेन तो गेहूँ धान गन्ना ही है,
0: क्योंकि गन्ना जो है वो चिन्हित फसल नहीं है। और अगर गेहूं धान पर आपने केसीसी लिया हुआ है
1: जी,
0: आप कहीं भी मत जाइए, आप सीधे अपने बैंक जाइए और ब्रांच मैनेजर साहब को बोलिए मुझे फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा दें
1: जी।
0: और अगर वहां से आपको, वैसे तो वो कर देंगे तुरंत,
1: हाँ,
0: लेकिन वहां से अगर आपको लगता है कोई भी संशय अगर रहता है तो अपने जिला के जिला कृषि अधिकारी से तुरंत आप मिल लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस समय जितने भी बैंक, नाबार्ड या राज्य सरकार, स्वयं मंत्री जी, सब लोगों के बीच में इतना ज्यादा इस चीज को लेकर बढ़ावा देने की तरफ जोर चल रहा है कि ये कार्य आपका त्वरित कार्यवाही के तहत किया जाएगा।
1: और एक निर्धारित तारीख होती है जैसे खरीफ फसलों के लिए, उसके पहले ही आप बैंक से संपर्क करें।
0: बिल्कुल, आप बैंक से, आप तो कल ही आप बैंक से संपर्क कर लीजिए, तो जो आपकी संबंधित फसल के, अगर गन्ना है, गन्ने पे केसीसी बना है तो वो चिन्हित फसल नहीं है,
1: हाँ, फसल बीमा के अधीन नहीं आता है।
0: तो अगर आपका कोई भी और फसल है, धान या गेहूं अगर है, तो वो उसमें चिन्हित हुआ है, तो आप उसका फसल बीमा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद विजयपाल यादव भैया ललहुआ लखीमपुर खीरी से। श्रीवास्तव साहब, आज हेलो किसान में किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, बीच बीच में किसान भाइयों बहनों के फोन आएंगे, ये केसीसी का लाभ बहुत सारे किसान भाई बहन अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, उनको केसीसी के बारे में समझा दें।
0: सबसे पहले तो मैं औपचारिक रूप से समझ

0: कृषि जहां भी आकाशवाणी की वाणी पहुंच रही है उन सभी
1: किसान भाइयों बहनों को
0: पहले तो मैं नमस्कार बोल दूं अपनी तरफ से, तब मैं सवाल का जवाब देता हूं।
1: जी
0: देखिए, केसीसी जो है वो सिर्फ एक ऋण नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए वो आपका अधिकार है जो सरकार के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों तक ऋण बहुत कम दरों में पहुंचे, ताकि जो हमारे पूरे के पूरे तंत्र के आधारभूत है कृषि
1: जी,
0: उसमें वो अच्छे से किसान उसको कर पाए, कोई संशय उसको ना रहे, और कृषि से ही सारे जो व्यवसाय जुड़े हुए हैं वो आगे बढ़ पाए, पहली चीज। दूसरा, किसी भी, जैसे भी मैंने अभी कृषक भाई को सुना अपने कि भाई वो पूछ रहे थे कि केसीसी बनवाना है उन्हें
1: जी,
0: तो अगर हम आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब इसकी जो जानकारी है वो विस्तार रूप से विस्तृत रूप
1: अभी भी जरूरत है,
0: अभी जरूरत है इसके लिए। अपने जो निकटतम बैंक है आपका, आप सभी कृषक भाई बहन जिनका केसीसी नहीं बना है, आप उनसे तुरंत संपर्क करिए, अपने जो जमीन का ब्यौरा है, खसरा खतौनी, वो डिटेल आप, वो विवरण आप उनके
1: किसान
0: पास
1: भाई
0: ले जाइए किसान भाई, और बैंक के जो अधिकारी उनको बोलिए कि आपका केसीसी बनाया जाए, और आपका केसीसी बनाया ही जाएगा, ये आपका अधिकार है, तो अधिकार की तरह ही इसे प्रयोग करें।
1: तो इसकी पात्रता क्या है, क्योंकि जिसके नाम से जमीन है केसीसी उसी को मिलेगा?
0: जी, असल में क्या है, अभी जो हमारे यहाँ तंत्र में ये है कि जिसके नाम पे जमीन है उसको मिलता है, साथ में उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो दिशा निर्देश है उसमें आपको टेनेंट फार्मर और लेसी फार्मर, जो हमारे समझ लीजिए जो बंधुआ मजदूर हैं, या बंधुआ शब्द तो गलत होगा, हाँ, ना, जो मतलब उस पे मतलब किराए पे लेके,
1: हाँ, किराए पे लेके जमीन खेती
0: जमीन
1: कर
0: की
1: रहे
0: खेती कर रहे हैं, उनको भी केसीसी इशू करने का रिजर्व बैंक के द्वारा दिशा निर्देश है।
1: ये बात आगे बढ़ेगी, लेकिन एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो,
2: हेलो
1: भैया, नाम बताएं।
2: झगड़ू,
1: हाँ झगड़ू भैया, कहाँ से? जी बहुत स्वागत है झगड़ू भैया, बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। ये बताएं कि आगे खरीफ की तैयारी में क्या है कर रहे हैं? तो बेहन कब तक डालेंगे? अच्छा ये बताइए कि आपका केसीसी है कि नहीं? अच्छा, फार्मर रजिस्ट्री हो गई आपकी?
2: लेकिन
1: क्या सभी खेत नहीं जुड़ा है क्या? श्रीवास्तव साहब, इन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है, कई बार कुछ किसान भाई अगर कोई खेत का रकबा छूट जा रहा है फार्मर रजिस्ट्री में, आगे चल करके खाद और बीज उसी के आधार पर मिलनी है, तो ये समस्या आ रही है।
0: अगर आपका, अगर आपकी रजिस्ट्री के समय पे आपका कोई रकबा छूट गया है,
1: हाँ, तो,
0: तो अपने जिला कृषि अधिकारी से तुरंत संपर्क करके आप उस रकबे को जुड़वा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छूट गया है तो वो
1: नहीं,
0: आपका
1: वो
0: अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसको आप जुड़वा सकते हैं, और आपका जो खाद बीज निर्धारित रूप से मिलता है अगर आप वो जमीन के कागजात आप ही के नाम पर है,
1: हाँ,
0: और किसी भी तकनीकी जरूरत की वजह से छूट गए हैं, तो आपका अधिकार उसमें खत्म नहीं होगा।
1: आप अपने ब्लॉक के राजकीय कृषि बीज भंडार पर या जो सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं, हर ब्लॉक स्तर पर,
0: हर ब्लॉक,
1: वहां से भी संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगे,
0: वो अधिकार है आपका, उससे आप वंचित नहीं रहेंगे।
1: बहुत धन्यवाद झगड़ू भैया, आप अपने गांव में किसान रेडियो क्लब बनाएं, गांव के सभी किसान भाइयों बहनों को कार्यक्रम हेलो किसान सुनवाएं, और अगर उनके भी सवाल हैं खेती किसानी बागवानी और पशुपालन से जुड़े तो हेलो किसान तक जरूर पहुंचाएं। श्रीवास्तव साहब, लगातार फोन किसान भाइयों बहनों के आ रहे हैं,
0: मेरा सौभाग्य है,
1: और आपको हर सवाल का जवाब देना है, और आप दे भी रहे हैं। एक किसान भाई और जुड़े हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हेलो, हेलो,
3: हेलो
1: भैया, नाम बताएं।
3: अशोक कुमार।
1: कहाँ से?
3: हरदोई से।
1: क्या सवाल है भैया?
3: सवाल सर ये है, हमारा, हमने केसीसी लोन लिया था
1: जी,
3: तो उसमें हमने ओटीएस के माध्यम से

0: समझौता किया
1: अच्छा।
0: और पैसा भी दे दिया, ओटीएस भी हो गया। अब मैनेजर साहब कहते हो पैसा जमा करिए।
1: क्या पूरा पैसा नहीं जमा किया क्या आपने?
0: ना पूरा सर 1,10,000 पर सेटलमेंट हुआ था, एक उसमें जमा किया था
1: जी
0: और ओटीएस फार्म भरा, उस पर भी दस्तखत बिल सब वाउचर लगवाए उन्होंने।
1: श्रीवास्तव साहब,
0: जी
1: इनकी
0: बिल्कुल
1: मदद कैसे करेंगे?
0: अशोक जी, आपने जब अपना ओटीएस का जो भी उसमें अमाउंट था, जो भी रकम थी, वो आपने जब पूरी भर दी, तो बैंक की तरफ से आपको कोई कागजात दे दिया गया था कि आपका ओटीएस के तहत में इस चीज़ को पूरी तरीके से
1: वारा
0: निस्तारित
1: नारा
0: कर
1: हो
0: दिया
1: गया
0: गया
1: है।
0: है? हाँ, कोई आपको कागजात अभी तक दिए गए हैं?
1: हाँ उस तहसील से हमको जो रसीद कर मिली थी वो मिल रही है
0: नहीं, रसीद नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
1: बैंक
0: बैंक की
1: से।
0: तरफ से कोई कागजात ये लिख के मिला है कि आपका ये बकाया राशि ओटीएस के माध्यम से सब कुछ
1: सेटल हो गई,
0: सेटल हो गया है, क्लियर हो गया है, और अब आप बैंक की तरफ आपका कोई भी बकाया नहीं है, ऐसा आपको पत्र दिया बैंक
1: कन्फर्मेशन
0: ने अभी
1: नहीं
0: तक?
1: मिला है।
0: नहीं मिला है। आप एक बार वहां के ब्रांच मैनेजर से बात कर लीजिए, नहीं अगर आपका ये निस्तारण होता है तो वहां का जो जोनल ऑफिस होगा या LDM ऑफिस होगा आपके
1: यानी
0: जनपद का, हरदोई का,
1: हाँ,
0: वहां पर आप इसकी शिकायत कर सकते
1: यानी
0: हैं
1: अग्रणी जिला प्रबंधक हर
0: प्रबंधक
1: जनपद
0: को।
1: में है।
0: जी, और अगर आपका निस्तारण वहां भी नहीं होता है तो जिलाधिकारी महोदय के पास में आप अपने सभी जो आपके पास वाउचर वगैरह रखे हैं उनकी प्रति लगा के आप उन पे एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
1: जरूर
0: जी,
1: सुनवाई होगी और आपको आगे KCC का
0: नहीं,
1: लाभ
0: कोई
1: मिलता
0: भी,
1: रहेगा।
0: मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी कृषक अपने आप को ये ना समझे कि वो सशक्त नहीं है,
1: जी
0: आप ही लोग सशक्त हैं तभी देश चल रहा है।
1: हाँ, बहुत
0: जी
1: धन्यवाद अशोक भैया हरदोई से। और हम लोगों की बात चल रही थी KCC की,
0: जी
1: तो KCC में जो पात्रता की बात हो गई, लिमिट का निर्धारण है वो क्या खेत की जोत के हिसाब से?
0: देखिए, KCC का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो दिशा निर्देश है उसमें बहुत क्लियर सा एक मैथ्स है, जिसमें गणित जो लगाया गया है गुणा का, कि आपका जो भी फसल है उस फसल की जो वित्तमान तय होता है वो वित्तमान आपके जोत के जो आपका वर्ग है, जो
1: जी
0: एरिया है,
1: हाँ,
0: उससे गुणा कर दिया जाता है,
1: अच्छा
0: फिर उसमें एक 10% 20% का जो कंपोनेंट होता है वो करके आपका फाइनल KCC तय किया जाता है,
1: लिमिट
0: लिमिट
1: यानी
0: तय आपकी
1: जमीन
0: तय
1: के
0: की।
1: हिसाब से।
0: हाँ, जोत के आकार के साथ,
1: एक
0: जोत के
1: किसान
0: हिसाब से।
1: भाई इस
0: जी
1: बीच
0: बिल्कुल
1: लाइन पर हैं। हेलो,
2: जी सर,
1: अपना नाम बताएं भैया, कहाँ से?
2: सुशील सर, आपको ढेरों शुभकामनाएं मेरी ओर से।
1: बहुत धन्यवाद भैया, अपना नाम तो बताएं, कहाँ से आप फोन कर रहे हैं?
2: सर डॉक्टर साहब को मेरी ओर से हृदय से साधुवाद, आपको, आपकी टीम को। मैं बबलू यादव, मोहनलालगंज, लखनऊ, ग्राम धनवा सांड से सर।
1: अच्छा, धनुआ सार से बबलू यादव भैया, आप लगता है कि एक जागरूक किसान हैं, क्या सवाल है आपका?
2: जी सर, मैं खेत फार्मर हूँ, मैं खेती ही करता हूँ।
1: लेकिन रेडियो सेट से थोड़ा दूर होके बात करेंगे तो आपकी
2: आवाज
1: आवाज
2: कम
1: से।
2: कर दो, उसका
1: जी
2: आवाज कम कर दीजिए सर।
1: सवाल पूछिए।
2: सर सर मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि मैंने क्रेडिट कार्ड से कुछ मैंने लोन लिया फसल के लिए सर,
1: हाँ,
2: एक बार मेरा ऐसा मैंने बेबात किया और वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे नौरूज ना दे करके मेरा, अभी यही जनवरी में सर मेरा एक चपरासी वहाँ से आया और कहने लगा आपका कुछ वहाँ वो इसका रेन्यूअल करवा लीजिए सर।
1: अच्छा, KCC का रिन्यूअल कर लीजिए।
2: हाँ KCC अपना रेन्यूअल करवा लीजिए, क्योंकि सर मुझे लेना नहीं था उसमें। फिर जब आप पिताजी मेरे वहाँ बैंक गए तो मेरा वहाँ 4,500 रुपये ब्याज लगा दिया, पता नहीं किस तरीके से मैंने दे लेकर के सर उसको खत्म किया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा सिसेंडी पड़ता है।
1: अच्छा, क्या
0: नहीं,
1: करें?
0: इसमें देखिए, आप
1: बैंक
0: पहले
1: ऑफ
0: तो
1: बड़ौदा सिसेंडी का
0: जी
1: मामला।
0: देखिए बाबू, आप इसमें सबसे पहले लिखित तौर पे उनसे कहिए, लिखित तौर पे उनसे मांगिए कि आपके यहाँ जो भी ऋण, मतलब जो भी ब्याज वगैरह लगाया गया है उसका ब्यौरा दें, और अगर आप उस ब्यौरे से संतुष्ट नहीं हैं तो जो आपके अग्रणी जिला प्रबंधक हैं
1: लखनऊ जनपद
0: लखनऊ
1: के,
0: जनपद के ही, वहाँ, अब लखनऊ में चूंकि आप हैं, ये मोहनलालगंज में से ही आप बात कर रहे
1: हाँ,
0: हैं,
1: बैंक ऑफ
0: तो
1: इंडिया,
0: बैंक ऑफ बड़ौदा के
1: अच्छा
0: शायद।
1: बैंक ऑफ
0: हाँ,
1: बड़ौदा।
0: तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो यहाँ पे आपका जोनल ऑफिस है, जो आंचलिक कार्यालय होता है, आप उसमें जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे तुरंत मिलके इसमें एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप, जो भी मैं किसान बंधुओं को सुन रहा हूँ, उनकी कोई ना कोई बैंक

0: प्रणाली से संबंधित शिकायतें हैं
1: जी,
0: तो उनको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक दिशा निर्देश जारी किया हुआ है कि आपकी शिकायत आपके जब आप बैंक में करते हैं तो किस स्तर पे कितने दिन में उसका निस्तारण हो जाना चाहिए
1: जी।
0: अगर वो निस्तारण नहीं होता है तो बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तो मेरा किसान भाइयों से यही है कि कृपया, और ये भी दिशा निर्देश है कि ये सूचना, ये जानकारी किस बैंक ब्रांच में उस जगह पे लगाई जाए जहां पर वो सबको देखी और पढ़ने में आसानी हो पाए
1: जी।
0: तो समस्त किसान बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया करके ये, अगर आपकी कोई भी शिकायत है तो शिकायत का निस्तारण करने का जो उसमें तरीका दिया हुआ है उसको आप लोग अपनाएं और आपकी शिकायत का निस्तारण जरूर होगा।
1: और अब तो बैंक लोकपाल भी,
0: हाँ हाँ हाँ, वो भी मैंने बताया ना,
1: लेकिन
0: स्तर है,
1: एक स्तर है और
0: एक
1: चैनल
0: स्तर है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें दिन निर्धारित है।
1: रोहित श्रीवास्तव साहब, एक छोटा सा अंतराल है, उसके बाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।
2: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: कार्यक्रम हेलो किसान के दूसरे चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। आज नाबार्ड लखनऊ से उप महाप्रबंधक रोहित श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है, चाहे केसीसी से संबंधित, किसान उत्पादक संगठन से संबंधित, या कृषि आधारभूत फंड का लाभ लेना चाहते हैं, या पीएम फसल बीमा योजना, या नाबार्ड की सुविधाओं के बारे में, तो ज़रूर फ़ोन करें। आज का फ़ोन इन का नंबर है 0522-223-8825, यानी 0522-223-8825। डीजीएम साहब आज एक बार फिर दूसरे चरण में भी आपका स्वागत है, और एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो
5: हेलो
4: भैया, नाम बताएं।
5: सर मैं दिनेश कुमार ग्राम जवर से बोल रहा हूँ सर, जिला हरदोई।
4: बहुत स्वागत है दिनेश कुमार भैया, बताएं क्या सवाल है।
5: सर हम आंखों से 100% विकलांग हैं सर।
4: अच्छा,
5: और हम खेती का किसान मालिक किसान कार्ड बनवाना चाहते हैं।
4: अच्छा, आपके नाम से जमीन है?
5: जमीन है लेकिन पक्के बीघा भर है, ऊपर नहीं है सर। कितने से कितने तक बन सकते?
4: पक्के बीघा है, जमीन है एक बीघा इनके पास जमीन है, क्या केसीसी बन जाएगा?
6: आपके नाम पे जमीन होना ये जरूरी है।
4: हाँ,
6: कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
4: अब जितनी जमीन होगी उसके हिसाब से
6: आपका लिमिट तय कर दिया जाएगा, और जमीन कम है ज्यादा है ये कभी पैमाना बना ही नहीं केसीसी के लिए
4: जी।
6: तो आप अपनी जो शाखा है वहां संपर्क करके केसीसी बनवा सकते हैं,
4: यानी नजदीकी जो भी बैंक है आपका, राष्ट्रीयकृत बैंक है, ग्रामीण बैंक है,
6: कोई भी बैंक
4: या सहकारी बैंक
6: इनका से? हाँ हाँ, इनका खाता होगा जरूर
4: जी,
6: और जहां भी इनका खाता है वो जितना मेरा अंदाजा है वो इनके निकटतम, मतलब इनके समीप ही होगा।
4: हाँ।
6: तो

0: हाँ, इनका खाता है, वहां संपर्क करके, और कोई भी बैंक, चाहे सहकारी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, राष्ट्रीयकृत बैंक तो है ही, तो कोई भी बैंक से आप अपना केसीसी बनवा सकते हैं।
1: एक किसान भाई और लाइन पर हैं।
0: जी
1: हेलो हेलो,
0: हेलो
1: नाम बताएं भैया,
2: हेलो,
1: नाम बताएं अपना।
2: अंबरलाल यादव बोल रहे हैं।
1: अंबर लाल यादव भैया, श्रावस्ती से।
2: जी
1: रेडियो
2: जी जी
1: सेट से थोड़ा सा दूर हो जाएं, सवाल पूछें।
2: सर, हम प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा?
1: ये बताइए कि आप धान की खेती खरीफ में, धान के लिए ना?
2: हाँ, धान की खेती होती है सर।
1: हाँ
0: अंबर जी,
2: जी,
0: आपको, आपने केसीसी ले लिया अभी?
2: जैसे सर मेरे पिताजी के नाम थी, वो तो एक्सपायर कर चुके सर।
0: नहीं, जमीन आपके नाम पे स्थानांतरित हो गई?
2: हाँ, जमीन मेरे नाम से आ गई है।
0: तो अगर जमीन आपके नाम पर आ गई है, तो जमीन के कागजात के उस पे आप अपना केसीसी बनवा लें, और जिस समय आप केसीसी बनवा रहे हो, आप शाखा प्रबंधक को बोल दीजिए कि मेरा जो पंजीकरण है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी कर दीजिए,
1: जी,
0: आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं
1: यानी
0: पड़ेगी।
1: किस्त कट जाएगी बीमा की?
0: बीमा की किस्त बहुत मिनिमम है, उसमें
1: जी,
0: बहुत ही न्यूनतम पर
1: मतलब
0: है।
1: केसीसी के
0: हाँ,
1: खाते से कट जाएगी।
0: केसीसी जिस समय करेंगे उसी समय इनका वहां एनरोलमेंट हो जाएगा, इनकी बीमा राशि, इनकी जानकारी के साथ ही इनकी
1: जी,
0: बीमा राशि जो भी होगी वो कट जाएगी, और साथ में इनका लोन भी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे।
1: बहुत सारे किसान भाई जिनका केसीसी नहीं है,
0: जी
1: अगर वो पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो
0: नहीं, उसमें भी वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं
1: अलग
0: ले,
1: से उनको प्रीमियम
0: अलग
1: जमा
0: अलग से
1: करना।
0: प्रीमियम वाला है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो कुछ चीज़ें होती है थ्योरेटिकल, कुछ प्रैक्टिस वाली होती है।
1: जी
0: प्रैक्टिस में है कि केसीसी के साथ में ये माना जाता है कि भाई आपकी ज़मीन है, ज़मीन का एक ऋण है,
1: हाँ,
0: तो वो बैंक के साथ में उसका आना
1: टाई अप
0: जाना,
1: है।
0: मेल जोल जो है वो ज़्यादा रहता है। अगर आपका केसीसी नहीं है, आपकी ज़मीन है, तो भी आप फसल बीमा योजना का आप लाभ ले सकते हैं उसमें।
1: एक किसान भाई जुड़े हैं इस बीच। हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लोग केसीसी की बात कर रहे हैं, ये ई केसीसी क्या है, ई किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, और केसीसी से अलग कैसे है ये?
0: देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये कर दूं कि केसीसी से अलग नहीं है ये,
1: जी
0: बस ये है कि जैसे आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन हम मोबाइल में भी देखते
1: हर
0: हैं,
1: हाथ में है।
0: हर हाथ में है। आप कुछ भी नहीं देख रहा होगा तो वो यूट्यूब पे कोई वीडियो,
1: जी,
0: इंस्टा पे कोई वो देख, कोई भी वीडियो आता
1: एक
0: है,
1: तरह की जागरूकता
0: जागरूक।
1: बढ़ी।
0: तो इस तरीके से केसीसी का जो पूरा प्रकरण था, जिसमें पहले ब्रांच मैनेजर फिजिकल फॉर्म, मतलब एक कागज ले जाए,
1: फार्म
0: किसान
1: भरना,
0: उतना दूर जाए, इन सभी चीजों को, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए नाबार्ड की तरफ से ये ई केसीसी का एक जो है एक इनिशिएटिव लिया गया, और उसमें हम लोगों को उत्तर प्रदेश में भी और बाकी भी कई राज्यों में केंद्र, राज्य सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिला। और इसमें यह है कि आपका एक एप्लीकेशन के माध्यम से 5 मिनट के अंदर इसमें आपका लैंड रिकॉर्ड के साथ में जो भी आपका पंजीकृत होता है उसमें आपकी क्रॉप कौन सी है वो भी है, और वित्तमान भी उसमें पहले से जो निर्धारित वित्तमान है वो उसमें
1: उसी के
0: पहले से
1: हिसाब
0: रहता है।
1: स्वीकृत हो
0: तो
1: जाएगा।
0: तुरंत के तुरंत आपको 5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि आपकी कितनी राशि हो रही है और कितना आपका
1: लेकिन
0: ऋण
1: ये
0: है।
1: काम क्या डिजिटल करना है, मोबाइल के माध्यम से?
0: ये डिजिटल तरीके से करना है, और इसमें एक हमारे किसान भाइयों को के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि साहब हम तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए जो बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं उनको अवेयर किया गया, उनको इस बात के लिए वो किया गया है कि वो किसानों के साथ में खड़े होकर ये कार्य को तो कर दे।
1: ये बात आगे बढ़े,
0: जी
1: लेकिन एक
0: बिल्कुल।
1: किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: भैया, नाम बताएं।
2: हम कालिका बोल रहे,
1: कहाँ
2: ग्राम
1: से?
2: बिरंचा से, पोस्ट
1: अजिला,
2: सरैया सानी, जिला सीतापुर।
1: बहुत स्वागत है कालिका भैया कार्यक्रम हेलो किसान में।
2: हम
1: रेडियो
2: सर
1: सेट से
2: ग्रीन
1: थोड़ा
2: कार्ड के
1: दो।
2: लिए दिव्यांग दृष्टि बाधित हैं,
1: हाँ,
2: तो हम ग्रीन कार्ड के लिए गए बैंक में, तो कहीं ना आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि
1: आपके नाम
2: सरकार
1: जमीन
2: से नहीं मिल
1: है,
2: पाएगी।
1: आपके नाम
2: हाँ,
1: जमीन है,
2: जमीन है।
1: तब
0: देखिए,
1: ये ब्लाइंड भी हैं और जमीन भी है इनके नाम से।
0: कोई भी नियम ये नहीं कहता है कि किसी दृष्टि बाधित व्यक्ति को या किसी भी विकलांग व्यक्ति को, विकलांग तो गलत शब्द है, दिव्यांग
1: दिव्यांग,
0: व्यक्ति को कोई भी इस तरीके की चीजों से आपको नहीं रोक सकता है। अगर बैंक
1: हाँ,
0: बैंक मैनेजर आपका नहीं बना, क्रेडिट कार्ड नहीं बना रहा है, आप लिखित में उसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से

0: इसे कर दीजिए,
1: या आपने अग्रणी जिला प्रबंधक
0: प्रबंधक नहीं, असल में क्या है कि ये जो मसला है
1: प्रशासनिक,
0: इसमें ये प्रशासनिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें आप एक वर्ग को जो है
1: हाँ।
0: एक ऐसी सुविधा जिसके लिए केंद्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, ये सब बड़ी संस्थाएं
1: पात्रता के बावजूद भी,
0: पात्रता के बावजूद आप उसमें जो है बाधक बन रहे हो।
1: बहुत धन्यवाद कालिका भैया,
0: ये चीज जो है आप वहां पर शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं,
1: जरूर आपको सफलता मिलेगी। आगे आगे किसान भाई बहन जो रेडियो सेट बाद में ऑन किए हैं, अगर उनका भी कोई सवाल है बैंकिंग से जुड़ा, केसीसी से जुड़ा, ई केसीसी से जुड़ा, एफपीओ से जुड़ा, या पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ा, तो आज का मोबाइल नंबर है 0522223825। हम लोगों की बात तो हो रही थी ई केसीसी के बारे में, कुछ और कहना हाँ, है
0: ई केसीसी में आप लोगों को ये बता दें कि जितना ज़्यादा आप अपने, जब भी केसीसी के लिए आप ब्रांच में जाइए या ब्रांच में संपर्क करिए, तो उनसे अपनी तरफ से कहीं बात करिए कि साहब ई केसीसी के माध्यम से आप हमारा लोन करवा दीजिए। उसमें यह रहता है कि आपका वित्तमान पहले से तय होता है, तो वो वित्तमान पता चलता है, हमें यह भी जानकारी में आया कि कहीं पे किसी को कम मिल गया
1: हाँ।
0: जितना निर्धारित है, कम से कम आपको जो मिलेगा सही मिलेगा, दूसरा पारदर्शिता से बनी रहेगी पूरी।
1: तो ये काम क्या जनसेवा केंद्र के माध्यम से?
0: जी बिल्कुल,
1: कैसे?
0: आप जनसेवा केंद्र पे भी जाके उनके माध्यम से आप ये चीज समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से, या आपके पास मान लीजिए मोबाइल में वो एप्लीकेशन है और आपको वो अपना एप्लीकेशन करना है, डालना है
1: जी,
0: तो जनसेवा केंद्र पे जाके उनकी मदद लेके आप अपना, और एप्लीकेशन बहुत बहुत आसान है
1: ई केसीसी के लिए,
0: ई केसीसी,
1: ई किसान क्रेडिट कार्ड,
0: उसको आप उनके माध्यम से भरवा सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जनसेवा केंद्रों का प्रयोग हम वैसे ही कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जनसमर्थ पोर्टल पे हमें कोई एप्लीकेशन करानी है तो हम जनसेवा केंद्र की मदद लेते हैं क्योंकि हमें उतनी जानकारी नहीं होती
1: जी,
0: उनकी मदद इस तरह से ली जा सकती है।
1: रोहित श्रीवास्तव साहब, किस कृषि आधारित फंड
0: जी,
1: यानी AIF एग्री इंफ्रा फंड माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, एक महत्वाकांक्षी परियोजना, इसके बारे में किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहें?
0: देखिए, इसके बारे में पहले तो मैं यही बता दूं कि हम लोगों का एक कह लीजिए एक इग्नोरेंस कह लीजिए, इसका मुझे हिंदी में शब्द नहीं मिल पा रहा है
1: जी,
0: कि हमारी एक भ्रांति है कि इस फंड में हम सिर्फ गोडाउन बना सकते हैं।
1: अच्छा,
0: ऐसा नहीं है। ये इसलिए योजना लाई गई थी ताकि जो हमारे जब फसल कट जाती है
1: हाँ।
0: उसके बाद के जो हमारे नुकसान है,
1: यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट
0: के लिए ये योजना लाई गई थी,
1: यानी कटाई के उपरांत
0: तो कटाई के उपरांत मुझसे बेहतर तुम्हारे कृषक भाई इस बात को जानते हैं कि
1: जी।
0: कटाई के उपरांत मैं अपनी चीजों को किस तरीके से कर सकता हूँ, चाहे तो राइपनिंग चैम्बर बना लूं
1: हाँ।
0: चाहे तो गोडाउन है उसमें,
1: जैसे केला उत्पादक हाँ, है वो
0: राइपनिंग चैम्बर तो आप बना सकते हैं उसमें।
1: अच्छा, इतनी तो रेंज है इसमें।
0: हाँ, और इसमें क्या है कि 2 करोड़ तक का जो ऋण रहेगा उस पर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी सरकार द्वारा दिया जाता है।
1: यानी ब्याज दर क्या होगी?
0: ब्याज दर इसमें मानक तय कर दी गई है 9% और उसमें 3%, मतलब 9% से ज्यादा कोई भी बैंक इसमें चार्ज नहीं कर सकता,
1: और 3% के विशेष
0: का इंटरेस्ट सबवेंशन अलग मिलेगा,
1: यानी 6%
0: और इसमें यह है कि राज्य सरकार के द्वारा भी कुछ इसमें
1: अनुदान
0: की व्यवस्था की।
1: एक किसान भाई लाइन पर है, हेलो, अपना नाम बताएं भैया।
2: सर, मुझे जानकारी पूरी डॉक्टर साहब से मिल रही, सर मेरा फोन कट गया था, सर मैं बबलू यादव बोल रहा हूँ।
1: हाँ हाँ, आप रेडियो सेट पे सुनिए, आप ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा से सेंडी का मसला था, एक बार और।
0: अच्छा, आप इसमें बबलू जी
1: हाँ।
0: आप इसमें जो आपका आंचलिक कार्यालय होगा उसमें एक लिखित शिकायत इसके लिए दर्ज कर दीजिए।
1: बहुत धन्यवाद बबलू यादव भैया। रेडियो सेट पे किसान भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपना सवाल तो पूछें लेकिन रेडियो सेट पे अपना जवाब सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों बहनों से संवाद स्थापित हो सके। एक DGM साहब, एक छोटा सा अंतराल और है, फिर कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।

0: ने वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: कार्यक्रम हेलो किसान के अंतिम चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। नाबार्ड लखनऊ से डीजीएम रोहित श्रीवास्तव साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आपके मन में भी सवाल है कोई बैंक से जुड़ा, केसीसी से जुड़ा, ई केसीसी और एफपीओ से जुड़ा, तो आप अपने शंका, समस्या और जिज्ञासा तीनों का समाधान कर सकते हैं। रोहित श्रीवास्तव साहब, हम लोगों की बात पहुंची है केसीसी, ई केसीसी और एफपीओ और उसके बाद AIF यानी कृषि आधारभूत फंड के बारे में। किसान भाई सीधे इसका लाभ कैसे लें?
3: किसान भाई को, अगर किसी भी किसान भाई को ऐसा लगता है या कि उनके पास जो भी इस स्कीम के तहत में जो भी एलिजिबल एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं, जो भी कार्य क्रिया का लाभ आप कर सकते हैं, आप अपने जिले
2: कर क्या
3: इसमें देखिए, इसमें मैंने जैसा बताया कि हमारी एक भ्रांति है कि इसमें हम सिर्फ गोडाउन बना सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है
2: जी।
3: इसमें आप जैसे राइपनिंग चैम्बर है या पोस्ट हार्वेस्ट का और भी कोई भी चीज है, उसमें सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग, जिसके बाद में आप जो है अपने सामान का ज्यादा अच्छा मूल्य ले सकते हो, या आप उसे समझिए प्रोसेस करके आप बेच सकते हो।
2: वैल्यू एडिशन,
3: वैल्यू एडिशन है जो प्राइमरी वैल्यू एडिशन जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके की जो गतिविधि है, ये गतिविधि को लेके आप अपने बैंक के साथ संपर्क कर लीजिए और उनको बताइए कि AIF में आपका एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से जाती है,
2: किसी भी नजदीकी बैंक,
3: नजदीकी बैंक से आप संपर्क करिए, पोर्टल के माध्यम से जाएगी और ये वहां पे जिला स्तरीय समिति होती है जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उसके माध्यम से इसका अप्रूवल होता है और उसके बाद में ये पोर्टल के माध्यम से, मतलब जो हमारा उसके जो हमारा
2: स्टेटस पता चला,
3: स्टेटस पर जो हमारा कृषक है उसको वहां पोर्टल पे दिखाई देता है कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ है और किस वजह से अगर रुकी है तो क्यों रुकी है।
2: एक एफपीओ की बात हम लोग कर लें कि किसान की ताकत उनका संगठन है और किसान उत्पादक संगठन है, ये गांव-गांव में मजबूत हो, जो किसान केवल उत्पादक बन के रह गए हैं, उनको अपने उत्पाद का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है या लाभ नहीं मिल रहा है या वो मूल्य संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किसान उत्पादक संगठन कितना फायदेमंद होगा इनके लिए?
3: देखिए, इसमें अगर आप लोगों को याद हो तो बचपन से, मेरे बचपन नहीं आप लोगों के बचपन से भी एक संगठन में शक्ति की एक कहानी थी
2: जी,
3: वो ये स्कीम वही कहानी है
2: जी।
3: अगर आप संगठन में हैं तो आप ऐसे मान के चलिए कि अगर एक किसान को फर्ज करिए कि 10 किलो उसके यहाँ कोई अनाज होता है, 10 किलो आम होते हैं मान लीजिए
2: जी,
3: अब वो 10 किलो एक मंडी ले जाए और वही आसपास के अगर
2: 100 किसान
3: मिलके, तो उसका जो ले जाने का
2: ले जाए
3: 10 क्विंटल, अब वो 10 क्विंटल बिकने में कैसा लगेगा और 10 किलो बेचने में कैसा लगेगा,
2: और बाजार खुद ही,
3: बाजार खुद आपके पास आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जो कृषक उत्पादक संगठन रहते हैं, ये किसानों को कह सकते हैं कि एक नेगोशिएटिंग पावर जो है, मतलब मैं अपनी शर्तों पे अपना सामान बेचूंगा, मैं खुद एक व्यवसायिक बन के, एक कृषक व्यवसायिक बन के मैं,
2: और अपनी कंपनी के माध्यम से,
3: कंपनी, और जब आप कंपनी के माध्यम से हो जाते हैं तो आप सिर्फ कृषक नहीं रहते हैं, आप एक व्यवसायिक कृषक बन जाते हैं।
2: एक किसान भाई लाइन पर है
3: जी, बिल्कुल।
2: हेलो,
4: हेलो
2: भैया, नाम बताएं जल्दी से।
4: हमारा नाम सुधीर कुमार तिवारी है,
2: हाँ,
4: ग्राम मिटोरा, जिला बाराबंकी।
2: बहुत स्वागत है, जल्दी से सवाल पूछें सुधीर भैया।
4: हमारा सवाल है, मैं केसीसी बनवाया था 2019 में, तब डेटा कर दिया OTS से
2: जी,
4: अब 2020 तक तो जीरो बैलेंस बता रहा था, अब इधर जो है 15 दिन पहले उन्होंने 13,000 कुछ का फिर नोटिस भेज दिया।
3: सुधीर जी, आप एक काम करिए, आप अपने बैंक से, संबंधित बैंक से लिखित में पहले यह मांगिए कि आपके पास जो भी नोटिस आया है या जो भी आपसे बकाया राशि मांगी जा रही है वो किस संदर्भ में मांगी जा रही है, और जब आपके पास उसका जवाब आ जाए तो आप उस जवाब से अगर संतुष्ट हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर संतुष्ट नहीं है तो आप बैंक में ही एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं लिखित में, और अगर आपको बैंक इस शिकायत का कोई जवाब नहीं देता है तो आप बैंक में आप उसकी प्रति लगा के, और जिला अग्रणी प्रबंधक जो LDM होते हैं
2: हर जनपद के, हर

0: जनपद में है, उनके पास ये शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद सुधीर कुमार तिवारी भैया बाराबंकी से। और चूंकि समय बहुत कम है,
0: इसमें मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि काफी कृषक लोगों की, हमारे किसान भाइयों की शिकायत बैंक से या ब्रांच से आ रही, अगर आपका कोई भी निस्तारण नहीं है तो आप सीपी ग्राम पोर्टल का भी जो है उपयोग कर सकते हैं।
1: रोहित श्रीवास्तव साहब, बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे किसान भाइयों बहनों से सीधा संवाद हुआ। अगर कोई किसान भाई बहन की समस्या या शंका रह गई है और आपसे सीधा संवाद करना चाहे तो अपना नंबर बता
0: दें। मैं कृषक भाइयों के साथ में एक नंबर जो
1: साझा कर रहा हूं, और बहनों के साथ भी,
0: हाँ, कृषक भाइयों बहनों के साथ में 0522-2399-238,
1: एक बार दोहरा दें,
0: 0522-2399-238। इस नंबर के माध्यम से
1: कार्य दिवस में,
0: हाँ कार्य दिवस में, जो हमारा सोमवार से शुक्रवार तक का रहता है और सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक के बीच में, और इस नंबर के माध्यम से आपकी शिकायत के अनुरूप आपको संबंधित विभाग के साथ में जोड़ दिया जाएगा।
1: चलते चलते आज हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों बहनों का क्या आह्वान करना चाहेंगे?
0: मैं किसान बहनों भाइयों से बस ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने आप को पहले तो कमजोर ना समझें, पूरी तरीके से सशक्त समझें, और किसी भी सरकारी योजना या किसी भी सरकारी जो भी कार्यक्रम है उससे जुड़ने में आप पूरी तरीके से आप आगे से आगे रहें और उसे अपना अधिकार समझते हुए जुड़ें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रोहित श्रीवास्तव साहब, DGM नाबार्ड लखनऊ। आज आपने सीधे किसान भाइयों बहनों से कार्यक्रम हेलो किसान के माध्यम से संवाद किया, बहुत धन्यवाद। अब आज का मौसम क्या है और चार मंडियों का थोक बाजार भाव, इसको बता रहे हैं हिमांशु और रियाज। भैया नमस्कार।
2: हिमांशु भैया।
3: हाँ रियाज भैया।
2: देखो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली अपने किसान पंच का।
3: हाँ।
2: सीधे फोन के माध्यम से।
3: हाँ।
2: तो इतनी बढ़िया जानकारी दिए के लिए रोहित श्रीवास्तव भैया का, जो कि उप महाप्रबंधक नाबार्ड हैं, इनका और डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में अपने सारे किसान पंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सब श्रोता पंचन का भी।
3: हाँ भैया।
2: और अब देखो, अब अपने पंचन की बता दी जाए कि मौसम के का मिजाज है, कैसे अपन खेती पाती जो है वो मौसम पर आधारित रहा थे। तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज यानी 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक क्षेत्र में जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है, और तेज सतही हवा जो कि 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले के संभावना है, और साथ साथ में जो है लू भी चले के संभावना है। तो अपने किसान भाई बहन जो है सावधानी से अपन काम करें, बाहर सावधानी से निकलें, और बता दी जाए कि बाजार में अपने जो उत्पाद हैं उनके का दाम मिल रहा है।
3: बिल्कुल भैया, तो बाजार भाव है जो है थोक मंडी भाव है रुपया प्रति क्विंटल का, तो लखनऊ मंडी का है गेहूं का भाव 2590 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर है 2585 रुपया, अयोध्या है 2585 रुपया, गोंडा है 2500 रुपया प्रति क्विंटल।
2: चना का दाम रहा भैया लखनऊ मंडी में 6630 रुपया, कानपुर में 6460 रुपया, अयोध्या में 6400 रुपया, और गोंडा मंडी में 6750 रुपया प्रति क्विंटल।
3: सरसों काली बात की जाए तो लखनऊ मंडी का है 6590 रुपया, कानपुर है 6950 रुपया, अयोध्या है 6480 रुपया प्रति क्विंटल।
2: और प्याज के बात की जाए तो लखनऊ मंडी में 1500 रुपया, कानपुर में 1340 रुपया, अयोध्या मंडी में 2250 और गोंडा मंडी में 2275 रुपया प्रति क्विंटल रहा।
3: हाँ।
2: और अब देखो अपने पंचन के बता दी जाए कि कल के कार्यक्रम में का का सुनी है।
3: हाँ भैया,
2: तो लोकायतन कार्यक्रम में वार्ता सुनी है जल जीवन मिशन ग्रामीण से गाँव में बदलाव, इके वार्ताकार हैं राम मनोहर त्रिपाठी भैया।
3: हाँ, खेती किसानी में यह भेंट वार्ता है जायज सब्जियों में सामयिक प्रबंधन, वार्ताकार हैं कौशल कुमार नीरज भैया, और इनसे बतकई करें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
2: यही के साथ में घड़ी इशारा कर रही है कि अपने कार्यक्रम के समय समाप्त हो रहा है, तो पंचन से लीन जाए आज्ञा,
3: जय हिंद।
4: यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
5: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको। अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा स्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
5: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
4: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा

0: की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केन्द्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है, जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से चलकर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsoneair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
3: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद

0: प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जायेगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
1: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहाँ बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें और

0: शेड्यूल है जो कि जेवर से पर्यावरण, जो पर्यावरण से जेवर जाएगी, क्योंकि तो अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट्स की संख्या वहाँ बढ़ती जाएगी, तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन। 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं जेल में कैदियों के अधिकार, इस विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी दे रहे हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रत्युष गौरव और भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
4: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति कुछ अपराध ऐसे करते हैं जिनमें जेल जाने के कानून हैं। तो हमने अपना विषय इसी पे चुना है, जेल में कैदी जो गया है उसको क्या सुविधाएं हैं, क्या अधिकार हैं और कैसी परिस्थिति होती है। तो हमने इसी पर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में बुला रखा है प्रत्युष गौरव को। आप एडवोकेट हैं लखनऊ हाई कोर्ट में। प्रत्युष जी, आपका स्वागत है।
5: जी नमस्कार।
4: हमारे श्रोताओं को, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताएं कि जेल एक बंदा कैसे और क्यों पहुंचता है।
5: जी, जेल आप तब पहुंचते हैं जब आप कोई अपराध कर देते हैं। कई अपराध हमारे BNS में और एवं अन्य एक्ट्स में दे रखे हैं जिसके उल्लंघन करने से आप जेल जा सकते हैं। और सबसे पहले आपकी तहकीकात की जाती है अगर आपने कोई अपराध किया हो, और उसके बाद फिर आपका ट्रायल शुरू होता है। तहकीकात करने के बाद जो रिपोर्ट है पुलिस वो सीधे मजिस्ट्रेट साहब को पहुंचाती है कि आपने ऐसा अपराध किया है, और उसके हिसाब से आपका ट्रायल शुरू होता है। अब ट्रायल शुरू होने के बाद जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं, मतलब जब आप दोषी हो जाते हैं, तो आप जेल में फिर जाते हैं जैसा आपने अपराध किया हो वैसा। तो अगर आपने चोरी की है तो चोरी करने पर मान लीजिए अगर आपको 1 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो 1 साल की सज़ा सुनाई जाने के बाद आपको जेल भेजा जाएगा, जहाँ पे आपको जेल के नियमानुसार रहना पड़ता है।
4: अच्छा प्रत्युष जी, ये बताइए कि कभी कभी केसेस डिसाइड होने में कि कितनी सज़ा मिलेगी, इसमें कभी कभी समय लग जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल साल। तो क्या जिस पर केस चल रहा है तो क्या उसको जेल में रहना है या बाहर रहेगा, या अगर है तो उसकी सजा काउंट होगी जिस दिन से जेल में है वो?
5: जी, अगर किसी ने पहली बार अपने अपराध किया है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में चोरी करी है और उसको उसके लिए सज़ा हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका ट्रायल चल रहा है और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब पहली बार अगर उसने कोई जुर्म किया है, तो उसको केवल 33%, मतलब 1/3 जो उसका पनिशमेंट है वो सहना पड़ता है अगर उसको जेल हो जाती है। और उसके बाद फिर वो नियमानुसार वहाँ पर बेल के लिए गुहार कर सकता है कि मुझे बेल दे दी जाए। और अगर मान लीजिए आप पहले भी जुर्म कर चुके हैं तो वही चीज़ आपकी हाफ हो जाती है, मतलब 50% आपको सेंटेंस सर्व करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आपको अपराध के लिए सज़ा मिली है, आपको पूरे टाइम उसमें रहना पड़ेगा। आपको नियमानुसार अगर आपने किया है तो उसके हिसाब से आपको बेल मिल जाता है।
4: हाँ प्रत्युष जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर एक कोई व्यक्ति है, उसका केस चल रहा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, तो और उसका केस डिसाइड होने में टाइम लग जाता है, जो पीरियड उसने 2 महीना 4 महीना जेल में काटा है, तो वो सजा में काउंट हो जाएगा?
5: जी जी, बिल्कुल काउंट हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपको गलत अपराध के लिए पकड़ा गया और आपके साथ बदसलूकी की गई, या फिर आपको जेल में ज़्यादा समय के लिए रखा गया, तो उसके लिए

0: आप स्टेट से कॉम्पनसेशन मतलब कि पैसा आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, इससे कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सेंटेंस आपको दिया जा रहा है और जो पुलिस आपके साथ बदसलूकी कर रही है, वो आपको सहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप उसके लिए बिल्कुल इस गुहार लगा सकते हैं कोर्ट में कि हमारे साथ यहाँ पे बदसलूकी की जा रही है, या फिर पुलिस अगर आपसे ज़बरदस्ती करके आपको जेल के अंदर बंद रखती है जो सूचित समय है उससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसके लिए आप ज़रूर कंप्लेन दायर कर सकते हैं।
1: हम समझते हैं कि पुलिस का काम उसको जेल तक पहुंचाना हुआ, तो जो अंदर जो कार्यप्रणाली है वो जेल के एम्प्लॉयज़ किया, जो उनके जिम्मेदार आ जाता है
0: जी, बिल्कुल, वहाँ पे जो जेल के कर्मचारी हैं और उसके बाद फिर जो जेल की कानून व्यवस्था है, जो प्रिजन एक्ट है हमारा, उससे ये सारी चीज़ें गवर्न होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अपराधी जेल हो गई है, तो जेल के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, रहने सहने की, और आपकी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, वो सब आपकी जो जेल की व्यवस्था है वो आपको उपलब्ध कराती है। यदि किसी भी व्यवस्था में वो कमी रखते हैं या आपके साथ बदसलूकी करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास भरपूर रूप से रेमेडीज़ उपलब्ध हैं और आप इनको आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं।
1: रेमेडीज़ का माने क्या हुआ कि कैसे वो शिकायत कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं?
0: जी, सबसे पहला तो आप वहाँ पे जो इंटरनल कंप्लेन सिस्टम वहाँ जेल के अंदर जो बना रहता है, वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और वो कंप्लेन हमेशा जज साहब है उनके द्वारा एग्जामिन की जाती है। और यदि मान लीजिए आपके साथ पुलिस बदसलूकी करती है, या फिर वहाँ पे जो अंदर का जो जेल सिस्टम है वो आपके साथ बदसलूकी करता है, तो आप सीधे उनके खिलाफ़ FIR भी रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी जिस हिसाब से उन्होंने आपके साथ अपराध किया। जैसे मान लीजिए अगर आपके आपके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर आपको खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं दी जा रही है, तो उसके हिसाब से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और उसकी कार्यवाही फिर जज साहब भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधे जाके हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के ऊपर।
1: आपने बता दिया मेडिकल की व्यवस्था है, फूड की व्यवस्था, तो हाइजीन की भी कोई व्यवस्था है?
0: जी, हाइजीन की भी व्यवस्था है यहाँ पे। जेल को ये सुनिश्चित करना होता है कि जो आपके खाने पीने की सुविधाएं हैं वो आपको ठीक से उपलब्ध की जा रही हैं। ऐसा ना हो कि जो खाने पीने की व्यवस्था है उसमें कीड़े मकोड़े और तमाम बीमारियों का प्रकोप है, और उसके बाद आप उसका सेवन कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं लगातार, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे अंदर ही अंदर, अगर आप बोर्ड कमेटी बनी है वहाँ पे। और अगर उसमें कोई एक्शन ना लिया जाए, तो आप जज साहब या फिर पुलिस में, या फिर आप सीधे हाई कोर्ट में कंप्लेन इसकी दर्ज कर सकते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी।
1: तो आपने बताया कि आप FIR या कंप्लेन कर सकते हैं, तो अंदर मेरे ख्याल से जो कैदी हैं जेल के अंदर, तो उनके पास ना कागज़ होगा ना पेन होगी, तो वो कंप्लेन करेंगे कैसे?
0: जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अंदर कैदी है वहीं जाके कंप्लेन दर्ज करे या फिर कुछ करे, लेकिन जो उसके परिवार वाले लोग हैं वो जाके वहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उनसे अपनी हेल्प मांग सकते हैं कि जो हमारे कैदी हैं यहाँ पे जो जेल में रह रहे हैं और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उनको ठीक तरीके से उनका पालन पोषण नहीं किया जा रहा है जैसे उनको करना चाहिए, और इसके लिए फिर वो रेमेडी अपने हिसाब से ले सकते हैं, और उसमें उनको जो कैदी है उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
1: अच्छा, चलिए, जब मिलने वालों की बात आई गई, परिवारजनों की बात आ गई है, तो उसके क्या नियम हैं कि कोई व्यक्ति अपने परिचितों से, अपने रिश्तेदारों से, जेल के जो अंदर हो गए हैं, जो कैदी हैं, उनसे कब कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है?
0: जी, जो जेल के अंदर कैदी है, वैसे अगर आप आम तौर पे देखा जाए तो आप कम से कम 2 बार तो हफ्ते में मिल सकते हैं। अगर जैसे आप अंडर ट्रायल प्रिजनर, अभी आपका केस चल रहा है और अभी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है, तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो आप मिल सकते हैं। और अगर आपको कन्विक्शन हो गया, मतलब आप दोषी पाए गए हैं किसी अपराध के लिए, तो अगर आपका जो बिहेवियर है वो आपका सही है और आपसे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, तो वो 15 दिन में एक बार तो कम से कम मिलने के लिए दे दिया जाता है। कहने का मतलब कि महीने में आप 2 बार तो मिल ही लेंगे उनसे। और साथ साथ में एक ई मुलाकात सिस्टम का भी यहाँ पे स्थापना की गई है, जिसमें आप वहाँ पे ई मुलाकात की फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो फैमिली है वो रजिस्टर कर सकती है, और वहाँ पे जो नेशनल प्रिजन इंफॉर्मेशन पोर्टल है, ई प्रिजन पोर्टल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी 15-20 मिनट के लिए आप अपने जो आपके जो कैदी हैं उनसे मिल सकते हैं। तो इसमें देखा जाए कि 2 तरीके से आप मिलने की सुविधा आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड की गई है, एक तो ई मुलाकात और एक तो जो आप सीधे आप मिल सकते हैं अगर वो कन्विक्ट हैं, तो एक बार 15 दिन में, और अगर उनका अभी केस चल रहा है तो 2 बार आप हफ्ते में मिल सकते हैं उसे।
1: तो प्रत्युष जी, जैसे कि आपने बताया कि कोई परिवारजनी वाले मिल सकते हैं, मान लीजिए किसी ने केस दाखिल कर दिया, तो क्या वकील जो होता है, वकील जिसको रखा गया है, वो भी मिल सकता है

0: दिखाने के लिए।
1: जी जी जी सबको यहाँ पे अधिकार है, खासकर खास तौर पे वकील को, किसी भी एक आम आदमी को वकील से मिलने का अधिकार होता है। और उसको इनफैक्ट जो फ्री लीगल एड की भी सुविधा प्रोवाइड की गई, जैसे मान लीजिए अगर कोई कैदी है उसको अभी ठीक तरीके से कोई वकील नहीं मिल पा रहा या फिर उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि अपने लिए कोई वकील को अरेंज कर पाए,
0: तो सरकार
1: मुहैया कराती है उसको वकील और उसके हिसाब से उसका ट्रायल जो है शुरू होता है। इसीलिए बात आती है अंडर ट्रायल प्रिजनर की, जो अभी जिनका केस चल रहा है कोर्ट में, तो अगर उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो हो सकता है किसी कारणवश अपने लिए वकील उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और इसकी वजह से वो जेल में लंबे टाइम के लिए बंद रहे हैं। तो इसलिए जो सरकार है फिर उनको एक सरकारी वकील मुहैया कराती है और उसकी हेल्प से वो अपने हिसाब से केस अपना देख सकते।
0: तो मैंने ये सुना है कि कुछ लोगों को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलता है, कुछ को सिंपल है, तो इसकी क्या व्यवस्था है?
1: जी, अगर आपको किसी अपराध के लिए कठोर कारावास मिला है जहाँ पे आपको हार्ड लेबर करना पड़ रहा है, तो उसकी व्यवस्था ये है कि आप 9 घंटे से ज़्यादा कभी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए अगर आपको कारपेंट्री का काम है, तो मान लीजिए कारपेंट्री का काम आप कर रहे हैं तो आपसे कोई भी 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकता। और अगर यदि आप को कठोर कारावास नहीं भी मिला है और आप खुद ही चाहते हैं कि मैं कारपेंट्री का काम या अन्य जो जेल के काम है उस पर हम पार्टिसिपेट करें, तो उस केस में आप पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन वही बात है कि कोई भी आपसे 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले पाएगा।
0: तो इस पे एक बात आती है कि मान लीजिए आप रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट वाले कठोर कारावास के कैदी हैं और आपने कोई जैसे कि आपने या कारपेंटरी का काम किया, तो क्या इसमें जो आमदनी होगी जेल को क्या उसका भी हिस्सा मिलता है?
1: जी जी, जितना उसकी आमदनी हुई है काम करने पे उसको एक मिनिमम पे जरूर मिलता है और उसके लिए वो फाइट भी कर सकता है अगर उसको काम लिया जा रहा है लेकिन उसको प्रॉपर पे नहीं मिल रहा। तो इसके लिए भी कंप्लेन बॉक्स सिस्टम और वहीं सब बनाए गए हैं, उसमें वो शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है।
0: जो बात मैंने सुनी है वो एक रिव्यू कमेटी बनी होती है, जेल रिव्यू कमेटी, तो उसका क्या काम होता है?
1: जी, जेल रिव्यू कमेटी का काम यही है कि ये देखना कि जो वहाँ जेल के अंदर सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं, वो फॉलो की जा रही हैं, किसी का जो मानव अधिकार है वो उसका उल्लंघन कोई नहीं कर रहा है। और साथ साथ में इसके अलावा जो आपके UPHRC हैं और NHRC हैं, जो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाए गए हैं अगर आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जैसे कि अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है या फिर आपको खाने की सुविधा ठीक से नहीं मिली है, तो आप वहाँ पे भी जाके गुहार कर सकते हैं कि जो आपके मानवीय अधिकार हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है और उसके लिए आपको पर्याप्त रूप से रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जा रही। जैसे कि आपने कंप्लेंट डाली और उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, आपने वहाँ पे जेलर को बोला कि हमारे को ऐसा दिक्कत महसूस हो रही है और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इसके लिए आप इन सुविधाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: एक बात ये आती है कि जैसे कुछ कैदी जो आजीवन कारावास के हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो क्या उनको भी छोड़ देने का या सज़ा कम करने का कोई प्रावधान है?
1: जी बिल्कुल है, अगर कोई अच्छे व्यवहार का व्यक्ति है और उसने अगर ऐसा अपना व्यवहार रखा है जेल में जिसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हुई हो, कोई परेशानी ना हुई हो, और उसको गुड बिहेवियर के टर्म्स में उसको जल्दी भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको उम्र कैद की सज़ा मिली है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जैसे मान लीजिए अगर आपने मर्डर किया है तो उसके लिए आपको आजीवन कारावास की सज़ा मिली है, लेकिन अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड बिता लेते हैं तो उसके बाद आप गवर्नर साहब को लिख के आप अपना जो आपका जो सेंटेंस है उसको कम करा सकते हैं और जल्दी अपना रिलीज पा सकते हैं।
0: रिली हमने देखा है कि जब स्वतंत्रता दिवस के दिन ही कुछ लोगों को पहले छोड़ दिया जाता है।
1: जी जी, ये उसी के लिए रखा गया है, अगर आप गवर्नर साहब को इस तरह की मतलब गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो उनका जो सिस्टम है वो इस तरह से रहता है कि जो वहाँ की रिव्यू कमेटी है और वहाँ के जो लीगल अफसर हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद फिर आपको देखा जाता है कि आप पहले भी कितना अपराध करे हैं या फिर आपका व्यवहार कैसा रहा है। ये रिपोर्ट आप जेलर से भी ले सकते हैं और उसके बाद फिर उसका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उससे भी देखा जाता है। उसके बाद फिर उनको उसके हिसाब से सुनिश्चित किया जाता है कि अब आपको हम जल्दी छोड़ने की कोशिश करेंगे कि अब आपको हम यहाँ पर जल्दी सेंटेंस आपका ख़त्म कर दिया जाएगा।
0: तो प्रत्युष जी, बहुत सी बातें हो गई, तो क्या जो जेल का सिस्टम, जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है वर्षों से, तो उसके लिए भी कभी सुधार की बात सोची जाती है या कुछ कमेटी बनी है या केंद्रीय स्तर पर इसके बारे में कोई बदलाव होने की उम्मीद है?
1: इसमें बदलाव तभी हो पाएगा जब इसके बारे में कोई आवाज़ उठाएगा और ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है, क्योंकि जो जेल में व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में लोगों की ऐसी अवधारणा रहती है कि उन्होंने किसी न किसी

0: के खिलाफ जुल्म किया है, इसीलिए वो जेल में रह रहे हैं। तो इसीलिए कोई उनके लिए आवाज़ उठाने का नहीं है। अगर आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे, जो हमारे विदेशी जैसे नीदरलैंड हो गया जो यूरोप में यूरोपियन कंट्री है, या फिर डेनमार्क हो गया जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे अगर आप उनकी जेल की व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ पे सारी फैसिलिटी और सभी खाना पीना उनसे लेकर और उनके जो रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन मतलब कि अगर उनका कोई अपराध किसी ने किया भी है तो उसको वापस से हम सोसाइटी के अंदर सिविल रूप में कैसे उनको डाल सकते हैं, तो इस चीज़ पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है। और उसी की तुलना की जाए तो इंडिया पे देखा जाए तो हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन को तो ज़रूर फॉलो किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा सुधार होना उसमें बाकी है।
1: तो प्रतीश गौरव, आपने इतनी ढेर सारी बातें बताई हमारे श्रोताओं को, आप हमारे स्टूडियो आए, धन्यवाद।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: अभी आप सुन रहे थे जेल में कैदियों के अधिकार, इस विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी दे रहे थे हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रत्युष गौरव और भेंटकर्ता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:45 हो गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में। मैं कस्तूरी स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम बातों बातों में। दोस्तों, आज का जो विषय है ना, शायद हर घर, हर गली और हर इंसान की जिंदगी से बड़े करीब से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है 4 लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो किसी भी डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं दिखता, लेकिन लाखों लोगों की सोच और फैसलों पर असर जरूर डालता है। बचपन से ही हम ये सुनते आए हैं ना, अरे ऐसे मत हंसो, लोग क्या कहेंगे, अब ये क्या पहन लिया, क्या कहेंगे लोग, अपनी मर्जी बिल्कुल मत चलाओ, समाज क्या कहेगा। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रहती, हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय से डरने लगता है। कई लोग अपना पसंदीदा करियर छोड़ देते हैं क्योंकि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कई लोग अपने रिश्तों में खुश नहीं होते पर फिर भी उसे पूरी शिद्दत से निभाते रहते हैं क्योंकि समाज उनसे सवाल करेगा। कई लोग अपनी असली पर्सनैलिटी छुपा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हें कोई जज ना करे। और सबसे दुख की बात पता है क्या है, कई बार इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में निकाल देता है और खुद के सपने कहीं अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये 4 लोग आखिर हैं कौन? वो लोग जो मुश्किल के वक्त में कभी साथ नहीं देते, जो 2 मिनट बात करके आगे बढ़ जाते हैं, या वो जिन्हें हमारे खुशी से ज्यादा हमारी गलतियों में दिलचस्पी होती है। सच तो ये है कि लोगों का काम है कहना। अगर आप कुछ अलग करेंगे तो लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर सफल हो गए तो लोग कहेंगे अरे किस्मत अच्छी थी, और अगर गिर गए तो कहेंगे हमें तो पहले ही पता था। मतलब लोगों के कुछ भी सोचने का कोई अंत नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें किसी की बात सुननी ही नहीं चाहिए? अरे अरे बिल्कुल नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि सलाह और डर में अंतर समझना जरूरी है। जो लोग आपको बेहतर बनाना चाहते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जो लोग सिर्फ जज करते हैं उनकी वजह से खुद को रोक देना शायद अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। और जब लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम पर हम बात करने आपके बीच पहुंचे, तो आप में से कुछ लोगों ने हमसे क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: मेरा नाम आयुष शर्मा है। लोग क्या कहेंगे, इस सोच ने न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। आज के समय में अगर कोई सबसे बड़ा डर है तो वह असफलता नहीं बल्कि लोग क्या कहेंगे इस चीज का है। हम अपने सपनों से ज़्यादा लोगों की राय को महत्व देने लगे हैं। कोई नया काम शुरू करना हो या अपना कैरियर चुनना हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी अलग करना हो, सबसे पहले यही आवाज़ आती है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन कभी सोचा है ये लोग आखिर हैं कौन, जो हमारी मेहनत नहीं जानते, जो हमारा संघर्ष नहीं समझते और ना ही हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं। सच्चाई ये है कि लोगों का काम ही है कहना। अगर आप चुप रहोगे तो वही लोग बोलेंगे कि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो वही लोग बोलेंगे बहुत बदल गया है। अगर आप सफल हो जाओ तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदलनी चाही उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लोगों की बातों में आकर अपने सपनों को छोड़ दिया होता तो आज भारत को

0: मिसाइल मैन नहीं मिलता। हमें समझना होगा कि जिंदगी हमारी है, इसलिए फैसले भी हमारे होने चाहिए। दूसरों की सोच के डर से अगर हम अपने सपनों को छोड़ देंगे तो एक दिन खुद से ये सवाल जरूर करेंगे, काश मैंने कोशिश कर ली होती। इसलिए लोगों की बातों से ज़्यादा अपनी मंजिल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में लोग सिर्फ बातें याद रखते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और सफलता आपकी पहचान बनती है।
1: मेरा नाम साक्षी विश्वकर्मा है। हमारी जिंदगी की सबसे अजीब बीमारी का नाम है चार लोग क्या कहेंगे। मजेदार बात यह है कि हमें कभी पता भी नहीं होता कि वो चार लोग हैं कौन। जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, नया कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर अपना पसंदीदा कैरियर चुनना चाहते हैं, अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहते हैं, तो अचानक दिमाग में एक आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे। और फिर हम अपने फैसले खुद नहीं लेते बल्कि उन काल्पनिक चार लोगों को खुश करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोटा कर देते हैं और अपनी खुशी दूसरों की सोच के हवाले कर देते हैं। लेकिन एक सच है, जब आप सफल नहीं होते तब भी लोग बोलते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तब भी लोग बोलते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है कि आप खुद अपने बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं और फैसले भी आपके ही होने चाहिए, क्योंकि उन चार लोगों के लिए हमें नहीं जीना होता जो शायद हमारे बारे में उतना सोचते भी नहीं है जितना हम अपने बारे में सोच लेते हैं।
2: मैं कोपल, चार लोग क्या कहेंगे, यही वो एक लाइन है जिसने न जाने कितने सपने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन सोच लिया लोग हंसेंगे। कोई कैमरे के सामने आना चाहता है पर डर गया, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कोई अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहता है लेकिन समाज के डर ने खुद को बदल दिया। सच बताऊं, ये चार लोग कभी खुश नहीं होते। आप नौकरी करो तब भी बोलेंगे, बिजनेस करो तब भी बोलेंगे, जल्दी शादी करो तब भी बोलेंगे, देर से करो तब भी बोलेंगे, और सबसे बड़ी बात, जब आप फेल होते हो तब ये चार लोग सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन जब आप सफल होते हो तो यही लोग कहते हैं, हमें तो पता था ये कुछ बड़ा करेगा। जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, तो फैसला भी आपका होना चाहिए, ना कि उन लोगों का जिनका आपकी मेहनत से कोई लेना देना ही नहीं। याद रखिए, अगर आप हर वक्त लोगों के हिसाब से जियोगे तो एक दिन आईने में खुद को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए आज से एक फैसला लो, लोग क्या कहेंगे ये नहीं, मुझे क्या बनना है ये सोचो, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने चार लोगों की नहीं अपने दिल की सुनी।
3: चार लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम शायद दुनिया का सबसे डेंजरस वायरस है। ये ना दिखाई देता है ना टेस्ट में आता है, पर अंदर ही अंदर इंसान का कॉन्फिडेंस खा जाता है। हम सबकी लाइफ में वो चार लोग होते हैं जो हर डिसीजन पे जजमेंट रेडी रखते हैं। एक स्टूडेंट सिंगिंग करना चाहता है पर इंजीनियरिंग में भेज दिया जाता है, क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एक लड़की अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है पर उसे बोला जाता है कि सेफ जॉब करो, क्यों? लोग क्या कहेंगे। हम इतने बिजी हो गए हैं दुनिया को सेटिस्फाई करने में कि खुद से पूछना ही भूल गए हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। और सच कहूँ, ये चार लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप सिंपल रहो तो बोरिंग, स्टाइलिश रहो तो शो ऑफ, सक्सेसफुल हो जाओ तो लक, फेल हो जाओ तो जोक। तो फिर ना एक बार खुद के लिए जी कर देखें, गलतियाँ भी अपनी हों, डिसीजंस भी अपने हों, क्योंकि दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे जीने से बेटर है खुद के ड्रीम्स के लिए स्ट्रगल करना। जिंदगी बहुत छोटी है, सिर्फ अप्रूवल लेने में, निकाल देने के लिए नहीं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब दिमाग में आए कि चार लोग क्या कहेंगे तो बस एक बात याद रखना, चार लोग की सोच से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे खुद की खुशी।
4: भाई, आजकल सोशल मीडिया ने भी इस सिंड्रोम को बढ़ा दिया है। अब सिर्फ मोहल्ले के चार लोग नहीं, ऑनलाइन हजारों लोग जज करने को तैयार बैठे हैं। कोई आपकी फोटो पर अपनी ओपिनियन देगा, कोई आपके कपड़ों पर, तो कोई आपकी लाइफस्टाइल पर, और धीरे धीरे इंसान अपनी असली जिंदगी कम और लोगों की पसंद आने वाली जिंदगी ज्यादा जीने लगेगा। लेकिन याद रखिए, जो लोग हर वक्त दूसरों को जज करते हैं ना, अक्सर वो खुद अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं होते। खुश लोग दूसरे की जिंदगी का हिस्सा भी खुशी से बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका दिल कुछ नया करने को कहे ना, तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि चार लोग क्या कहेंगे, ये भी सोचिएगा कि अगर मैंने डर की वजह से कोशिश नहीं की तो मैं खुद से क्या कहूँगा या कहूँगी। जिंदगी आपकी है,

फैसला आपका है, गलतियाँ भी आपकी होंगी और सीख भी। तो दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनिए, क्योंकि आखिर में चार लोग कुछ दिन बात करेंगे, लेकिन आपकी अधूरी खुशियाँ आपको पूरी जिंदगी याद रहेंगी। और भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

आज के कार्यक्रम बातों बातों में सिर्फ इतना ही। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी डॉक्टर शीबा राकेश की। मैं कस्तूरी एक बार फिर से आपसे मिलूंगी एक नए विषय के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए लोग क्या कहेंगे ये कम सोचिए और आपका महसूस करते हैं इस पर ज्यादा बात करिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। मीडियम वेव 401.6 एक मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप से आप अपने स्मार्टफोन पर और DTH पर हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज गए हैं, अब लीजिए सुनिए आज का हिंदी कार्यक्रम।
2: हिंदी कार्यक्रम के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। हिंदी के आज के अंक में प्रस्तुत है प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य के उपासक सुमित्रा नंदन पंत। सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्म जयंती के अवसर पर लीजिए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। हिंदी साहित्य की कोमलतम अनुभूतियों को यदि किसी कवि ने शब्दों में जीवंत किया तो वो नाम है सुमित्रा नंदन पंत। उनकी कविताओं में प्रकृति की हरियाली है, हिमालय की शीतलता है, प्रेम की मधुरता है और मानवता की गहरी संवेदना है। वो केवल छायावाद के प्रमुख स्तंभ नहीं थे बल्कि हिंदी काव्य को आधुनिक चेतना देने वाले महान साहित्यकार भी थे। आपकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं बोल रही हो। शब्दों में संगीत बहता है, कल्पनाएं रंगों की तरह फैल जाती हैं और मन किसी शांत पर्वतीय प्रदेश में पहुंच जाता है। पंत जी की कविता केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के सुंदर पर्वतीय क्षेत्र कौसानी में हुआ। कौसानी की प्राकृतिक छटा ने उनके बालमन को गहराई से प्रभावित किया। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था जिसने उनके मन में एक गहरी संवेदनशीलता और भावुकता उत्पन्न कर दी। हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, देवदार के वृक्ष, झरनों की कलकल ध्वनि और पक्षियों का संगीत, ये सब उनके हृदय में ऐसे समा गए कि आगे चलकर उनकी कविता का आधार बन गए। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा के रूप में उपस्थित होती है। पंत जी ने प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा और वाराणसी में प्राप्त की। बाद में वो इलाहाबाद गए जहां साहित्यिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और साहित्य साधना को अपना जीवन बना लिया। उनका मन पुस्तकों, दर्शन और प्रकृति के बीच रमने लगा। वो संस्कृत, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी साहित्य से अत्यंत प्रभावित थे। रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों ने भी उनके चिंतन को गहराई प्रदान की। हिंदी साहित्य में छायावाद को भावुकता, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य चेतना का युग माना जाता है। इस युग के चार प्रमुख स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इनमें पंत जी को प्रकृति और सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। आपकी कविताओं में कोमल भावनाएं, संगीतात्मक भाषा और कल्पना की अद्भुत उड़ान दिखाई देती है। यदि पंत जी की कविताओं का सबसे बड़ा आधार खोजा जाए तो वो प्रकृति है। उन्होंने प्रकृति को केवल देखा नहीं बल्कि जिया है। उनकी कविताओं में पर्वत मुस्कुराते हैं, बादल

खेलते हैं, फूल बातें करते हैं और हवाएं गीत गाती हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियां जैसे पल्लव, वीणा, गुंजन और युगांत प्रकृति सौंदर्य और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं। उनकी कविता में प्रकृति केवल बाहरी सौंदर्य नहीं बल्कि आत्मा की शांति और जीवन का सत्य बनकर उभरती है। वो मानते थे कि मनुष्य का संबंध प्रकृति से टूटना और उसकी संवेदनाओं का सूख जाना है। समय के साथ पंत जी के चिंतन में परिवर्तन आया। प्रारंभिक कविताओं में जहां प्रकृति और सौंदर्य प्रमुख थे, वहीं बाद की रचनाओं में सामाजिक चेतना, मानवता और प्रगतिशील विचार दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने गरीबी, असमानता और मानव संघर्ष को भी अपनी कविताओं में स्थान दिया है। वो चाहते थे कि साहित्य केवल सौंदर्य का चित्रण न करे बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दे। आपकी रचनाओं में ये परिवर्तन हिंदी साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। यही कारण है कि पंत जी केवल छायावादी कवि नहीं बल्कि आधुनिक चेतना के कवि भी कहे जाते हैं। पंत जी की भाषा अत्यंत मधुर, कोमल और संगीतात्मक है। आपके शब्दों में चित्रात्मकता है। वो ऐसे शब्दों का चयन करते थे जिन्हें पढ़ते ही मन में दृश्य उभर आए। उनकी कविताएं पढ़ते समय लगता है मानो कोई चित्रकार रंगों से कविता रच रहा हो। हिंदी भाषा को उन्होंने सौंदर्य, लय और नवीनता प्रदान की। आपकी प्रमुख रचनाएं पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन और चिदंबरा हैं। इन रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, दर्शन, मानवता और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। पंत जी को हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उनकी कृति चिदंबरा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए। ये केवल एक कवि का सम्मान नहीं था बल्कि हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा का गौरव था। आज का मनुष्य तकनीक और व्यस्तता के बीच प्रकृति से दूर होता जा रहा है। संवेदनाएं धीरे धीरे कम होती दिखाई देती हैं। ऐसे समय में पंत जी की कविताएं हमें फिर से प्रकृति और मानव मूल्यों के निकट ले जाती हैं। वो सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य सरलता, प्रेम और संवेदनशीलता में छिपा है। उनकी कविताएं मन को शांति देती हैं और ये एहसास कराती हैं कि प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन का आधार है। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के ऐसे अमर कवि हैं जिनकी रचनाएं सदैव जीवित रहेंगी। वो प्रकृति के उपासक थे, सौंदर्य के साधक थे और मानवता के सच्चे कवि थे। उनकी कविताओं में हिमालय की शीतलता, फूलों की कोमलता और मनुष्य के हृदय की गहरी संवेदनाएं एक साथ दिखाई देती हैं। उन्होंने हिंदी कविता को केवल शब्दों का संसार नहीं दिया बल्कि उसे आत्मा की अनुभूति बना दिया। जब जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा, सुमित्रानंदन पंत का नाम प्रकृति और संवेदना के अमर गायक के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।

0: प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य के उपासक सुमित्रा नंदन पंत। अभी आप सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्म जयंती के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख, वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का था और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। अब इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की

0: संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटोयूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतुका ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:10 हो गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं संयुक्ता बैनर्जी के स्वर में गीत। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं रामप्रिया की इस रचना के साथ, जिसके बोल हैं जय जयति जय।

इस गीत के साथ ही अब आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थीं संयुक्ता बैनर्जी, इनके गाए गीत आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हो गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं और प्यार हो गया फिल्म से। आवाजें आपको बता दें, उदित नारायण की हैं और इस गीत में जो संगीत है वो नुसरत फतेह अली खान साहब का है और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: कसम साती है

0: चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: उदित नारायण की आवाज में कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे दस्तक फिल्म से। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से होगी।

0: कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्ते

0: सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

0: Good evening, this is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defence and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है. यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं. भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए.
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian

0: All in the News at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामع शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर क़ानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में मेज़बान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दो तरफा ताल्लुकात के खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफ़ी गौर व खौज किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के क्याम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाज़रानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुतहद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी

0: पॉलिसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, including rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: वज़ीर आज़म मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटरेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वज़ीर आज़म ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, ज़रई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
0: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और ग़िज़ाइयत की बेहतरी के ज़िमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती तआवुन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तिसादी शराकतदारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज़मीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ़ फराहम करदा 7 बिरादरियों के अराकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों।

बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की

0: हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक

अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली।

ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय

0: साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फेहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ

0: में आते हैं जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए, तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
4: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा

0: सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला है, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है।

0: और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, निगोसिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो 4 देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था ये आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने यह बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा

0: आ रही है, कैसे देखते हैं आप?
1: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है। भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
2: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता हो।

0: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं। अब लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ताजमहल फिल्म के इस गीत के साथ।

तेल, थोड़ा नून, थोड़ी मिर्च, थोड़ी सोंठ, थोड़ा तेल। अरे वाह वाह वाह।

सुन रहे थे हाफ टिकट फिल्म से। ये गीत आगे बढ़ चलते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है। आवाज़ें आपको बता दें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

गीता दत्त की आवाज में आर पार इस फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और अगला गीत भी आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में, भाई भाई फिल्म से।

आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाजों में चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आरजू फिल्म से।

इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब ये समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद नसीर खान का सारंगी वादन, राग है पुरिया कल्याण।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद नसीर खान का सारंगी वादन, राग था पुरिया कल्याण। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज़ ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी

0: इस साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news shared by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development.